हम आकाशवाणी उदयपुर FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.9 MHz पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948, वैशाख मास की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 11 मई सन 2026। सुबह के 5:57 होने वाले हैं। हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

0: श्रोताओं, FM बैंड 101.9 MHz पर हम आकाशवाणी उदयपुर FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। प्रतिदिन की भांति सुबह 6:05 से सुबह 8 बजे तक के प्रसारण आप सुनेंगे हमारी विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से। इस समय प्रतीक्षा कीजिए हिंदी में समाचारों की।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संझार बेकोव को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इकलोमेव को 4

0: से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

आज का चिंतन। महर्षि वाल्मीकि का ये विचार है कि हताश न होना सफलता का मूल मंत्र है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों के लिए प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाने में मदद करता है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है झरोखा के अंतर्गत आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस भाग 185। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला, महिला रचनाकारों की बंदिशें, कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग किया है अनुजा जोकरकर ने। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम त्रिवेणी और 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे 9:30 पर। सुबह 10 का समय है पिटारा उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम का, सुनिए निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। सुबह 11 कार्यक्रम रंग तरंग और 12:05 पर कार्यक्रम होगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम दिन में 1 और दिन में 2 कार्यक्रम त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दिन में 3 का समय है सखी सहेली कार्यक्रम का और 4 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, थैलेसेमिया की बीमारी और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर आशय प्रमोद से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आप सुन पाएंगे। 5 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45 पर कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। 8 कार्यक्रम होगा हवा महल, नाटिका आंगन में स्वर्ग, लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने। 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। 9 का समय है कार्यक्रम आपके लिए, 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार और 10 से आप सुनेंगे कार्यक्रम छाया गीत। 10:30 पर कार्यक्रम होगा ढलती जाए रात और 11 रंग तरंग। झरोखा के अंतर्गत ये थी जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 185।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 185।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें। आमंत्रित कलाकार हैं गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। श्रोताओं, आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी,
1: महिला रचनाकारों की बंदिशें। आज संगीत सरिता की इस श्रृंखला के अंतिम सोपान पर हम पहुंच गए हैं। आज की ये जो आखिरी कड़ी है वो केंद्रित है विदुषी कल्पना जोकरकर पर। कल्पना जी, आप बताइए अपनी तालीम के बारे में। सबसे पहले
2: संगीत का वातावरण तो घर में था ही। मेरे पिताजी पंडित कृष्णराव मजूमदार जी, जो बहुत उत्तम गायक थे और उस्ताद रजब अली खान साहब के पट्ट शिष्य थे, तो घर में हमेशा ही महफिलों का आमने सामने बैठकर हमको कई कलाकारों को सुनने का मौका मिला। कई कलाकारों का आना जाना होता था, बातचीत होती थी संगीत विषय पर, और अलग अलग पहलुओं से संगीत को जानने का मौका मिला
1: जी।
2: और तालीम तो मेरी बचपन से शुरू हो गई थी। मेरे पिताजी ने मुझे सिखाना शुरू किया था और बहुत नियमबद्ध तरीके से तालीम देते थे। बेसिकली वो व्यवसाय से इंजीनियर थे, बहुत कठिनाइयों से संगीत की तालीम प्राप्त की और उसको आखिर तक निभाया
1: जी।
2: बहुत अलग अलग प्रकार के कलाकारों के सान्निध्य में वो आए। हमारे घर पे भी कई कलाकारों का आना जाना, महफिलें होती थी, बैठकें होती थी, तो संगीत के क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही इज्जत के साथ लिया जाता है
1: जी।
2: करीब 12-15 साल मैंने उनसे तालीम ली और उनके गुजर जाने के बाद मैंने डॉक्टर सुशीला पोहनकर जी से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया
1: जी।
2: उसमें उन्होंने मुझे ठुमरी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ, अलग अलग ठुमरियाँ सिखाई। ठुमरी की एक विशिष्ट शैली उन्होंने बताई, कई बंदिशों को सिखाया। बंदिशों में सुरों का लगाव और भाव भावाभिव्यक्ति कैसे की जाए
1: जी,
2: किस शब्द को किस तरह पेश किया जाए, इसके बारे में बहुत अच्छा मुझे उन्होंने मार्गदर्शन दिया
1: जी।
2: और मुझे हालांकि पंडित वसंत राजूरकर जी से भी मार्गदर्शन मिला। हैदराबाद में थी मैं, मेरा विवाह होने के बाद
1: जी।
2: तो वहाँ उनके संपर्क में आने के बाद उनसे भी मैंने ग्वालियर घराने की कई बंदिशें, अष्टपदियाँ, तराने अलग अलग प्रकार के सीखे, और टप्पा गायन शैली भी उन्होंने मुझे सिखाई। कई टप्पे ग्वालियर घराने के सिखाए। तो इस तरह अलग अलग पहलुओं से मैंने संगीत को देखा जाना
1: जी।
2: और फिर कुछ समय बाद, अभी कुछ 10-12 साल पहले से बंदिशें बनाने का एक सिलसिला जारी हुआ, शुरू हुआ।
1: तो कितनी बंदिशें आपने रची हैं?
2: कई बंदिशें मैंने तैयार की है, उसमें कि आज आपके सामने भी हम प्रस्तुत करेंगे
1: जी। जी,
2: कुछ ठुमरियां तैयार की है, कुछ दादरे हैं, कुछ होरी है
1: जी।
2: ये जो उपशास्त्रीय संगीत के जो विविध प्रकार हैं, इनमें भी मुझे बहुत रुचि है क्योंकि मैं सुगम संगीत बचपन से गाती आ रही हूँ
1: जी। जी,
2: उपशास्त्रीय संगीत जो है वो शास्त्रीय और सुगम संगीत दोनों का मिश्रण है।

0: कह सकते
1: जी
0: हैं, या उसकी छाप उस गायकी पर है। तो मुझे उपशास्त्रीय संगीत भी बहुत पसंद है,
1: जी
0: तो उसमें भी कई बंदिशें मैंने रची हैं।
1: जी तो अभी क्या प्रस्तुत करेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, कौन सी बंदिश प्रस्तुत करेंगे?
0: अभी राग हिंडोल में दो रचनाएं मैंने बनाई हुई हैं,
1: जी
0: क्योंकि सुबह का समय है और उसके बारे में थोड़ा सा मैं चलन बता के, और अनुजा वो दोनों बंदिशों का गायन करेगी।
1: जी
0: तो राग हिंडोल ये कल्याण ठाट से उत्पन्न होता है,
1: जी
0: इसमें मध्यम तीव्र है और ऋषभ पंचम वर्जित है,
1: जी जी
0: और निषाद कर्ण स्वर में जो प्रयोग किया जाता है, इसका वादी धैवत और संवादी गंधार है। और इस राग की विशेषता है कि मींड और गमक के प्रयोग से इस राग की जो अलग अलग स्वरों की जो स्वरावलियां हैं
1: जी
0: वो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हैं। तो हिंडोल जैसे कि इसका नाम है, तो उसी पर आधारित मैंने ये बंदिश में उसी का प्रयोग किया है, उन्हीं
1: जी
0: शब्दों का प्रयोग किया है।
1: जी
0: तो झूलत है कृष्ण मुरारी,
1: वाह
0: राधे संग सखियां झुलावे।
1: क्या बात है।
0: तो रूपक ताल में ये मध्यलय की बंदिश है, अनुजा आपके सामने प्रस्तुत करेगी, और उसके पश्चात एक तराना।
1: जी

0: वाह अनुजा जी, आपने तो मन मोहित कर लिया हम सबका। ये जो बंदिश थी जिसे कल्पना जी ने रची, जिसमें कृष्ण का सखा भाव था, झूले की पींग मार रहे हैं कृष्ण जी और राधा झूल रही हैं, तो वो पूरा चित्रण इस बंदिश में मिल गया हमें, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के समापन का समय आ गया है, चलने से पहले अपने साजिंदों का भी हम परिचय करा दें। तबले पर संगत की यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनौने जी ने। यति भागवत जी और ज्ञानेश्वर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अनुजा जी, आपने इस पूरे प्रोग्राम में जैसे चार चांद लगा दिया, तो आपका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: कल्पना जी, आपने इस श्रृंखला को प्रस्तुत किया और हमें जो आनंद मिला उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सभी श्रोताओं की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं, नमस्कार।
3: नमस्कार।
4: महिला रचनाकारों की बंदिशें। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं एवं अंतिम कड़ी। इस श्रृंखला के लिए आमंत्रित कलाकार थी गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, आपसे बातचीत की ममता सिंह ने, गायन सहभाग रहा अनुजा जोकरकर का, तबला संगति यति भागवत की और हारमोनियम पर थे ज्ञानेश्वर सोनवणे। श्रोताओं, आपको ये श्रृंखला कैसी लगी, विविध भारती के फेसबुक पेज के माध्यम से अपने उद्गार हम तक अवश्य पहुंचाएं। चलते चलते आपको बता दें, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल और किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम को सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। मैं हूँ मंजू द्विवेदी। सबसे पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुनीम जी फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार SD बर्मन।

0: घायल हिरनिया बन बन बन बन बन बन बन डोलू
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जान

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। अगला गीत मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म का गाना गीता दत्त और साथियों की आवाजों में मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत ओपी नैयर का।

अगला जो गीत है ये आशा भोसले और तलत महमूद की आवाज़ों में मस्त कलंदर फिल्म का गाना, असद भोपाली के बोल, संगीत है हंसराज बहल का।

0: वज्रदंती,
1: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: और हम हाजिर हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों के साथ। अब आपको सुनवाते हैं साहिल लुधियानवी का लिखा और जयदेव का संगीत बद्ध किया ये गाना तलत महमूद की आवाज में, फिल्म का नाम जोरू का भाई।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। जनक जनक पायल बाजे इस फिल्म

0: घर घर में दिवाली, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वी को वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वी को टर्मरिक नहीं कॉस्मेटिक।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम है राही प्यार के। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ ये गाना सुनिए, आर डी बर्मन का संगीत, फिल्म का नाम घर।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: ये है त्रिशूल फिल्म का गाना लता मंगेशकर और यशुदास की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के बोल संगीत खयाम का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है। हम हैं राही प्यार के। अगला गाना सुनते हैं, बनफूल फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: येसुदास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में साजन बिना सुहागन, इस फिल्म का ये गाना आपने सुना।
1: एक बेमिसाल शायर,
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी

0: म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। जान

0: अब आज का हम हेरा ही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: श्रोताओं, अब तक आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रसारण। FM बैंड 101.9 MHz पर हम FM रेडियो लेक सिटी से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आपको सुनवाएंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। पहले हिंदी में समाचार प्रभात और सुबह 8:15 पर अंग्रेजी में मॉर्निंग न्यूज़ सुनिएगा। 8:30 पर हम आपको ले चलेंगे हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर, जहां से हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। इस समय प्रतीक्षा कीजिए समाचारों की।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंद्र अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा की चुनाव

0: वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष में एसबी त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कलेश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंगो पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी

0: को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 011-23-01-01-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल, डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवी के प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: दोस्तों, आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं अनीता और मेरे साथ हैं,
1: मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त बीना।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: और साथ ही हम अपने श्रोताओं को बता दें बीना कि आज फिट लाइफ सोमवार में क्या है खास।
1: बिल्कुल, आज का फिट लाइफ सोमवार बहुत सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। तो टुडे एट ग्लांस यानी आज एक नज़र डालें तो सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में। आसपास की खबरों को हम हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएंगे और आज दो शख्सियतों की जयंती है, आसिफ अली और जय कृष्णमूर्ति, इनकी बातें होंगी और आईपीएल अपडेट हम हमारे श्रोताओं को देंगे। और हेल्दी हैबिट हमारा जो सेगमेंट है आज का विषय रहेगा, बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स।
0: बिल्कुल, और शहर की हलचल में हम बात करेंगे उदयपुर शहर में चलने वाली रेलगाड़ियों की। और आज हम अपने श्रोताओं को हमसे जुड़ने का मौका भी देंगे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए। उन्हें हमें बताना होगा कि आज इस कार्यक्रम ने हमने जो भी जानकारियां दी वो उनको कैसी लगी, या आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो कीजिए हमें मैसेज 9462697568 पर। हम आपके मैसेज पढ़कर सुनाएंगे 9:10 पर।

ज़िंदगी जीने का कुछ ऐसा सलीका सीखो कि छोटे छोटे पलों में खुश रहने का तरीका सीखो। कांटों भरी राहों में भी फूलों की तरह खिलना सीखो। कब तक डरोगे इन ठोकरों से, गिरकर फिर से संभलना सीखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।

0: तो जी अब सबसे पहले आज की खबरों की तरफ नज़र डाल देते हैं। तो अनीता, आज जैसे कि हम बात भी करेंगे थोड़ी देर बाद कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, तो इस दिन एक बड़ी खूबसूरत सी खबर हमको मिली है कि शहर के शिल्प ग्राम के पीछे अरावली की तलहटी में करीब 30 करोड़ की लागत से उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र सब रीजनल साइंस सेंटर एक आकार ले चुका है। 6.4 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में फैले इस सेंटर का पहला चरण पूरा हो गया है और ये आने वाले 3-4 महीनों में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। इसकी जो बात खूबसूरत सी जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि एक तो ये आइडिया लैब उपलब्ध कराएगा, सन एंड फन गैलरी यहाँ पर होगी, आउटडोर साइंस पार्क भी होगा जहाँ पर खुले परिसर में डायनासोर और विभिन्न विलुप्त जीवों के आदमकद मॉडल लगाए गए हैं, और हेल्थ और हाइजीन गैलरी भी होगी। तो हमारे नमस्कार के बहुत सारे टॉपिक इसमें हैं
1: जी। बिल्कुल सही बात है। और आज एक नज़र में अब बात करते हैं कि तेज़ गर्मी और लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए एमपी हॉस्पिटल में आज से शाम को भी ओपीडी चालू रहेगी, जिसका समय हर रोज़ शाम को 5 बजे से 7 बजे तक का रहेगा और यह न्यू ओपीडी भवन में चलेगी। इसमें मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक, यूनिट हेड और दूसरे डॉक्टर्स अपनी सेवाएँ देंगे, और सुबह का जो समय है हर रोज़ की तरह ओपीडी का वो 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा।
0: बिल्कुल, तो आपके स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की, जो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो 11वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी अब पारंपरिक 3 विषयों के बंधन से मुक्त होकर अपनी पसंद का चौथा वैकल्पिक विषय भी चुन सकेंगे। यह चौथा विषय आपकी मुख्य स्ट्रीम साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से बाहर का भी हो सकता है। अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस आप चौथे विषय के रूप में लेना चाह रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं। शर्त यह है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पद आपके स्कूल में स्वीकृत होना चाहिए। अगर आप फिजिकल एजुकेशन ले रहे हैं तो भी इसे ले सकते हैं, पीटीआई का पद वहाँ होना चाहिए। और एक और बात यह है कि भाई, जो हमारे बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं राजस्थानी सरकारी स्कूल के, तो अगला जो सत्र है अभी जो शुरू हुआ है 26-27 का, इसमें इनकी निशुल्क यूनिफॉर्म सहायता राशि अब सीधे बच्चों के बैंक खातों में जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

0: और अब बिना बात करते हैं आईपीएल मैच की। तो कल दो मैच खेले गए, पहला चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉइंट्स के बीच खेला गया, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने अधिकांश तिया पारी में जीत हासिल करी। और दूसरा मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस के बीच हुआ, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को आखिरी गेंद पर 2 विकेट से हराया।
1: बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था अनीता, ये लास्ट वाला। और आज धर्मशाला में मैच होने वाला है 7:30 पर शाम को, और ये होगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस पंजाब किंग्स।

0: और बिना देखा जाए तो हमारा देश डिजिटल इंडिया, स्पेस टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज का 11 मई का दिन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज का दिन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों, तकनीकी प्रगति और नवाचार के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का दिन है।
1: बिल्कुल, 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। ये पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। इसे ऐतिहासिक उपलब्धि के कारण ही भारत दुनिया की परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में शामिल हुआ। इस दिन की स्मृति में 1999 से हर साल ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इसके मुख्य उद्देश्य अनिता विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में उपलब्धियों का सम्मान करना, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रोत्साहित करना, नई तकनीकों के विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को नवाचार के लिए प्रेरित करना।
0: और 11

0: मई के दिन दो और बड़ी उपलब्धियां भारत के नाम रही थी, वो थी हंसाश्री और भारत ने स्वदेशी दो सीटों वाले विमान हंसा 3 के बेंगलुरु से पहली उड़ान भरी थी। और इसी दिन रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इसी दिन हवा में मार करने वाली त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। और अब बताते हैं कि इस दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को सम्मानित करना जिन्होंने भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाया, छात्रों और युवाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करना, स्टार्टअप और उद्योगों को आधुनिक तकनीकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इस दिन का मुख्य उद्देश्य है।
1: बिल्कुल, और इस बार का जो थीम है वो है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, जिम्मेदार नवाचार के माध्यम से समावेशी विकास। इसका जो प्रमुख पहलू है इस थीम का वो है कि इस तकनीकों का उपयोग करके नैतिक और संतुलित तरीके से ग्रामीण और शहरी के जो बीच का जो अंतर है उसे कम करना, और AI, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, अंतरिक्ष नवाचार और डीप टेक रिसर्च पर जोर देना।

0: बिना देखो हमारे देश में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने पेशे के लिए, अपने लिए नहीं अपने देश के नायकों को बचाने के लिए राष्ट्र की सेवा में इस्तेमाल किया। एक ऐसे ही भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर वकील हुए आसिफ अली। आसिफ अली उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने कानूनी ज्ञान और राजनीतिक सक्रियता का बेहतरीन संतुलन पेश किया।
1: बिल्कुल, इनका जन्म 11 मई 1888 में दिल्ली में हुआ और ये महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और जेल भी गए।
0: और आसिफ अली अपनी बेहतरीन वकालत के लिए जाने जाते हैं क्योंकि इन्होंने कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मामलों में क्रांतिकारियों का बचाव किया और उसके बाद आसिफ अली हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे। उन्होंने विभाजन का विरोध किया। आसिफ अली स्वतंत्र भारत द्वारा संचालित संयुक्त राज्य अमेरिका में नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने ओडिशा के राज्यपाल के रूप में भी काम किया और रेलवे और परिवहन मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला।
1: बिल्कुल, 2 अप्रैल 1953 में आसिफ अली का निधन हो गया।
0: आसिफ अली की पत्नी अरुणा आसिफ अली भी एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी थी। आसिफ अली आज हमारे बीच नहीं हैं, किंतु आज का दिन हमें ये एहसास कराता है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, कभी दूसरों के लिए भी जीकर देखिए।

0: देखो बिना, कुछ लोग शुरू से ही इतने प्रतिभावान होते हैं जिनकी प्रतिभा को उनसे ज़्यादा दूसरे लोग जान जाते हैं। दुनिया के महानतम दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों में से एक माने जाने वाले जिद्दू कृष्णामूर्ति, जिनको 1909 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के नेता C.W. लीडवीटर ने उन्हें देखकर कहा था कि ये बालक भविष्य में विश्व गुरु बनेगा, और ये बातें सही भी हुई।
1: बिल्कुल, एक भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक चिंतन और वक्ता। 11 मई 1895 आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इन्होंने पूरी दुनिया में मानव मन, स्वतंत्रता, भय, रिश्ते, ध्यान और आत्मज्ञान जैसे विषयों पर गहरी बातें की।
0: और 1929 में नीदरलैंड में आयोजित एक विशाल शिविर में ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया और कहा कि सत्य एक पथहीन भूमि है। उन्होंने ये भी बताया कि धर्म या गुरु के माध्यम से सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उनका ये भी मानना था कि इंसान को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए किसी बाहरी शक्ति की ज़रूरत नहीं है। वे कहते थे कि स्वयं का अध्ययन ही ज्ञान की शुरुआत है।
1: बिल्कुल, उनके अनुसार ध्यान केवल नेत्र बंद करना नहीं है, सच्चा ध्यान है हर विचार को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखना और पूरी जागरूकता में जीना। अनीता, उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें भी हैं, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, फ्रीडम फ्रॉम द नोन और थिंक ऑफ दीज थिंग्स। भारत और विदेशों में इन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की जहाँ न केवल अध्ययन बल्कि व्यक्तित्व और जागरूकता पर भी जोर दिया गया। भारत में इनके प्रमुख संस्थान हैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, द स्कूल ऑफ KFI और ऋषि वैली स्कूल।
0: और उनका जीवन एक ऐसे अन्वेषण की कहानी है जिसने मनुष्य को भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय एक स्वतंत्र और जागरूक व्यक्ति बनने की प्रेरणा देता है।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर। सवेरे के 9 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से, और 9:10 से नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम लेकर हम फिर से होंगे आपके साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज, प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

0: और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। श्री मोदी कल हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी तरीके से प्रबंधन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज के समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल ही के सालों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की तरक्की का जिक्र करते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। इसका आयोजन पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री सोमनाथ महादेव की पूजा और अभिषेक करेंगे। इसके बाद वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ में प्रधानमंत्री का रोड शो भी रखा गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर देशभर में आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रदेश के 41 जिलों के प्रमुख शिवालयों में विशेष धार्मिक आयोजन होंगे। देवस्थान विभाग के आयुक्त लक्ष्मी नारायण मंत्री ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर में रखा गया है। इस दौरान महाआरती होगी और कलश यात्रा निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री शर्मा कल अजमेर जिले के पुष्कर के कडेल गांव में ग्राम विकास चौपाल को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में राजीविका के माध्यम से 17.5 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कई काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से संवाद करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल से जल, जनधन खातों और उज्ज्वला योजना से करोड़ों महिलाओं का जीवन बदला है।
2: युवा, किसान, महिला, मजदूर, अगर हम इनका सहयोग करते हुए इनका जीवन अगर ऊपर उठता है, गांव, हमारी तहसील, हमारा जिला, हमारा प्रदेश आगे बढ़े। और इसीलिए हमारी योजनाएं हैं वो अधिकतर इन्हीं के इर्द गिर्द चलती हैं और इन्हीं को लेकर के हम चलते। पहले गांव में जाते थे तो पहले तो लकड़ी इकट्ठी करके लाते थे, कोई पेड़ों को छांट करके उसकी लकड़ी काटते थे, उससे खाना बनता था। खाना कई परिवारों में आज भी बनता है, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि बारिश के समय में उससे और परेशानी होती, ईंधन गीला हो जाता था, भूख देते देते आंखों में भी धुआं जाता था और फेफड़ों में भी धुआं जाता था। लेकिन इसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और घर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन देकर के, गैस की टंकी देकर के हमारी माता बहनों का सम्मान करने का काम किया तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने।
0: ग्राम विकास चौपाल में श्री शर्मा ने किसानों और युवाओं से भी बातचीत की। उन्होंने किसानों को परंपरागत खेती से आगे बढ़कर आधुनिक और जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित किया। रात्रि विश्राम के बाद मुख्यमंत्री ने आज सुबह कडेल गांव में पैदल भ्रमण कर बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत की। ग्रामीणों की मांग पर उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इंदिरा गांधी नहर में कल से बंदी समाप्त हो गई। बीती रात 12 बजे के बाद से अधिकारियों ने हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के पास पानी प्रवाहित करने का काम शुरू कर दिया है। राजस्थान फीडर की रीलाइनिंग के कारण पानी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी। जल संसाधन विभाग

0: के अधीक्षण अभियंता रामकिशन ने बताया कि फिलहाल 10 क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि बंदी खत्म होने से हजारों लोगों को राहत मिलेगी और पानी की समुचित आपूर्ति हो सकेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी का असर है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में प्रचंड लू के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। बाड़मेर में पारा 46.8 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं जैसलमेर में भी अधिकतम तापमान 46.3 डिग्री रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि लू के थपेड़ों से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है।
1: सवेरे से ही सूर्य देवता के तेवर तीखे हो जाते हैं। भीषण गर्मी के चलते स्वर्ण नगरी के पर्यटन स्थलों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। अत्यधिक गर्मी के चलते चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने आम जन से विशेष एहतियात बरतने की अपील की है। गर्मी के मौसम में स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा विशेष सावधानी बरती जा रही है। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में मुख पक्षियों के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा परिंदा अभियान चलाया जा रहा है। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।
0: जोधपुर और बीकानेर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार मापा गया। प्रदेश के 19 शहरों में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज भी हीट वेव की प्रबल संभावना है। वहीं रातें भी काफी गर्म रहेंगी। साथ ही नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों और शेखावाटी क्षेत्र में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात हो सकती है। उधर हनुमानगढ़ जिले में पिछले 3-4 दिनों से जारी भीषण गर्मी के दौर के बीच आज सुबह मौसम अचानक बदला और कई स्थानों पर झमाझम पानी बरसा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह कल नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलता से बनाए रखा है।
2: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल ने रेलगाड़ियों में मिडिल बर्थ के उपयोग को लेकर एडवाइजरी जारी की है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि मिडिल बर्थ खोलने का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निर्धारित है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि रेलवे नियमों के तहत सुबह 6 बजे बाद बीच की बर्थ फोल्ड करना अनिवार्य है, जिससे निचली बर्थ पर यात्री आसानी से बैठ सकें। उन्होंने बताया कि अपर बर्थ के यात्री पूरे दिन बर्थ का उपयोग कर सकते। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल डीजल का किफायत से इस्तेमाल करने की अपील की है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का देशव्यापी आयोजन आज। प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख शिवालयों में भी विशेष धार्मिक कार्यक्रम होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। और पश्चिमी राजस्थान झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में पारा 46 डिग्री के पार दर्ज। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 266.66 मीटर यानी 1125 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र से बोल रहे हैं और साथ ही एफएम रेडियो लेक सिटी पर भी। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम में।
4: बिल्कुल अनीता, और हमारे श्रोताओं को फिर से याद दिला दें कि हमारा ये जो मंडे होता है, ये फिट लाइफ मंडे हमारे श्रोताओं से कनेक्ट करने का भी होता है। तो हम हमारे श्रोताओं से ये याद दिला दें कि भाई आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है, ये भी बात बता सकते हैं। और आप अपने कोई सुझाव देना चाहें तो हमें व्हाट्सएप करिएगा 9462697568946269756 इन नंबर पर, और

0: बिना अगर देखा जाए तो आज के समय का ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे किसी भी तरह का हो। आज के खाने पीने की अगर बात करें तो हम खाने की चीज़ों में स्वाद देखते हैं, स्वास्थ्य नहीं। हम बड़े तो चलो फिर भी ध्यान रखते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात होती है ना तो वो खाने पीने में बड़ी ही आनाकानी करते हैं, लेकिन अगर उनको कुछ सिखाया जाए तो ये मुश्किल काम नहीं है, क्यों बिना?
1: बिल्कुल, हमारा जो टॉपिक है आज हेल्दी हैबिट्स में वो है बच्चों में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करना, और ये बचपन से ही करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे उनकी ग्रोथ, इम्यूनिटी,

0: दिमागी विकास और भविष्य की सेहत पर असर पड़ता है। तो सबसे पहला तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको उनको संतुलित आहार देना बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। हमने बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे अनीता, जिसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो से कि हमें चॉकलेट नहीं चाहिए। तो ये इतनी मेहनत करनी पड़ती है पेरेंट्स को कि बचपन से ही उनमें ये हैबिट्स डालें। तो उनके जो खाने में दाल, पनीर, दूध, दही, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल और रोटी, दलिया, पोहा, उपमा ऐसे और सूखे मेवे, ये सब खाने में शामिल करना जब से वो खाना सीखते हैं तब से ज़रूरी है। आप उनके टेस्ट बड्स को डेवलप आप खुद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और वो कहते हैं ना कि बच्चे भी वही सीखते हैं जो आप अपने घर में देखते हैं, बड़ों को करते हुए देखते हैं। इसलिए आप भी ऐसी चीज़ें खाएं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, जिससे आप बच्चों को भी फोर्स कर सकें कि देखो हम भी खा रहे हैं तो आप भी खाइए। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स खुद है ना बाहर से मंगा के खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह के पीते हैं, पैक्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो नुकसानदेह होता है। तो उनके लिए आप उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि हम भी घर का बना ही खाना

0: तो उनके जो खाने में दाल, पनीर, दूध, दही, हरी सब्जियाँ, मौसमी फल जे और रोटी, दलिया, पोहा, उपमा ऐसे और सूखे मेवे, ये सब खाने में शामिल करना जब से वो खाना सीखते हैं तब से ज़रूरी है। आप उनके टेस्ट बड्स को डेवलप आप खुद कर सकते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। और वो कहते हैं ना कि बच्चे भी वही सीखते हैं जो आप अपने घर में देखते हैं, बड़ों
0: बिल्कुल
1: को करते हुए देखते हैं। इसलिए आप भी ऐसी चीज़ें खाएं जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, जिससे आप बच्चों को भी फोर्स कर सकें कि देखो हम भी खा रहे हैं तो आप भी खाइए।
0: बिल्कुल
1: क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स खुद है ना बाहर से मंगा के खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक्स इस तरह के पीते हैं, पैक्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो नुकसानदेह होता है। तो उनके लिए आप उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कीजिए कि हम भी घर का बना ही खाना खा रहे हैं। जो चीज़ें वो नहीं खाते हैं उनका आप स्वरूप बदल दीजिए, जैसे लौकी, करेले, तरोई, पालक, ये चीज़ें वो नहीं खाते तो आप उनको पराठे में बना के दे दीजिए, या उन या कटलेट्स बना कर दे सकते हैं। तो तरीके कई हैं, बस थोड़ा सा आपको जहमत उठानी पड़ेगी।
0: बिल्कुल एक हैबिट और आजकल देखने में आती है बच्चों की कि उनको स्क्रीन दिखाकर खाना खिलाया जाता है। तो आप ये शुरू से ही आदत ना डालें, क्योंकि एक बार आदत पड़ जाती है उसके बाद छुड़वाना बहुत मुश्किल होता है। फिर पानी पीने की आदत, और साथ में उन्हें सलाद वगैरह खाने की, उनको बहुत सारी जो ऐसी गैस नहीं जला के जो हेल्दी रेसिपीज़ होती है वो उनके साथ बनाए, उससे उनका टेस्ट डेवलप होगा और उनको खाने के प्रति रुचि बढ़ेगी। और साथ ही एक फिक्स टाइम मील का रखें, ताकि उस वक्त, जैसे कहते हैं ना कि अगर रोज़ाना का हमारा टाइम फिक्स होता है तो हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो अपने आप भूख लगा देता है उस वक्त।
1: जी बिल्कुल सही कहा। देखो सुबह के समय तो क्या है, सब कोई ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, सुबह के समय सब एक साथ नहीं होते, लेकिन शाम का खाना सब एक साथ मिलकर खाएं, सारे दिन के जो आपके साथ साथ हुए हैं घटनाएं अच्छी बुरी जो भी हैं परिवार के साथ मिलकर शेयर करें और खाना डाइनिंग टेबल पर एक साथ मिलकर खाएं, ऐसी आदत डालें तो उसमें परिवार के साथ रहने से प्यार बढ़ता है। क्यों बिना
0: बिल्कुल एक बात और हम जोड़ सकते हैं कि अच्छी आदतों में जो बिल्कुल ज़रूरी आदतें हैं, कि एक तो हाथ धोकर खिलाएं,
1: जी
0: धीरे धीरे चबाकर खाने को सिखाएं उनको, और प्लेट में खाना बर्बाद ना करने की आदत डालें, और भूख लगने पर ही खाना उन्हें दें, पीछे पड़ पड़ के वो कभी भी नहीं खाते, ये बात ध्यान रखें।

0: बीना, ये देखो कि हमारी जो झीलों की नगरी उदयपुर है, यहाँ हर रोज हजारों की तादाद में लोग शहर का लुत्फ उठाने आते हैं। तो कुछ तो गाड़ियों से आ जाते हैं और कुछ आते हैं रेलगाड़ियों से, है ना। तो शहर की हलचल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे उदयपुर से चलने वाली रेलगाड़ियों की। उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन राजस्थान का एक प्रमुख रेलवे केंद्र है, जो दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों को सीधा ट्रेनों से जोड़ती है। जयपुर असावरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो हर रोज सुबह सिटी स्टेशन से 3:35 पर रवाना होकर 8:35 पर असावरा पहुंचती है।
1: बिल्कुल, उदयपुर सिटी से बीकानेर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलती है जो सिर्फ बुधवार को चलती है, और ये शाम को 6:45 पर रवाना होती है और अगले दिन सुबह 9:25 पर बीकानेर जंक्शन पहुंचती है। ऐसे ही सप्ताह के सातों दिन उदयपुर सिटी कोटा स्पेशल चलती है, जो शाम को सुबह 6:40 पर चलती है और दिन में 12:00 कोटा पहुंचती है। वीरभूमि एक्सप्रेस के बारे में हम सब जानते हैं, ये 8:35 पर शाम को रवाना होती है इंदौर के लिए। और कवि गुरु एक्सप्रेस है जो ये उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से चलती है कामाख्या रेलवे स्टेशन तक, और ये सिर्फ सोमवार को चलती है और ये 16:05 यानी 4:05 पर ये रवाना होती है।
0: और उदयपुर जयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस हर रोज सवेरे 6:00 रवाना होकर 1:40 पर जयपुर पहुंचती है। उदयपुर जयपुर हॉलीडे एक्सप्रेस जिसका समय हर रोज 3:05 पर होता है और ये रात को 10:15 पर जयपुर पहुंचती है।
1: इसके अलावा एक उदयपुर कोलकाता चितपुर स्पेशल है जो सोमवार को रवाना होती है और ये रात को 12:45 पर रवाना होती है, और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर ये 56:35 बाद पहुंचती है। मतलब ये बहुत लंबा ट्रैक है। और इसके अलावा मेवाड़ स्पेशल की बात हम कर चुके, ये उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से हजरत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन के लिए जाती है दिल्ली के लिए, और इसका समय है 18:40 यानी कि ये जाती है 6:40 पर और अगले दिन सुबह 7:10 पर ये हजरत निज़ामुद्दीन पहुँचती है। इसके अलावा भी बहुत सारी ट्रेन्स हैं, और ये बात ज़रूर है कि अगर आप कोई भी टिकट बुक कर रहे हैं तो पहले उसका एकदम सही समय रेलवे समय सारणी से ध्यान कर लें और अपना जो प्री बुकिंग है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो उदयपुर है वो इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पर टिकट बुकिंग बहुत एडवांस में कराना बहुत ज़रूरी है।
0: आपने बिल्कुल सही कहा। और अब बात करते हैं श्रोता संवाद की, श्रोताओं के मैसेज भी हम तक पहुंच रहे हैं। तो मधुसूदन जी स्वालका का मैसेज हम तक पहुंचा है, वो लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि आकाशवाणी की जो जानकारियां हैं किसी समाचार पत्र में छपें, और आज जो गाने सुनाए गए वो उन्हें अच्छे लगे, रेलों की जानकारियाँ उन्हें अच्छी लगें, और बच्चों को संतुलित और उन्हें फास्ट फूड से दूर रखें, कमल सुहालका ने लिखा है। और परमानंद जी कुमावत का बड़ा अच्छा सा मैसेज है, वो कह रहे हैं कि बच्चों को करेले की सब्जी भी खिलाना सिखाएं। और इसके साथ ही ये जो श्रोता है ये आनंद विहार उदयपुर के हिरण मगरी के श्रोता हैं, और उसके अलावा और भी संदेश हम तक पहुंचे हैं बीना।
1: बिल्कुल, एक हमारी श्रोता है सेक्टर की टेकरी लिंक रोड से, ये लिखती हैं, इनका नाम है किरण कुमावत, ये नमस्कार भी कह रही हैं और कहती कि इनको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, और जो भी जानकारियां देते हैं जैसे आईपीएल की अपडेट हम देते हैं और जो भी दिन का विशेष होता है उसकी इतिहास के बारे में हम जानकारी देते हैं, ये इन्हें अच्छी लगी। और आज हमने जो हॉस्पिटल के ओपीडीज के नए समय बताए तो इन्हें ये जानकर अच्छा लगा
0: जी। और भोपालपुरा से सविता शर्मा जी का भी मैसेज हम तक पहुंचा, ये हमारी रेगुलर श्रोता हैं, मैसेज करती हैं हमेशा, और इन्हें आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगा है और जितनी भी जानकारियां हमने दी इन्हें बहुत अच्छी लगी, और मीना जी और अनीता जी को नमस्कार भी इन्होंने लिखा है, तो हमारी तरफ से भी इन्हें नमस्कार। और जितने भी श्रोताओं ने हमें मैसेज किए, हमारे प्रोग्राम को पसंद किया, सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब सुनवाते हैं प्रोग्राम का आखिरी गीत और श्रोताओं से लेते हैं इजाज़त।

0: आज इस कार्यक्रम में मैं थी आपके साथ अनीता, और मेरे साथ थी
1: मैं थी आपकी रेडियो दोस्त बीना। हम फिर से मिलेंगे इस गीत के साथ, छोड़े जाते हैं आज के नमस्कार उदयपुर कार्यक्रम से, लेते हैं आज्ञा।
0: नमस्कार, नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सुबह की सूचनाओं, जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम नमस्कार उदयपुर, जिसका प्रसारण हमने किया हमारे मीडियम वेव चैनल आकाशवाणी उदयपुर से। एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है एफएम रेडियो लेक सिटी। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, आइए आपको सुनवाएं आज की मॉर्निंग लोकल विंडो के कार्यक्रम। 101.9 FM, रेडियो लेक सिटी।

Lake City. Non-stop music, non-stop fun. It's coolest one.

फिर से एक नया दिन है और नए दिन की नई उमंगें, नई आशाएं और अपने सपनों को पूरा करने की नई ऊर्जा। अगर आप ये सब महसूस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हैं, और आपकी प्रसन्नता में चार चांद लगाने के लिए हाजिर है एफएम रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो एफएम बैंड 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त बीना। आप सभी का स्वागत और आगाज करते हैं गुड मॉर्निंग लेक सिटी से।

सर्दियों में जब कोयल से कोई पूछता है ना कि जरा गा कर कहो, दिखाओ या सुनाओ, तो वो कहती है कि गर्मियाँ आने दो, मेरी कुहक बहुत मीठी है।

ये था फिल्म बेटा से लिया हुआ एक गीत जिसे गा रहे थे उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल। यह है एफएम रेडियो लेक सिटी मॉर्निंग लोकल विंडो का पहला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी। हालांकि गर्मियों के मौसम में मॉर्निंग गुड नहीं हुआ करती, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी उठते हैं अल सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के आसपास, तो आपकी मॉर्निंग गुड हो सकती है, क्योंकि उस समय टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है, पोल्यूशन इतना नहीं होता है और थोड़ी सी हवाओं में ठंडक घुली रहती है। और हम देखते हैं जब हम यहाँ पर आते हैं आकाशवाणी उदयपुर इस मॉर्निंग शिफ्ट में, तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले होते हैं और 5 बजे के आसपास इन दिनों उजाला भी हो जाता है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए ज़रूरी है कि सूरज को जागने में हराया जाए, है ना। अब बात कर लेते हैं आज के मुख्य कार्यक्रमों की जो इस मॉर्निंग लोकल विंडो में आप तक पहुंचेंगे। तो ये गुड मॉर्निंग लेक सिटी, और इसके बाद ठीक 10 बजे होगा प्रोग्राम LCS के तराने व्हाट्सएप के बहाने, यानी लेक सिटी के चुने हुए कुछ गाने जिसमें आप अपनी पसंदगी की मुहर लगाएंगे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजकर। ठीक 11 बजे सुनिएगा पुरानी यादों से जुड़े हुए कुछ गीत जिसमें बातें भी होंगी और गाने भी आप तक पहुँचेंगे। राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा होगा 11:30 पर, और 12:05 से लेकर शाम के 5 बजे तक विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम आप तक पहुंचेंगे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अल्टीमेट गोल

0: एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
0: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: ये है गुड मॉर्निंग लेक सिटी, और बात मौसम की कर लेते हैं। पूरे राजस्थान और पूरे देश के साथ साथ लेक सिटी में भी गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कल का तापमान अधिकतम था 41.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस। दिन और रात के तापमान में 0.6 और 0.8 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। रातें भी अब गर्म होने लगी है और धीरे धीरे ये उमस में बदलेगी। फिलहाल 34 डिग्री के आसपास अभी से हमारी लेक सिटी का तापमान पहुंच गया है।

0: आर्थिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: ये है FM रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो। ये पहला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग लेक सिटी, और एक खास बात आपसे करते हैं चलते चलते, इस सेगमेंट से चल रहे हैं ना, कहीं नहीं जा रहे बाकी हम। तो ये कि हम बहुत सारी रिक्वेस्ट कर करके स्कूल्स बंद करवाते हैं, भाई बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है तो बच्चों को परेशानी हो रही है, स्कूल में छुट्टियां होनी चाहिए, लेकिन जैसे ही छुट्टियां होती हैं हम उन्हें हॉबी क्लासेस के लिए भेज देते हैं। तो थोड़े दिन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए अपने घर में भी, क्योंकि उन्हें परिवार के साथ रहने सीखने का, खाने पीने की आदतें सीखने का और अपना ख्याल रखना सीखने का, घर के छोटे मोटे काम सीखने का यही समय होता है जिसे हम समर ब्रेक्स कहते हैं ना। तो ठीक है, हॉबी क्लासेस भेजिए, लेकिन थोड़ी ठंडक हो जाने के बाद, और अल सुबह थोड़े दिन तो मत उठाइए कम से कम, क्योंकि वो साल भर उठते हैं स्कूल जाने के लिए, है ना। और एक और बात कि अगर आपके आसपास के लोगों से आपके संबंध अच्छे हैं तो आप उन्हें छोटे छोटे दिवसों पर विश करना सीखिए। जैसे कल मदर्स डे था तो बहुत सारे बच्चों ने तो अपनी मम्मियों के साथ अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट की, लेकिन इसमें अगर हम देखा जाए तो लड़कियों ने ज़्यादा पोस्ट की, और लड़के थोड़े से नुगरे टाइप्स होते हैं, और उन्हें याद दिलाया गया कि भाई आज मदर्स डे है तो पोस्ट कर दो, तो ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये सारे तरीके, ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए भी ये जो ब्रेक्स होते हैं ये अच्छे होते हैं।

तो जी, कोयल की बोली से शुरू होकर कोयलों के गाने तक का ये सफ़र था गुड मॉर्निंग लेक सिटी का सफ़र। एफएम रेडियो लेक सिटी की ये मॉर्निंग लोकल विंडो है। अगला प्रोग्राम होगा एलसीएस के तराने, व्हाट्सएप के बहाने। हमारा व्हाट्सएप नंबर

0: नंबर है 9462697568। और आज हमने जो फिल्में चुनी हैं उनके नाम बताएं, उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अपने गीत के दौरान ही नाम भेज दें जब वो गाना बज रहा हो अगर आपको पसंद है, और एक या दो फिल्मों में ही अपने नाम भेजें, और पूरे मोहल्ले और पूरे गांव के नाम एक साथ मत लिख के भेजिएगा, प्लीज़ अपने एक या दो नाम लिखिए, बहुत अच्छा लगता है, कम नाम पढ़ते हैं तो गाने ज़्यादा सुनने मिलते हैं। और उसके अलावा एक और रिक्वेस्ट की फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है तो फरमाइशें ना भेजें, हम अपनी फिल्में जो चुन कर लाए हैं उनके नाम आपको बता देते हैं। ये है भ्रष्टाचार, दिल है कि मानता नहीं, हम आपके हैं कौन, 100 डेज, खूबसूरत नई वाली, मेरी जंग, राजकुमार नई वाली और जमाई राजा। फिर से बता दें, भ्रष्टाचार, दिल है कि मानता नहीं, हम आपके हैं कौन, 100 डेज, खूबसूरत नई वाली, मेरी जंग, राजकुमार नई वाली और जमाई राजा।
1: तुम भी गाओ।

भ्रष्टाचार, ये था फिल्म का नाम जिसका गाना आप सुन रहे हैं। सुरेश वाडकर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। पहला मैसेज हमें मिला है फजिलका पंजाब के खेड़ा परिवार का, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाड़ी, शालिनी टिवानशी, वाणी आरबी खेड़ा और जीवन सिंह बूक और समस्त खेड़ा परिवार। और हम फिर से आपको बता दें कि हम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो उसका हमें मैसेज ना करें और फोटोज़ ना भेजें। चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन से जीएस जस्सल हैं, सतवीर जस्सल, सुरेंद्र कौर, एम एकम सिंह जस्सल, सुषमा और इनके बहुत सारे साथी। फिर ये हैं कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ के देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया और मास्टर अल कबीर। हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल भाटापारा छत्तीसगढ़ के यशोदा। भ्रष्टाचार फिल्म का गाना इन्हें पसंद आया। हम फरमाइशें नहीं ले रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार के श्रोता हैं जिन्हें ये गाना पसंद है। फिर ये है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ के महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ के बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, प्रहलाद, राजेंद्र, यश और प्रयाण वर्मा। गांव फरांसी, जिला हिसार के राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी है। हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, ये नवा नथाना पंजाब के श्रोता हैं। और ये हैं धर्मचंद, रेखा, घनश्याम, ज्योति, नवीशा, योगेश जी, आकाशवाणी, वैशाली, सौरव और समस्त गोयल परिवार, खत्री मोहल्ला, राजनगर, राजसमंद के श्रोता। और ये है मुनाभाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, ये हकीकतपुरा मऊ के हैं, शिव मंदिर के पास के, और राज पैलेस मऊ, नाथ भंजन उत्तर प्रदेश के हैं। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, अच्छा नाम के साथ सरनेम भी नाम ने रख लिया है। और ये हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। और अगला जो मैसेज हमें मिला है मिस्टर एंड मिसेस 55 बजाज नगर उदयपुर के श्रोता, ये बड़े फिल्मी नाम वाले श्रोता हैं हमारे। और ये है मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब के विनोदपुरी, वीपी, रंजू, अशोक, सुशील, बीके, कैलाश, नीलम, रमा, पाली पुरी, सुनील पाठक और वीके पुरी। और ये आखिरी मैसेज ले देते हैं और इसके बाद एक गाना सुनवाएंगे। बहुत अच्छा सॉन्ग लगा है सुरेंद्र सोलंकी, भावना प्रदीप और हर्ष रानू, पार्थ समय सोलंकी परिवार, सेक्टर 11 के। और ये है मीरा कॉलेज उदयपुर चौकीदार आवास के रोशनलाल, राजकुमारी, ललित, जमुना, मधु, ज्योति, पूनम, सचिन, विवांश और हेत्विक सालवी। अगला गाना हमने लिया है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से।

कल्याण सांखली, सोनिया जी, ई पुरी, कोणा जी, देवाशीष दासगुप्ता और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें फिल्म दिल है कि मानते नहीं, गले में जिसके सोने की चेन है, ये लड़की किसकी है, ये मराठी लैंग्वेज में गा

ना शुरू होता है लेकिन फिर पूरा हिंदी में। चेतक सर्कल से मुकेश जिनगर, रेणु जिनगर, प्रेमपुरी गोस्वामी सहेलियों की बाड़ी से, और सज्जन कॉम्प्लेक्स आज़ाद नगर से अजय जिनगर, प्रिंस जिनगर, कुलदीप जिनगर है इनकी बाद हमें मैसेज मिला है। ये मुकेश वेद है सिसारमा उदयपुर से, मनन वेद, ईशानी वेद और शीला वेद के साथ ये चौहान परिवार के श्रोता हैं। फतेहलाल फतेह नगर धोनी से गीता राणा और इनके हस्बैंड रितेश और इनके पापा ओंकार लाल जी भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, थैंक यू जी। और ये है शब्बीर इटारसी, रुबाब बानो, हसन उगड़ा, रुखसाना उगड़ा, बोहरवाड़ी के श्रोता। और ये है हाफिज़ा मिठाई, नफीसा फकरू, यूनुस असगर, सकीना पटवा, झाकिया गुरैया, बस्तीराम जी की बाड़ी उदयपुर के श्रोता। और ये मैसेज आया है उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी और नाहर सिंह वारी का। और अगला जो मैसेज है ये हरी शंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना काजल, मारवाड़ी

0: भास्कर, सकीना पटवा, झाकिया गुरैया, बस्तीराम जी की बाड़ी, उदयपुर की श्रोता। और ये मैसेज आया है उदयपुर वारियों की घाटी से सत्यनारायण वारी, शांति वारी, जगदीश चौक से सीमा वारी और नाहर सिंह वारी का। और अगला जो मैसेज है ये हरिशंकर शर्मा, जीत शर्मा, रीना काजल, मारवाड़ी स्ट्रीट, रविंद्र सरणी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के हमारे श्रोता। गोपालपुरा उदयपुर से सत्येन चौहान, तरुणा चौहान, नव्या श्री, नित्या श्री, और इन्हें ये गाना पसंद आया, दिल है कि मानता नहीं फिल्म का गाना। रहमान कॉलोनी उदयपुर से मोहम्मद इदरीस, रुखसाना बानो और मुस्तफ़ा रज़ा को भी पसंद आया है। और ये है सुरिंदर संधू, अनीता, रोहित, रितेश, शिखा, प्रतीशा संधू और मैक्स, ये कोलम रोड, हर गोविंद नगर, नवा शहर पंजाब के श्रोता है, शायद मैंने सही पढ़ा। और ये है गांव कलाना, तहसील भादरा, ज़िला हनुमानगढ़, राजस्थान के विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्ध कड़वासरा, ये इनका सरनेम है। महाराणा प्रताप कॉलोनी के रमेश भारती, विनीत, मिथिल और प्रगति नाचानी, इन्हें भी पसंद आया ये गाना। और ये मिला है हमें एक मैसेज, अजाज रजिया, फैज़ा अमर, अमरनगर बी ब्लॉक, उदयपुर के श्रोता। इंतखाब रेहाना, समया खुशी, नाजिमा सवीना, सेक्टर 12 के, और हसन परवीन, इरशाद, जीनत, रफिया, मलतलाई के, और सज्जन नगर उदयपुर से उस्मान हिना, इरफान गुड़िया, निदा अली और दानिश आमिल का मैसेज है। सलमा अंतारी, खुजिमा अंतारी, सोगरा अतारी, साजिदा, तबस्सुम, अलीशा कलकत्ता वाला, 4 खारोल कॉलोनी के ये श्रोता है। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम, अदिब हसन, कुमार हेड़ा गांव के हैं, ये सहारनपुर ज़िला इनका है। और ये है हरजिंदर, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड, जमशेदपुर, उदयपुर, जमशेदपुर के श्रोता हैं। और पटेल नगर, मालाउत, पंजाब, डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी, गगनदीप और आरजू और गुड्डू जजौरिया है। जवाहर नगर उदयपुर से बाबू भाई और भारती देवी का मैसेज हमें मिला है। कोटवा नारायणपुर, बाबा पट्टी बलिया के, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय और दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर के प्रतीक, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय। और ये मैसेज हमें मिला है खांजीवीर उदयपुर से, जब्बार मोहम्मद, फरीदा शबनम, निदा अरिम कलीम, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। और कुतुबपुरा उदयपुर के अशरफ खान, रईसा खातून, मंजू निम्मी और 80 फिट रोड के नजीब खान, सबिहा खानम, शीबा और शैला, एक रिक्वेस्ट आपसे कि पुराने मैसेज आप डिलीट कर दिया कीजिए। और हम फिर से आपको बता दें कि हम फरमाइशी गाने नहीं ले रहे हैं। सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया का ये मैसेज गांव खारिया ढाणी, ज़िला सिरसा, हरियाणा के श्रोता है। और ये है कमल कुमार, हितेश सुहाल का, उदय लाल जी टेलर, मंजू कुमावत, परमानंद जी कुमावत, लखारा चौक उदयपुर के श्रोता। और कौशल्या, जतिन, जवीन मेनारिया, राजू मेनारिया, भूपेंद्र मलारा, नरोत्तम गौड़, कमल हरीश सुहाल का, महाराजा का अखाड़ा, टेकरी वाले, ठीक है जी। और ये है संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सानी, पिंगावाला चौक, गोरिया, जलंधर, पंजाब के श्रोता। और एक मैसेज ही और हम ले लेते हैं, ये भावना रावत, नितिन रावत हैं और आयुर्वेदिक चौहरा से अशोक चौहान, मंजू चौहान और उषा चौहान। और अगला गाना आप तक पहुंचाते हैं और बाकी के नाम गाने के बाद पढ़ेंगे।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
0: और ये गाना है फिल्म हम आपके हैं कौन से।
3: 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's start the fun.

बिल्कुल, अगर बहुत तेज गर्मी बाहर पड़ रही हो तो ऐसे सुहाने नगमे दिल को सुकून देते हैं। फिल्म थी हम आपके हैं कौन, एसपी बाल सुब्रमण्यम, लता मंगेशकर की आवाजें, अशोक कुमार, नामदेव, दीपांश नामदेव, अनीता नामदेव, कुमार वाड़ा उदयपुर के हमारे शोदा जी ने ये गाना पसंद आया, और जिला सहारनपुर नसीम अंजान अंसारी, असीम अंजारी अंसारी, मोहम्मद अहमद, ये है मिला सहारनपुर का मैसेज, और अब ये है लच्छनपुर छत्तीसगढ़ के साहू परिवार के विश्वनाथ, पंकज और तिरुपति, और ये है सेक्टर 9 के हरी जिनगर, मंजू, जय जिनगर, माधवी, छुटकी की टू, इन्हें सारे गाने अच्छे लग रहे हैं, और नसीराबाद से महेंद्र डाबी और ममता डाबी और हनी गुना भी ये गाना सुन रहे हैं, और ये है कुमावत परिवार का मैसेज, खेरादीवाड़ा रंगीला भैरू चौक के लाल सिंह, मीना, मोहित और मीनाक्षी, कोमल,

शिवलाल जी, छगन देवी, राजकुमार, चारभुजा मंदिर, खेरादीवाड़ा के श्रोता और हिरण मगरी सेक्टर 5 के विनोद, नीलम, गजेंद्र जी, जया, कुशल और कोमल कुमावत। और ये हम मैसेज पहले ले चुके, तो अगले श्रोता का नाम पढ़ते हैं। मनीष टेलर, बाबूलाल धाबाई और ये सीमेंट फैक्ट्री उदयपुर के श्रोता हैं। और हम आपके कौन का ये गाना पसंद आया, तरुणा झमक पूर्विया, सोहन देवी पूरव पूर्विया, लक्ष्मी लक्ष्यराज पूर्विया, हाथीपुल उदयपुर के श्रोता हैं। एजाज जहारा, फैजान, शोबान, फैजल, मलतलाई सज्जन नगर उदयपुर के श्रोता, बस्ती राम जी की बाड़ी उदयपुर से हैं, सिराज हुसैन, शरीन, ताहिर अली, हसन और मोतीवाला फैमिली के श्रोता। ये है विलेज डुमरी, सिमरी, ब्लॉक डुमरोन, डिस्ट्रिक्ट बक्सर, बिहार के अवधेश शर्मा, श्री कृष्ण, मुकेश, सनम, रोहित, अशोक, ब्रजेश, प्रकाश, गायत्री, हीरालाल और दिल मनी शर्मा, सेक्टर 5 के नारायण लाल जिनगर, इंदिरा जी, पंकज, कविता, हनी और लक्ष्य राज जिनगर, बापू बाजार से मीना और साक्षी वारी, दीपक रावत और किरण रावत ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। चूना फाटक हनुमानगढ़ जंक्शन से जीएस जस्सल, सतवीर जस्सल, सुरेंद्र कौर जस्सल और इनका हम मैसेज पहले ले चुके हैं, तो अब आप अभी मैसेज ना करें क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता अपना नाम सुनना चाह रहे हैं। मलियान सरदाना मेरठ से है, अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जिव्यम जैन, हम फिर से कहेंगे फरमाइश मत भेजिए। महेंद्र चावला, यशगीत, दीपा, समर चावला, एमपी कॉलोनी के ये श्रोता हैं। तीज का चौक से राजकमल खंडेलवाल, शैलेंद्र, इंदरलाल, दीपक, सही वालों की हवेली से जगत सिंह चौहान, सविता, मोना और धीरज चौहान। फिर ये अमृत सेन का मैसेज आया है हजारेश्वर कॉलोनी से और इनके साथ है लेक सिटी रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य, विजय व्यास, उषा व्यास, जयेश, विनीत, पूनम, आशीर्वाद नगर, यूनिवर्सिटी रोड उदयपुर के ही व्यास परिवार के श्रोता, और रहमान कॉलोनी उदयपुर से अब्दुल समद, फिरोज बानो, मोहम्मद अरसलान और मोहम्मद रजा। ये है भरत जायसवाल, सोनी गरासिया, गांव मंडवा, डूंगरपुर राजस्थान के हमारे श्रोता, उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी, साहिल भारती बघेल, लगान पंडरिया, छत्तीसगढ़ के श्रोता जिन्हें गाना पसंद आया है। और ये है डिम्पी, स्नेह प्रकाश जी, सूर्य प्रकाश जी और सूरज पोल उदयपुर के श्रोता, सुहाल का परिवार के, और मधुसूदन, मधुकर, संपत जी भीलवाड़ा के श्रोता हैं। और ये है तीतरडी से मीत टेलर और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। और एक और मैसेज हम ले लेते हैं। हम फिर से अभी बता रहे हैं कि हम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए अपने नाम भेजे। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू, सोनम और दानिश और श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य, गोला बाजार बक्सर के हैं, और राज एस डी अंसारी और आसमा खातून सारिमपुर बक्सर के। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं। चांदपोल भिंडर की हवेली से गोपाल कुमावत, कैलाश हेमंत, सरोज गौरव, भाईस्कर, लविश्कर, हेमलता, निशान जी और भावेश जी माली, बहिष्कर ऐसा कुछ नाम है शायद, भास्कर होगा ये। चलिए हम अगला गाना सुनवाते हैं। अगला गाना है फिल्म 100 डेज से।

कॉलोनी, दिल्ली से तुलसी वीना, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रुचिता खुराना, केशोरी धान खुराना का मैसेज हमें मिला है। पटेल नगर मालाउद से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी करगंदी पर आरजू जाजोरिया, आपके दो मैसेज हमने शामिल कर लिए। अब कृपा करके फिर से मैसेज ना भेजें।

मीरा नगर सी ब्लॉक से मनोहर सिकलीगर, सरोज गणेश घाटी से हेमंद्र और विजेंद्र सिकलीगर, और ये है लीला का मैसेज। संजय शर्मा, गीता शर्मा, विकास, निकेश और निशा शर्मा, नौनिया मोहल्ला विरेजबारा, तहसील जमीनिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के ये श्रोता हैं। और ये है नागचुन रोड, संजय कॉलोनी।

खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक जियाउल हक और मोहम्मद उमर डावर के साथ राजेंद्र कटारे भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ के, सोहन और पायल जोशी नागानगरी से, अब्दुल भाई बाबू भाई टिंकू भाई और सोनू भाई और सेफन भाई का ये मैसेज है। रहमान कॉलोनी उदयपुर से यास्मीन बानो, शबनम बानो, हुसना बानो और फरहीन नाज। अशोकनगर अशोक जी का मैसेज है प्रताप नगर उदयपुर से। अच्छा, ये बड़ा प्रिसाइज मैसेज भेजते हैं, छोटा सा। स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप गुगनू, गुरनूर और गुरलाल और अविराज सिंह, ये सिंह परिवार गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला के श्रोता है। और ये है कुवैत से ताहिर अली तस्लीम, अमातुल्ला और हसन, इन्हें गाने अच्छे लग रहे हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं ये। और ये मैसेज हम पढ़ चुके हैं। ये है एडवोकेट कमलेश चौहान, मधुकांता भाग्यवंती चौहान, के वन रोड भोपालपुरा उदयपुर के श्रोता है। इनके साथ पियान चौहान भी है और इन्हें गाने पसंद आए। 100 डेज़ का ये गाना नीरज ध्रुवेश प्रेमशंकर दिव्यांश खारोल कॉलोनी फतेहपुरा उदयपुर के श्रोताओं को पसंद आया। और इसके अलावा है ये वीना मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा, हमने इनका नाम पढ़ लिया है। और ये है अशोक आनंद, मीनू नैनानी, प्रभात नगर सेक्टर 5 के श्रोता। और ये है सविता शर्मा, पायल, पूनम, पुनीत, सिद्धेश, अदिति, सृष्टि, विनीता, मंजू और सुनीता भोपालपुरा के श्रोता, इन्हें सारे गाने अच्छे लग रहे हैं। और हम फिर से कह रहे हैं कि हम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है सलार पहलगाम कश्मीर से, पीरजादा मिराज, मिराजुद्दीन, नजीमुद्दीन और कैसरुद्दीन का। और 100 डेज़ का ही गाना पसंद आया भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान और पूजा परिहार। और कृष्ण कुमावत, प्रियांश पेलोदिया, मिठू झाला उदयपुर राजस्थान के श्रोता, ये पुला उदयपुर के हैं, अंकिता और कृष्णा। और ये है सैफी कॉलोनी खांजीपीर से डॉक्टर निदा नबिया, रेहाना बानो, मिफ्ता हुसैन, फरीदा जब्बार सुल्तान और मल्ला तलाई के फयाज हुसैन रसिया, फरीदा बानो, मोहम्मद सैफ और रुबीना और विशाखा नामदेव, पार्थ नामदेव, नव्यांश नामदेव, कुमार वड़ा उदयपुर के श्रोता, मुकेश बडारिया, मामा जी, लाला राम जाटोलिया, दीप टेलर, सेंटर एरिया उदयपुर के श्रोता, ये सेंट्रल एरिया। अच्छा जी, और फिर से हम कहेंगे कि हम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। ये मैसेज हमें मिला है श्रीनाथ मार्ग खेरादीवाड़ा के गोविंद जी, राजकुमार, कैलाश, नवीन लाल जी और शशांक कुमावत, मोहित, कार्तिक, पलू, यूवी कुमावत, सेक्टर 5 के, सेक्टर 5 के ही किंजल, हर्षिता, शौर्य और गजेंद्र और किशोर टेलर, जयंत राठौड़, मालदास स्ट्रीट के श्रोता हैं ये। और बहुत देर बाद ये मिला रामचंद्र ट्रेलर, लीला देवी, कल्पेश पंवार, पिंकी मनस्वी, चैतन्य, कार्तिकेय, प्रभात नगर सेक्टर 5 के, ये तेरे नैना वाला भ्रष्टाचार के गाने का ये मैसेज हमें बहुत लेट मिला। आज संस्थान उदयपुर के रामचंद्र पंवार, तुलसी राम दैया, डी के चौहान, अशोक कुमार सोलंकी, कैलाश माहेश्वरी, कृष्णकांत कनेरिया और इनके साथी। और ये है बहरवाड़ी से आशिक आलम, सभी टेलर और ताहिर लड्डू सिराज और हबीब। फिर ये है पुरानी भिलाई 3 चरोदा छत्तीसगढ़ के डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमिदून, जिशान अहमद, शाहनवाज अहमद और सिद्दीकी परिवार। और ये मैसेज आया है बोहरा गणेश जी से और ये है राजकुमार माथुर, स्मिता माथुर, निलय माथुर और अक्षिता माथुर, आलिन माथुर के। और ये कह रहे हैं कि हम आपके ठेठ मेवाड़ी भाषा को मिस करते हैं शाम के गोखड़ा कार्यक्रम, बिल्कुल ज़रूर से आपको सुनने मिलेगी। और परमानंद कुमार लाल जी और सभी साथी इनके हैं धानमंडी उदयपुर के श्रोता। और ये है बाबूलाल जी, दानिश टांक, मुकेश टांक, पुष्कर सूरजपोल, रेगर कॉलोनी के श्रोता और दिनेश, मोहित और इंदु जिनगर भूत महल से हमें लिख रहे हैं।
किरण कुमावत का मैसेज हमें मिला है।

0: काष्ठ कला मार्ग से अमृतलाल जी रेणु और रविशंकर, और हनुमान जी मंदिर से अशोक जी, सीता देवी और ताशु हेनो के साथ। और अगला गाना आपको सुनवाएं उसके पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद सुनिएगा फिल्म खूबसूरत का एक गाना, नई वाली खूबसूरत।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

ये नई वाली खूबसूरत जिसमें उर्मिला मातोंडकर और संजय दत्त की मुख्य भूमिकाएं थी। संजय कुमावत, अच्छा नाम भी हमारे पास यही है, कविता कुमावत, राकेश मीणा, आर के पुरम, उदयपुर के श्रोता जिन्होंने हमें मैसेज भेजा, विनोद कुमावत, किंजू शौर्य, हर्षिता पल्लू, यूवी सेक्टर 5 के, नानजी भरत जायसवाल, लालजी दिलीप जी, लक्ष्मी मार्गमल का कांटा के और तुलसीराम कुमावत, कांता तौशिका रवि, महादेव मंदिर खेरादीवाड़ा के, किंजल, हर्षिता शौरी, गजेंद्र सेक्टर 5 के, ये नाम हम पढ़ चुके हैं। और अब फिर से इधर से शुरू करते हैं कि ये हैं धानमंडी से कृष्ण कुमार हरिव्यासी, सरोज बाला मेगा गीत, राजस्थान रेडियो श्रोता संघ के सभी सदस्य। और हम हमारे श्रोताओं से फिर से बोलते हैं कि हम फरमाइशी प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। रामपुरा से सुधारानी वैष्णव का ये मैसेज मिला है और ये बड़ा सारा मैसेज है। तुलसीराम जी चौहान, सूरज बोल के, गजेंद्र सिंह, सारक देवोद, बबीराज सिंह, मुरकिया खुर्द बोहेड़ा से भूपेंद्र सिंह चौहान, शेर सिंह चौहान, बोहेड़ो चौहानों की हवेली के गोपाल चौहान, ठोकर चौरा उदयपुर से मनोज बागड़ी, एडवोकेट महेश बागड़ी, आदर्श नगर पहाड़ा के विकास सिंह, जयपुर के हैं कुशल और मन, सेक्टर 14 के ललित सिंह चौहान, कांकरवा, हेमेंद्र चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, गोकुलपुरा आयर के हैं ये, इनके साथ है उमेश, हेमेंद्र दक्षिण आयर, कलालवाटी और इनके बहुत सारे दोस्तों का मैसेज है। और एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ नाम और पढ़ेंगे और अगला गाना सुनवाएंगे।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निःशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: अगला गाना है फिल्म मेरी जंग का, इसका म्यूजिक चल रहा है, तब तक हम आपको सुनवाते हैं कुछ नाम। तो ये मल्लतलाई उदयपुर से जानिब तस्नीम और भीलवाड़ा वाला फैमिली के श्रोता हैं और ये है राजकुमारी विपिन गोस्वामी चंदनवाड़ी प्रेमनगर के श्रोता, हसन परवीन इरशाद जीनत राफिया मल्लतलाई के श्रोता हैं, ये है लंका चौक भोरवाड़ी के शफीकुल शरीफ छायवाला, हुसैनी आरो दीपक प्रजापत हातिम टेलर इलियास अली शौकत और शौकत तामसी और दुआ गणेश नगर के महावीर जैन चितौड़ा का ये मैसेज है। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह सुनीता सिंह प्रीति ऋतु सिंह संकल्प कृष्ण कृषिवी सिंह प्यारी गुड़िया वेदा सिंह, अच्छा जी।

ये हमारे पास है लक्ष्मी मार्ग अमलका कांटा के राहुल, योगेश योगी और विक्रम शर्मा का मैसेज। धनौरी तेरीवाला से निसार सलमानी नौशाद बेबी आलिया और अयान बाबू का मैसेज है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ के टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का। सेक्टर 5 शांति नगर से घनश्याम लाल बडारिया, नानी बडारिया, नंदिनी पल्लवी, कुसुम और बाबू भैया। सवीना से है ये जैनब फातिमा, रहमत फातिमा, नेमत फातिमा, अबू बकर, और ये कह रहे हैं कि हर एक प्रोग्राम में एक गाना देशभक्ति का और बच्चों का जरूर से दीजिए। बिल्कुल ज़रूर से हम बच्चों का गाना बजाएंगे। यूडीपी खूबसूरत, यूडीपी तो लिखने की आदत है हमारे श्रोताओं को, क्योंकि उदयपुर का मैसेज है। मोहम्मद सलीम शाह, तजिया बानो, एनया टेलर, अक्सा इकरा, मुस्तफ़ा कॉलोनी, मस्जिद एरिया, सलूम्बर की श्रोता, और ये है विक्रम शर्मा, नरेंद्र नाहटा, उमंग नाहटा, राहुल अक्षय, अमर सिंह, दिलीप चित्तौड़ा, सुनीता वसीटा, भंवर सिंह, गौतम वसीटा, राहुल अगरबती, राम द्वारा चौक धुली, बावड़ी उदयपुर की श्रोता है ये। गजानंद येले, नवदीप, विश्वदीप, अशोक येले, शेरी वडने, अकोला के बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, चंद्रपुर महाराष्ट्र, मधुकर येले, कंचन येले, नीलेश येले, बुद्ध विहार बाबली से मनकेश पानबुड़े, भानु दास पानबुड़े और टेकड़ेवाड़ी से सुशील और मनीषा, और सबसे पहले जो येले परिवार था वो सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से।

अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ ये गाना है फिल्म मेरी जंग से। दिलीप सेन, दिनेश नंदावत, राजकुमार जैन, परमानंद कुमावत, सुखलाल साहू, मणिलाल मोची, प्रहलाद अग्रवाल, तहल बाजार उदयपुर के श्रोता है। ये है मुकेश बडरिया, रेगर कॉलोनी मावली गांव के श्रोता है। गोपालवाड़ी से दिलीप भाई, सत्तू भाई, रवि भाई मावा वाले और हरीश रावत और मीना रावत है। ये सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक ये अनारकली बाजार जगराव के श्रोता है। रामपुरा से नारायण सेन, इन्हें भी गाना पसंद आ रहा है। गुन्नेर से आदिल कमर, तस्दीक अली, मुजफ्फर अली और ये है आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े जवाहरनगर दुर्ग के श्रोता। और ये आखिरी मैसेज हमारे पास मिला है दादरी

गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा का। और एक ये आखिरी मैसेज हम ले लेते हैं, इसके बाद प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ आज के इस प्रोग्राम में आप मैसेज नहीं भेजिएगा। आप तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया। आखिरी नाम हम पढ़ देते हैं, ये मैसेज हमें मिला है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा का। हम फिर से ले चुके हैं ये पहले भी नाम, चलिए फिर से ले लेते हैं। और एक और मैसेज वरा गणेश जी, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, चंदा भरत अग्रवाल का। और अब आखिरी गाना आपके लिए, ये नई वाली राजकुमार है।

श्रोताओं, ये था आज का LCS के तराने व्हाट्सएप के बहाने प्रोग्राम। आपको इस प्रोग्राम तक पहुंचा रही थी आपकी रेडियो साथी बीना, और तमाम श्रोताओं का शुक्रिया जिन्होंने हमें मैसेजेस भेजे। हम फिर से आपको याद दिला दें कि सोमवार का ये प्रोग्राम जो सुबह 10 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक आपके रेडियो सेट तक पहुंचता है, ये हमारे द्वारा चुनी हुई फिल्मों के गीतों का प्रोग्राम है। तो प्लीज़ अगली बार जब आप हमें मैसेज भेजें तो उसमें फरमाइशें शामिल ना करें, सिर्फ अपने नाम भेजें और एक या दो बार बस, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हैं जो अपना नाम सुनना पसंद करते हैं रेडियो सेट के माध्यम से। यह है FM रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो। मैं हूं आपके रेडियो दोस्त बीना, और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम यादों के झरोखे की तरफ। और पहला गाना ये मधुर सा

सोचिए सिर्फ 3 मिनट 54 सेकंड का ये छोटा सा गीत, 1960 में आई हुई फिल्म परख का ये गाना आज भी कितना मधुर लगता है, और ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले की छांव इस गाने में महसूस होती है। लता मंगेशकर ने इसे गाया, सलिल चौधरी ने संगीतबद्ध किया। साधना पर ये फिल्माया गया था और उस समय साधना कट बालों में नजर नहीं आती थी। बिमल रॉय द्वारा निर्देशित थी फिल्म परख। इसके सारे गाने बहुत मधुर थे। और अब एक ऐसी आवाज आपको सुनवाते हैं जो बहुत कम गीतों में सुनाई दी, लेकिन ये गाना बहुत मधुर है।

छोटे छोटे गाने आजकल की फिल्मों में ही नहीं बनते, ये बहुत पुरानी फिल्मों में भी बना करते थे। 1950 की कल्ट क्लासिक फिल्म बावरे नैन का एक यादगार गाना सुन बैरी बलम सच बोल रे इब क्या होगा, पार्श्व गायिका राजकुमारी दुबे ने अपनी अनूठी आवाज में गाया, गीता बाली और राज कपूर पर फिल्माया गया था। राजकुमारी बनारस वाली ये उनका नाम था उस समय। रोशन ने इस संगीत को रचा था और केदारनाथ शर्मा के बोल थे। 1950 की ये फिल्म और ये गाना राजकुमारी दुबे के सिंगिंग करियर का सबसे बड़ा हिट माना जाता है। थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा शरारती और प्रेम की उलझन वाला, मेरे दिल में यूं यूं होने लगा, कितने मधुर बोल। ये दौर सुनहरा दौर था। ये प्रोग्राम यादों के झरोखे से, और झरोखे में बैठ कर ताक झांक कर रहे हम पुरानी फिल्मों और उनके ब्यूटीफुल म्यूजिक के बारे में।

0: तुम तो प्यार हो, ये गाना फिल्म सहरा से हमने लिया। सहरा रिलीज़ हुई थी 1963 में। ये एक रोमांटिक गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। रामलाल ने इसे संगीतबद्ध किया था और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा। संध्या और प्रशांत पर ये गाना फिल्माया गया।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: लाल ने इसे संगीतबद्ध किया था और हसरत जयपुरी ने इसे लिखा। संध्या और प्रशांत पर ये गाना फिल्माया गया।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

इसी चोरी चोरी फिल्म का रीमेक है। लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें थी, शंकर जयकिशन का संगीत और शैलेंद्र ने इसे लिखा। इस गाने की खास बात यह है कि ये शुरू होता है कठपुतली शो से और धीरे धीरे जो किरदार है वो उन कठपुतलियों की जगह खुद को देखने लगते हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पपेट डांस भी किया है इस गाने में।

ये वो आइकॉनिक फिल्म है जिसकी कहानी को बहुत बार चुराया गया। 1956 की ये फिल्म है चोरी चोरी। राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया ये गाना, जहां मैं जाती हूं वहीं चले आते हो। और इसके बाद की जो लाइन है ना, ये तो बताओ कि तुम मेरे कौन हो, तो शायद सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन टाइटल यहीं से ले लिया होगा। लेकिन एक और बात है कि फिल्म दिल है कि मानता नहीं।

0: जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए मुझे तुम याद आए। 1967 में आई ये फिल्म तकदीर। मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया और ये फिल्माया गया भारत भूषण और शालिनी पर। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी ने इसे लिखा। मोहम्मद रफ़ी के अलावा इसे लता मंगेशकर ने भी इस फिल्म में गाया है। राजश्री प्रोडक्शन ताराचंद बड़जातिया ने इस फिल्म को निर्माण किया था और निर्देशन भी किया था। और इस फिल्म के सारे गाने बाकी के भी बहुत अच्छे हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि पापा जल्दी आ जाना, या आइए बहार को हम बांट लें, जिंदगी के प्यार को हम बांट लें। खूबसूरत से संदेश देने वाली, बहुत सुंदर संगीत वाली फिल्म तकदीर। इस गाने के साथ ही यादों के जरोखे से ये प्रोग्राम अब यहीं ख़त्म करते हैं। हम भी ये चाहते हैं कि जब जब भी आप मधुर संगीत सुने, आप हमें याद करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। यह है FM रेडियो लेक सिटी की मॉर्निंग लोकल विंडो। आपकी रेडियो दोस्त बीना चाहती है आज के लिए इजाज़त। अगला कार्यक्रम होगा गोखड़ा, लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी स्वाति। कहीं मत जाइएगा।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

101.9 FM रेडियो लेक सिटी पर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त स्वाति। श्रोताओं, दिन के 11:31 हुए हैं और मैं लेकर आई हूं आपके लिए राजस्थानी लोकगीतों का कार्यक्रम गोखड़ा।

देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा री शुरुआत मा अणी गीत रे लारे करी दीदी हां और अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और एक और राजस्थानी लोकगीत आप रेडियो सेट ऊपर पहुंचावा।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा चाली रो है और अणि गोखड़ा कार्यक्रम रो आनंद आप ले रहा हो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेडियो लेक सिटी रे ऊपर। तो कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और यो एक और राजस्थानी मन भावन लोग

देखो सा कार्यक्रम गोखड़ा चाली रो है और अणी गोखड़ा कार्यक्रम रे मायने आप रे रेडियो सेट उपरे मां पहुंचाई रहा अच्छा अच्छा और हाउ हाउ राजस्थानी लोक गीत और अणी गीत रे माध्यम तो राजस्थान रा जतरा भी रंग है वे सब मां आपने हुणई भी दीदा और दिखाई भी दीदा। तो अब कार्यक्रम ने आगे बढ़ावा और यो आखिरी राजस्थानी लोकगीत आप रे रेडियो सेट उपरे पहुंचावा और अणी गीत रे लारे ही स्वाति बाईसा ने भी आगे दो सा राम राम सा और यो गीत हुणो सा।

0: 101.9 एफएम रेडियो लेक सिटी पर यह है आकाशवाणी का उदयपुर केंद्र। श्रोताओं अभी आप आनंद ले रहे थे राजस्थानी लोक गीतों के कार्यक्रम गोखड़ा का। दोपहर के 12 बजने को हैं, आइए अब आप जुड़ते हैं विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा से और सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत पर्व समारोह में शामिल होने के लिए आज गुजरात के प्रभास पाटन पहुंचे। हेलीपैड पर उतरने के बाद प्रधानमंत्री ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक 1 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत पर्व के तहत धार्मिक अनुष्ठानों में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री की अपील ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज जलडमरू मध्य में गतिरोध जारी रहने के कारण प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत में $100 से अधिक बनी हुई है।
2: आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा।
1: प्रधानमंत्री ने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी

0: कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने पर दोबारा विचार करने जैसे विदेशी खर्च में कटौती के उपाय तलाशने का आग्रह भी नागरिकों से किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज नई दिल्ली से ऑस्ट्रेलिया के जलवायु और ऊर्जा मंत्री क्रिस बोवेन के साथ वर्चुअल बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री यादव ने बताया कि उन्होंने सम्मेलन समिति COP31 की प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई, 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% के वृद्धि होने का अनुमान है। फुटबॉल में FC बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम कुछ खास करने वाले हैं। क्या होगा वो खास, चलिए आपको बताते हैं। प्रौद्योगिकी, यानी कि आज जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। प्रौद्योगिकी ने हमारी जिंदगी को नए रंग और नई रफ्तार दी है। रेडियो की कहीं मधुर आवाज है तो कहीं मोबाइल की दुनिया, टीवी की चमक है कहीं तो कहीं सेल्फी का नया अंदाज है। तकनीक अब हर रिश्ते और हर एहसास का हिस्सा बन चुकी है। प्रौद्योगिकी दिवस पर सुनिए कुछ ऐसे ही गीत जिनमें इन आधुनिक शब्दों की दिलचस्प झलक सुनाई देगी। तो चलिए आगाज करते हैं पुराने समय से, फिर धीरे धीरे लौटेंगे नए समय तक। तो दीजिए सुनवाते हैं आपको पतंगा फिल्म का गीत शमशाद बेगम और चित्तालकर की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसके बोल लिखे हैं, सी रामचंद्र का धुन और इस फिल्म का नाम पतंगा।
2: रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

0: और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हसीना मान जाएगी से। अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें हैं, समीर की रचना है। लीजिए सुनिए ये गीत।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820026235 मैक्स टच।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। चलिए अब अगला गीत आपको सुनाते हैं फिल्म रोबोट से। इस गीत को गाया है राग्स योगी बी, मधुश्री, तन्वी शाह और कीर्ति सगाठिया ने। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं और धुन बनाई है AR रहमान ने।

सनम तेरी कसम, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवाएंगे नीति मोहन, अकाशा सिंह और दर्शन रावल की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा है, हिमेश रेशमिया ने इसकी तर्ज बनाई है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए। ड्रीम गर्ल इस फिल्म से जॉनी टागांधी और मीत ब्रोज की आवाजें हैं। इस गीत को संगीत से सजाया है मीत ब्रोज ने।

This bass is heavy.

0: ये जवानी है दीवानी, इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं रेखा भारद्वाज और विशाल ददलानी की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत है प्रीतम का।
1: साहेबान कदरदान मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुब्रत सिन्हा का शब्दबद्ध किया ये गीत सुनिए, आवाज और धुन हिमेश रेशमिया की, फिल्म का नाम रेडियो।

विशाल ददलानी और नक्श अजीज और प्रीतम की आवाजों में सुनिए, बोल है मयूरपुरी के प्रीतम की धुन, फिल्म का नाम बजरंगी भाईजान।

प्रौद्योगिकी दिवस के इस खास संगीतमय सफर में बस इतना ही। रेडियो, मोबाइल, टीवी और सेल्फी जैसे आधुनिक रंगों से सजे इन गीतों ने उम्मीद है आपका भरपूर मनोरंजन किया होगा। इसी मुस्कुराहट के साथ दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। फिर मुलाकात होगी नए अंदाज और नए गीतों के साथ। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर आज आप तय कर रहे हैं नेहा आगरकर देसाई के साथ। स्वीकार करें नमस्कार। साथियों, इबारत तो आपने पढ़ ही ली होगी। हमारे सभी श्रोताओं का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। यदि कोई ऐसे श्रोता है जो फेसबुक पर नहीं है और उन्हें आज की हमारी इबारत नहीं पता है, तो चलिए हम जल्दी से बता देते हैं। अच्छा, एक बात पहले और बता दूं कि इबारत जिन लोगों ने पढ़ी भी है और कमेंट्स किए भी हैं, उनमें लगभग सारे शब्द आ गए हैं, लेकिन एक शब्द है जो नहीं आया है अभी तक। एक नहीं बल्कि दो ऐसे शब्द हैं। तो एक बार जरा इबारत को ध्यान से पढ़िए, शुरू से लेकर अंत तक। हो सकता है कि जिसे आप शब्द ना समझ रहे हो वो शब्द हो। इसमें कोई भी आ सकता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, नाम, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए जल्दी से पहचानना है आपको, और एक बार मैं पढ़ देती हूं ये इबारत आपके लिए। सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है।

0: और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल यहाँ तो उस पल वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरते हैं, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं मैंने जोर दिया है थोड़ी सी हिंट देने के लिए, ताकि जिन शब्दों को अभी आपने नहीं लिया है उन शब्दों को भी आप सोच सकें और महसूस कर सकें और जान सकें कि वो शब्द कौन सा हो सकता है। वैसे तो एक गीत था जो शुरू में मैंने लगाया था, मगर जब मैंने देखा कि वो शब्द तो अभी तक आया ही नहीं है, तो सोचा एक हिंट दे दी जाए और तब तक कोई दूसरा गीत सुनवाया जाए। और बिल्कुल आप लोगों ने जो दूसरा गीत है वो सही पहचाना है। लीजिए सुनवाते हैं अंदाज फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन का संगीत। सफर, जी हाँ यही शब्द है जो इस गीत में सुनने को मिलेगा।
1: एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक

तो रुझान आना शुरू हो गए हैं, मगर हम थोड़ा और इंतजार करेंगे ताकि हमारे सभी श्रोता इन इन जो जो, जो दो सवाल दो शब्द जो बाकी हैं उनका अंदाजा लगाकर हमें कमेंट कर सकें। एक साथी ने लिखा है, सभी श्रोताओं को प्रणाम। सुरीला सफर के लिए पूरा समय विविध भारती दे रही है, ये एक अच्छी बात है। हम इबारत को बार बार पढ़ सकते हैं और सोचने समझने का पर्याप्त समय है कि हमारी पसंद कुछ न कुछ टैली कर ही जाए। जी हाँ, कई श्रोता हमसे पूछ रहे हैं कि आज तो इबारत बहुत ही जल्दी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट को जल्दी करने की पीछे वजह यही होती है। अगर जल्दी पोस्ट आ जाती है तो उसका यही कारण है कि हमारे श्रोताओं को आराम से समय मिल सके। सुबह की भाग दौड़ होती है, तो अगर सुबह के काम करने के बाद जब बीच में थोड़ा समय मिले तो आप उस पोस्ट से इबारत को पढ़कर और फिर अपने शब्दों का अंदाज़ा लगा सके। देखिए, मजाक भी करते हैं हमारे साथी। एक साथी ने लिखा है, सुरीला सफ़र की पोस्ट रात 12 बजे तक नहीं थी, फिर आधी रात को आई। उत्सव फिल्म की तरह मन क्यों बहकारे बहका आधी रात को, बेला महकारे महका आधी रात को। क्या बात है, आप भी मजे ले रहे हैं हमारे। कोई बात नहीं, चलिए अगला भी जो शब्द है काफी लोगों ने बिल्कुल सही पहचाना है। ये गीत है परिचय फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

चलिए, एक शब्द का कयास तो आप लोगों ने लगा लिया है, बिल्कुल सही सही, और वो शब्द है चलिए एक बार इबारत को फिर से पढ़ देती हूँ ताकि दूसरे शब्द का अंदाजा लगाने में भी आपको आसानी रहे। तो इबारत है, सुरीला सफर कहने के लिए तो एक सफर है, मगर ये वो सफर है जिसका मुसाफिर हमारा मन होता है। और मन के लिए कभी कोई बंधन होता है क्या? वो तो बेबाक पंछी की तरह इस पल या

यहाँ तो उस पल वहाँ होता है। जिस तरह पंछी खुले आसमां में ऊंची उड़ान भरता है, उसी तरह आप भी तैयार हो जाइए नेहा के साथ अपने मन की आशाओं को पंख लगा तमन्नाओं के गगन में कहीं खो जाने के लिए। चलिए देखते हैं आप दूसरे शब्द का अंदाजा लगा पाते हैं या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा। तो और तब तक चलिए आपको सुनवाते हैं गीत। देखिए, बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि जो दूसरा शब्द है वो हमिंग वर्ड हो सकता है। किसी ने लिखा है, मैंने शब्द से शुरू होने वाला गाना लिखा है, हम तेरे बिना जी ना सकेंगे। किसी ने लिखा है, आज शायद हमिंग से कोई भी गाना सुनाया जा सकता है, हमिंग वाला दीवाना हुआ बादल, कह दो, इस तरह के कई सारे गीत इन्होंने हमिंग वाले लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है, जो गीत सच में बिल्कुल सही निकला है। लीजिए आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की का संगीत। तो सही पहचाना है आपने, बिल्कुल यही है वो गीत।

ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: हम सफल वो मेरे साथ हो गई।
1: जिंदगी के इस शोर शराबे में सुरीला सफर महज आवाजों का मेल नहीं बल्कि खुद से मिलने का एक बहाना है। हमारा मन उस बहती नदी की तरह है जिसे किनारों की बंदिशें रोक नहीं सकती। ये तो अपनी ही धुन में कभी यादों के भंवर में उतरता है तो कभी सुकून के साहिल को छूता है। जैसे नदियां आजाद होकर सागर की ओर बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही आप भी नेहा के साथ अपनी कल्पनाओं की कश्ती को तैयार कर लीजिए। चलिए आज एहसासों की लहर पर सवार होकर रूह की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां सिर्फ सुकून और सुरों का बसेरा है। ये कमेंट हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं, आज का सुरीला सफर की पोस्ट बिटिया नेहा बड़ा मन बनाकर लेकर आई है, वो भी निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके। हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये

निर्धारित समय से कई घंटों पहले, क्योंकि हर श्रोता अपने विचार भी बड़े मन से व्यक्त कर सके, हम भी ये कहते हुए स्वागत करते हैं कि ये विविध भारती, ये सुरीला सफर, ये विषय से जुड़े गीत, ये प्रसारण तरंगे हमारे दिल को चुराएं, हमको लुभाएं। मन कहे क्यों न मैं गाऊं, क्यों न मैं जुड़ जाऊं सभी मित्रों को, और मेरे लिए भी इन्होंने लिखा है, नमस्कार कर रहे हैं सभी को। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, और हमारा जो अगला गीत है उसके बोल, मतलब वही जो शब्द आपने पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाना है, शब्द है मन, और ये गीत भी कई लोगों ने सही पहचाना है। सुनिए, चित्रलेखा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है, रोशन का संगीत।

मन को लेकर हमारे एक साथी ने लिखा है, मन प्रसन्न हो तो छोटी सी बात भी खुशी दे जाती है, लेकिन जब मन उदास हो तो सारी दुनिया फीकी लगने लगती है। इसलिए इंसान की सबसे बड़ी जीत अपने मन पर विजय पाना है। जब मन थक जाए तो थोड़ी शांति, थोड़ा संगीत, कुछ अपनों का साथ, खुद से बातचीत बहुत सुकून देती है। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है, हमारा मन हमारे मस्तिष्क को साथ लेकर इंटरनेट से भी ज्यादा तेज दौड़ लगाता है, जिसके लिए ये पूरा ग्लोब भी छोटा है। मन की दौड़ का कोई अंत नहीं। बहरहाल आज भी नेहा जी के साथ सुरीला सफर सुहाना ही होगा। जी हाँ, तो मन की जो दौड़ है उसे कोई रोक नहीं सकता। बस आंखें मीचिए और सोचिए किसी दूसरे ग्रह के बारे में, तो आप बस वहीं पहुंच जाते हैं। तो मन को कहीं भी जाने के लिए बस पलक झपकने का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए, अगला गीत और अगला शब्द भी जो आपने बिल्कुल सही पहचाना है, ये है बंधन। तो सुनिए इस गीत को, करण अर्जुन फिल्म से, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाजें हैं, इंदिवर के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत। और आप बताइए, बंधन में होना कैसा लगता है?

जी हाँ, तो हमने बात की थी बंधन की। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अर्थ ये कोई जंजीर, डोर या प्रतिज्ञा हो सकती है। आध्यात्मिक या दार्शनिक संदर्भ में ये वो विवशता है जो इंसान को किसी परिस्थिति में रहने को मजबूर करती है। भावनात्मक संबंध या दोस्तों, परिवार के बीच घनिष्ठ प्रेम और रिश्ते को भी ये दर्शाता है। एक साथी ने लिखा है कि बंधन एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ की गहराई मानवीय भावनाओं, सामाजिक मर्यादाओं और आध्यात्मिक चेतना तक फैली हुई है। साधारण शब्दों में कहें तो बंधन का अर्थ जुड़ाव या बंधना, लेकिन ये जुड़ाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। बंधन स्वयं में बुरा नहीं है, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किससे और कैसे बंधे हैं। प्रेम का बंधन हृदय को विस्तार देता है, जबकि स्वार्थ का बंधन व्यक्ति को संकुचित कर देता है। एक साथी ने लिखा है, आपने बंधन का पूछा, तो बंधन अगर प्यार, विश्वास और अपनेपन के हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे बंधन में हर कोई बंधना चाहेगा और बांधना भी चाहेगा, लेकिन बंधन अगर जबरदस्ती थोपे गए हो, जिम डर हो, एक अनिच्छा हो, वो बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी सामाजिक बंधन ऐसे होते हैं, इतने कठोर, जिनको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसा मन करता है कि ऐसे बंधों को, अरे बाप रे, इन्होंने लिखा है ऐसे बंधों के, नहीं देखिए, अहिंसा की बातें हम नहीं करेंगे। तो जहां आप मतलब महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, जहां आप बंधन में नेगेटिव यानी कि नकारात्मकता महसूस कर रहे हैं, वहां से कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके आप दूरी बना सकें, क्योंकि ऐसे बंधन हमेशा तकलीफ ही देते हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी ने कहा कि बंधन प्रेम का हो तो अच्छा लगता है। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं, चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत। तो बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शब्द पंछी।

0: संयोग देखिए, अभी इससे पहले हम बंधन की बात कर रहे थे तो कहीं आजाद गगन में उड़ने की बातें हो रही हैं इस गीत में। हमारे एक साथी ने लिखा है, माता पिता का बार बार फोन करके हालचाल पूछना, वक्त पर खाना या सोने के लिए कहना कुछ बच्चों को अच्छा बंधन नहीं लगता, पर ये बातें जब माता पिता नहीं रहते तब यही बंधन बच्चों को याद आता है और प्यारा लगता है। जी हाँ, सही कहा आपने। एक साथी ने लिखा है, संसार में सबसे खूबसूरत बंधन वो है जो रक्त से नहीं बल्कि भावना से जुड़ा होता है। माँ का अपनी संतान से जुड़ाव, भाई बहन की नोकझोंक या मित्रों का निस्वार्थ प्रेम, ये सभी बंधन हमें ये एहसास कराते हैं कि हम इस विशाल दुनिया में अकेले नहीं है। एक ने लिखा है, जीवन में बंधन तो होना ही चाहिए, पति पत्नी, भाई बहन, गुरु शिष्य और दोस्तों का प्यार का बंधन, सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक और नैतिक बंधन भी होते हैं, वो भी निभाएं तो वसुधैव कुटुंबकम वाला बंधन सच हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब सुनिए ये संदेश।
1: सुनिए,
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: समय की एक अजीब बात यह है कि जब समय अपनों के साथ गुजारा जाए तो कम लगता है और जब कठिन समय आता है तो वही समय बड़ा ज्यादा लगने लगता है। बात हो रही है पल की। जी हाँ, अगला शब्द है पल। ये पल वही होते हैं जो अच्छे हो तो जल्दी से निकल जाते हैं और अगर कठिन परिस्थिति में हो तो फिर बड़ा दुख देते हैं और बड़े लंबे लगते हैं। तो चलिए पलों को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाते हैं ताकि हम उस शब्द तक पहुंच सके जो अभी तक आप लोगों ने नहीं पहचाना है। पहचानिए उस शब्द को, वरना होगा ये कि लिस्ट में उस गीत को पीछे करते करते करते कहीं वो गीत लिस्ट से बाहर ना हो जाए। समय का काटा चल रहा है तो जल्दी से उस शब्द को भी पहचानिए जो अभी तक आप नहीं पहचान पाए हैं। और तब तक सुनिए ब्लैकमेल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। घड़ी का काटा बढ़ रहा है, शब्द को जल्दी से पहचानिए। एक ही शब्द है जो अभी तक किसी ने नहीं पहचाना है, बाकी सारे शब्द लिस्ट में आ चुके हैं।

बंधन को लेकर एक साथी लिखते हैं, बंधन अनुशासन का दूसरा रूप है, इसमें व्यक्ति संयमित रूप से रहता है। तो किसी ने लिखा है, अब जाकर मेरा अनुमानित गाना हो रहा है। खैर, बंधन की बात आपने पूछी तो पूरा संसार ही बंधन है। हम तो विविध भारती के बंधन से जकड़े हुए हैं, बिना बंधन के संसार चल ही नहीं सकता है। इसके पीछे विज्ञान है, धर्म है और दर्शन भी है। अगर विवेचना करने लगूं तो पूरी एक पुस्तक ही बन जाएगी। क्या बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं कि जिन पर यदि हम बात करने निकलें तो एक पूरी पुस्तक लिखी जा सकती है। हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग कयास लगा रहे हैं, ऊंचे ऊंचे इस शब्दों पर गीत आ सकता है, या फिर तैयार, या फिर बेबाक, इन शब्दों पर गीत हो सकता है, या फिर जिसका, ये भी किसी ने लिखा है। चलिए आप लोग अंदाजे लगाते रहिए, हम गाने सुनवाते रहेंगे, और तब तक आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत जो कि है, आपने सही पहचाना है, आप में से कुछ श्रोताओं ने लिखा है, आसमां के नीचे इस गीत को लिखा है। तो बिल्कुल आप सब सही थे, ज्वेल थीफ फिल्म का ये गीत है, किशोर कुमार की आवाज़, लता मंगेशकर ने साथ दिया है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और एस जी बर्मन का संगीत।

कई सारे श्रोताओं ने उस शब्द को भी पहचान लिया है। जी हाँ, आप लोगों ने ये शब्द बिल्कुल सही पहचाना है। देखिए, थोड़ी सी मटरगश्ती करना तो हमें भी पसंद है।

है कि शब्दों के बीच में कहीं नाम, सर्वनाम, विश्लेषण, कुछ भी हम विशेषण कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो जी हाँ, ये आपने सही कहा। एक साथ ही लिख रहे हैं, हमसे जो शब्द छूट गया है वो शायद आपका ही नाम है नेहा, है ना। किसी ने लिखा है नेहा शब्द पर भी गाना होगा, तो किसी ने लिखा है नेहा जी आपका नाम इबारत के अंदर है। तो आपने अंदाजा तो लगा ही लिया कि नाम इबारत के अंदर है, तो इस पर गीत हो सकता है। फिर किसी ने लिखा है तो से नेहा लगा के हार गई सजना, तो नहीं सोचा है आपने इस गीत के लिए उन्होंने लिखा है। फिर किसी ने लिखा है नेहा जी एक शब्द मैंने पहचाना है जो किसी ने नहीं लिखा, आपका सुंदर सा नाम नेहा, धन्यवाद इसे सुंदर कहने के लिए। फिर किसी ने लिखा है मे बी नेहा हो सकता है लास्ट वर्ड, तो लास्ट तो नहीं, हम इसे अभी ही सुनवा रहे हैं। और लीजिए अब आपको सुनवाते हैं मैं नशे में हूं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। और शब्द पहचानने के लिए धन्यवाद।

हमारे साथ ही बिल्कुल चौंक गए हैं। कुछ अलग अलग तरह की टिप्पणियां आई हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। किसी ने लिखा है, वाह ये गाना दिमाग में नहीं आया जबकि बहुत बार सुना हुआ है। आपका नाम भी दुर्लभ है नेहा जी, गाने खोजने में दोपहर को तारे नजर आ गए। देखिए अब ऐसा मजाक मत कीजिए कि नेहा नाम दुर्लभ है, देखिए एक ढूंढने जाएंगे 100 मिलेंगी। चलिए ये तो ही मजाक की बात। किसी ने लिखा है, वाह बहुत सुरीला गीत हो रहा है सुरीले सफर में, नेहा शब्द से मैं पहली बार ये गीत सुन रही हूँ। और किसी ने लिखा है कि हाँ नेहा जी मैंने ये गाना भी लिखा था। क्या बात है, आप सभी ने सही पहचाना, ये अच्छा लग रहा है।

0: है जानकर मुझे भी थोड़ा सा यही था, शंका थी कि क्या ये गीत सच में कोई पहचान पाएगा या फिर ये शब्द कोई पहचान पाएगा, मगर आपने पहचान लिया तो ये सुनकर मुझे, ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे एक साथी है जिन्होंने पहले ही लिखा था, ये कमेंट पहले ही आया था कि कुछ गाने दिमाग में आ रहे हैं, काफ़ी सारे तो लोगों ने लिखे हैं, एक तो शायद वो शब्द नहीं लिखा है, वो शाम कुछ अजीब थी, या वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, एक आपके नाम से गाना है, वो शायद किसी ने नहीं लिखा है, सजन संग नेहा काहे लगाए, हाँ कि हम पछताएं। तो बिल्कुल ये गीत आपने पहले ही बता दिया था और वो गीत हमने सुनवा भी दिया। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छाँव में, गीत और संगीत किशोर कुमार का।
1: हाँ।

जी हाँ, तो ये शब्द था गगन, और आप सभी ने जिन्होंने भी इस गीत को लिखा है उन्होंने बिल्कुल सही पहचाना है। हमारे एक साथी लिखते हैं, फुर्सत मिले तो अपनी कमियों को गुदगुदा देना, बेबाक परिंदा बनकर जरा सा मुस्कुरा देना। सफर तो जारी है इस हर पल हर मोड़ पर, कभी खुद को भी उस सुरीले गगन का पता देना। तो ये था हमारा शब्द गगन। और साथियों, आपने किसी किसी ने लिखा है कि वाह नेहा जी, गाने में भी आपने अपना नाम ढूंढ लिया। हाँ जी, ढूंढ लिया, इतना कॉमन सा नाम है। फिर एक साथी ने लिखा है कि नाम दुर्लभ तो नहीं है पर गीत बिल्कुल दुर्लभ है। जी हाँ, ये गीत दुर्लभ है या शायद कम सुनने में आता है। और सच बताऊं तो ये गीत मैंने भी पहली बार ही सुना। जब मैंने शब्द पर गीत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे ये शब्द मिला। एक और गीत है जिसमें नेहा नाम आपको मिलेगा, फिर कभी जब सुरीले सफर में आपसे मुलाकात होगी तो उस गीत को शामिल किया जाएगा। देखिए, हिंट दे दी है, अगली बार ढूंढने की पूरी पूरी जिम्मेदारी श्रोता वर्ग की रहेगी। चलिए अब इस सुरीले

दोस्तों त्रिवेणी में आज गिनती की बात। दोस्तों यूं तो हमारे जन्म से ही जीवन की गिनती शुरू हो जाती है। 365 दिन हुए नहीं कि हम अपना पहला जन्मदिन मनाते हैं और साल दर साल जन्म दिवस मनाते हुए जिंदगी के सालों की गिनती जारी रहती है। मगर हमारे दिमाग में गिनती का प्रवेश तब होता है जब हमें पाठशाला में दाखिला मिलता है।

पहले स्कूल, स्कूल के बाद यूनिवर्सिटी, और फिर उसके बाद भी चाहे हम किसी की नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें, 1 2 3 4 की ये गिनती, इन संख्याओं को जोड़ना घटाना, गुणा करना या भाग देना हमारे जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाता है। अब कॉपी किताबों से निकलकर ये संख्याएं हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती हैं, इतनी कि आपस में लड़ पड़ती हैं।

जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, रिश्तों की और दोस्तों की संख्या बढ़ती जाती है। अब रिश्तों की संख्या को सीमित रखा जा सकता है, यानी परिवार कितना बड़ा हो इसका नियोजन किया जा सकता है, मगर दोस्ती का नियोजन कभी ना करें। दोस्तों की संख्या बढ़ती रहे। जिस दिन हमारा जन्म हुआ उसे हम जीवन का पहला दिन मानते हैं, परंतु दिन ब दिन, साल दर साल, जन्मदिन मनाते मनाते कई वर्षों बाद ये एहसास होता है कि असल में ये उल्टी गिनती चल रही है। कब 5, 4, 3, 2, 1 के बाद शून्य होगा कोई नहीं जानता। इसलिए अच्छे कर्म करें, दूसरों के लिए भी जिए, दोस्तों की

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
1: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
1: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया।

श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव

0: दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीर सेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से 7 अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए

0: आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए BSF को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम के 1 जुलाई

0: से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं गर्लफ्रेंड फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है किशोर कुमार और सुधा मल्होत्रा ने। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, बोल साहिर लुधियानवी के, और संगीत है हेमंत कुमार का।

केएल परदेसी का लिखा ये गीत सुनिए, जिसकी लय बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने। गीत को आवाज दी है शंकर दास, गीता दत्त और साथियों ने। फिल्म का नाम दिल भी तेरा हम भी तेरे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: असली नकली, इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की, शंकर जयकिशन ने इसकी धुन बनाई है।

धनीराम का संगीतबद्ध किया ये गीत अब सुनिए, शेरोज श्रीवास्तव के एक लिखा हुआ भी है ये गीत। आवाजें हैं मोहम्मद रफी, सविता बैनर्जी और सीता की। फिल्म का नाम बाजे कुंगरू।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चाइनाटाउन फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा है, रवि की धुन।

0: एक शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: और मंजरी क्या हाल है?
2: हम भी ठीक हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे सभी सखी और सखिया साथी लोग अपने अपने घरों में सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। और भाई रेडियो सेट के करीब तो वो सुबह से होते हैं क्योंकि रेडियो विद भारती तो वो बहुत सुनते हैं शौक से।
1: बिल्कुल।
2: और खासकर सखी सहेली के लिए सब एक साथ जुड़ जाते हैं कि आज कौन आ रहा है, कौन क्या विषय लेकर आ रहा है।
1: भाई कोई भी आए लेकिन हर एक आकर जो है हमारे सभी सखियों और सखाओं से उतना ही प्यार करता है जितने आप और हम करते हैं।
2: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: और देखो मंजरी, गर्मी का मौसम चल रहा है, इन दिनों हम गर्मी को लेकर बहुत चिंतित हैं। जो हमारे पशु हैं, पालतू पशु हैं या आवारा पशु हैं, उनका भी हमें इस गर्मी में बहुत ध्यान रखना है, पता है ना आपको?
2: बिल्कुल बिल्कुल। जो हमारे पशु हैं उनके लिए, आप जो घर में पालते हैं तो उनके लिए बाकायदा कुछ लोग तो शेड बनाते हैं और जो नहीं बनाते तो उनके पेड़ के नीचे बंधी रहती है, या आपके पास सुविधा है आप कर सकते हैं मैनेज, तो आप एक थोड़ा सा छप्पर जैसा कुछ डाल दीजिए जिसके अंदर वो पशु रह सके। और उनका खाना तो आप समय पर आप वो सब देते ही,
1: बिल्कुल
2: नहलाना।

0: जैसे कहते हैं, अगर
1: वो बहुत
0: तालाब
1: जरूरी
0: है तो
1: है।
0: आप उसमें ले जाके पशु को नहला सकते हैं, तो कुछ लोग नहलाते भी, ऐसा नहीं, हमने देखा है कई बार गांव में जब जाते हैं तो देखते हैं कि तालाब में बहुत सारी भैंसें एक साथ नहा रही हैं, गर्मी इतनी चिलचिलाती धूप होती है, लेकिन वो पूरी बॉडी उसमें ठंडी कर
1: ठंडी
0: लेती है
1: रहती है,
0: तभी
1: बिल्कुल।
0: निकलती है। तो हमसे जितना हो सके हम लोगों से उतना हमें उन पशुओं के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे, हम जब देते तभी वो खाते हैं,
1: नहीं बिल्कुल,
0: है
1: ये
0: ना।
1: बात भी है, लेकिन एक जो संवेदनशीलता, जो एक मानवीय रिश्ता होता है, एक
0: जी
1: संवेदना का जो रिश्ता है, वो हर कण कण में व्याप्त हर कीट पतंगे के लिए हमारे मन
0: बिल्कुल
1: में होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, गांव में तो इस तरह के छपरा बना दिया जाता
0: बिल्कुल
1: है, जहां भैंसे हैं, गाय हैं, बकरियां हैं, जो भी आपके पालतू पशु हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है मंजरी, जगह के अभाव के कारण हमारे कुछ साथी लोग क्या करते हैं, पशुओं को खुला छोड़ देते हैं, और पशु दिन भर गर्मी में कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, और ऐसे समय में हमारे द्वारा फेंकी गई पॉलिथीन को भी वो
0: हाँ
1: चबाते रहते हैं। इस
0: बिल्कुल
1: गर्मी के मौसम में अगर आपने गौर से देखा होगा तो उनके मुंह से फिर झाग आ रहे होते हैं, और यही पॉलिथीन उनके पेट में जाकर चिपक जाती है, जो उनकी बीमारी का भी, अस्वस्थता का कारण, यहां तक कि मौत का कारण भी
0: बिल्कुल।
1: बन जाती है।
0: तो कहना चाहिए कि हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना है, कि हम स्वच्छता के ऊपर भी नजर रखें, कि पॉलिथीन वगैरह प्लास्टिक से बनी चीजों को हम डस्टबिन में ही डालें, या
1: बिल्कुल
0: कचरा जहाँ डालते हैं वहां डालिए, जिससे हमारे पशु उनको ना खा सकें, और पशुओं का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि हम जितना उनसे प्यार करते हैं वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं।
1: हाँ।
0: और देखिए मंदाकिनी जी, आज जो हमने विषय लिए हैं उसमें है बिहार के व्यंजन, जिसमें दाल पीठा और सत्तू का शरबत। हमारे
1: अच्छा,
0: साथियों ने भी बहुत सारी रेसिपी लिखकर
1: क्या
0: भेजी है,
1: बात है।
0: तो हम पढ़ेंगे, आनंद लेंगे। फिलहाल तो कुछ बनाएंगे नहीं, ना आपको हम खिलाने वाले हैं अभी तो
1: हाँ,
0: फिलहाल
1: वही हम आपसे पूछने वाले थे कि आप बना के लाई हैं क्या।
0: नहीं, है ना।
1: ये गलत
0: तो
1: बात है ना।
0: ये अगली बार के लिए, एक बार बताएंगे अगली बार खिलाएंगे, है ना। तो कथा सुधा
1: अच्छा।
0: में हम कहानी लेकर आए हैं, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो,
1: अच्छा।
0: इसका भाग एक आज हम लोग आपको सुनवाएंगे। और रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब क्या वजह है, तो इसकी वजह आप लिखकर भेजिए हमें संदेश में, और कुछ मीठे खट्टे किस्से भी लिखकर भेजिए। और मंदाकिनी जी, आज है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक गीत सुनेंगे।
1: बिल्कुल, सुनते हैं ये गीत।

0: हाँ, तो मंजरी गाना तो बहुत सुंदर था,
1: जी
0: और वैसे देखा जाए तो जब हम किसी के साथ चोरी चोरी बंद जाते हैं ना, तो यही गाना गुनगुनाते भी हैं.
1: बिल्कुल, और कदम भी तो थिरकने लगते हैं ना ऐसे, जब
0: बिल्कुल.
1: धुन सुनाई देती है, ऐसे बोल सुनाई देते हैं, तो लगता है बस एक बार नाच ही लो
0: नाच लो, तब तो खैर मन
1: जी
0: का हाल ही क्या होता होगा, ये तो वही जानता है जिसके
1: जी
0: साथ ये होता होगा.
1: जी जी बिल्कुल। तो कथा सुधा में हम आज कहानी सुनाने वाले हैं अपने साथियों को, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का भाग एक। लीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं कथा सुधा में ये कहानी.
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। आइए सुनते हैं इस कहानी का पहला भाग।
4: उन दिनों दूध की तकलीफ थी, कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं निकला। दो चार दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती कि दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले लें, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी, लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह न थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे, इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक छत्र अधिकार रहे। वो उसे पूरी आजादी से पांथे, उपेले बनाए, घर लीपें, पड़ोसियों को दें या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाएं। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद ना होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वो गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश न करेगा और न किसी को इस्तेमाल करने के लिए आमादा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता था और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई, जिसने हमारी गाय बनाई, ताजा दूध पिलाया उसने, लुत्फ हयात चखाया उसने, दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम ने बख्शी सेरी, खुदा की रहमत है, मूरत कैसी भोली भाली सूरत। मगर धीरे धीरे यहां पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहां तक नौबत पहुंची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया, कितना ही उबालो न कहीं मलाई का पता न मिठास। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार

0: होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का मौका न था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुस्खा किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह ना लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो आध शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचख मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती,
1: ये क्या है इतना खराब दूध? ये दूध ले जाकर उन्हीं के सर पे पटका। हाँ,
0: मैं नौकर को मना करता। वो कहती,
1: अच्छे दोस्त है तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि ये लोग दूध देकर क्या कहेंगे? गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा ना? रुपए खर्चे हैं तो उसका मजा तो मिलेगा।
0: चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खासी बेतकल्लुफी है उनसे। यह हरकत उनकी जानकारी में होती हो, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं? और फिर उनकी बीवी से भी तो राह रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी हैं। मेरी बीवी जी भी उनके यहां कई बार मेहमान बनकर जा चुकी हैं। क्या वो यकायक इतनी बेवकूफ हो जाएंगी? श्रीहन आंखों में धूल झोंकेंगी? और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए ये गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत तो ये हुई कि 3रे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया। गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इत्मीनान की सांस ली। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, वो बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है। उसे दुहने के लिए न ग्वाले की जरूरत, न उसका गोबर उठाने, नांद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी की जरूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से दुह लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चलिए किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फायदेमंद भी ज्यादा है, बच्चों के लिए खास तौर पर, जल्दी हजम हो जाता है, न गर्मी करे न सर्दी, स्वास्थ्य वर्धक है। संयोग से मेरे यहां जो पंडित जी मेरे मसौदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफी तजुर्बेकार थे। उनसे जिक्र आया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया।
2: अरे साहब, पछाही नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की, बड़े बड़े थन जो जमीन से लगते चलते हैं, बेहद कमखोर लेकिन बेहद दुधार। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही ब्याई है, सिर्फ 25 रुपए में आ जाएगी।
0: मुझे दाम कुछ ज्यादा मालूम हुआ, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और 3रे दिन बकरी आ पहुंची। मैं देखकर उछल पड़ा, जो जो गुण बताए थे उनसे कुछ ज्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नांद मंगवाई गई, चोकर का भी इंतजाम हो गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर। मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। अब मुसलो ढोल बजाएंगे, ये मसला इतने दिनों बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही ये बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दुह पाता था, लेकिन ये तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ न थी। बकरी क्या है, काम धेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नजर न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता, देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नजर लग गई होगी। बात क्या है, पंडित जी से हाल कहा तो

0: उन्होंने कहा?
1: अरे साहब, देहात की बकरी है, जमींदार की, बेदरेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घूमा चरा करती थी। यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
0: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां? इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहां बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग हैं, कहार घंटे दो घंटे टहला लाया करेगा। झटपट मकान बदला और गांव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दोगुना फासला तय करने को तैयार था। यह मकान खूब खुला हुआ था, मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग, बाग से निकलिए तो कछुओं के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे, मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त नहीं हुई। 2.5 शेर की जगह मुश्किल से शेर भर दूध निकलता था, लेकिन ये तस्कीन थी कि दूध खालिस है। यही क्या कम है? मैं ये कभी मान ही नहीं सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी? लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उस

0: हमारे देवताओं और नबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी भी गाय चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रही होंगी। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने नहीं किया उसे वो कैसे करे। नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की जरूरत है वो हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता। बकरियां पत्तियां चर लेती थी मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करें। यूं बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी लेकिन बाग और खेत में घुस गई। आजादी नहीं है इसे वो शायद न समझ सकी। एक रोज किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियां साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
1: बाबूजी इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध के रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम या तो उसकी टांग तोड़ देंगे तो कांजी हाउस भेज देंगे।
0: अभी वो अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची और उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया।
2: अरे मैं हाँ हाँ करती रही मगर ई बकरिया तो भैया का बताएं हमारे खेत में ही घुस गई। सारा का सारा खेत हमारा चौपट कर दिया। इसके पेट में तो भैया भवनी बैठी है। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाँ हकीम होंगे अपने घर के होंगे। देखो बाबू अगर बकरी रखना है तो बांध कर रखो, बता देते हैं, नहीं तो इसका गला ऐंठ दूंगी।
0: मैं भीगी बिल्ली बना खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया अगर उसे दूसरे मौकों पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सूझता था। बस यही जी चाहता था कि बकरी का गला घोंट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वो औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौकों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर मेरी बीवी ने घर में ये गुलगपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली,
3: ये ले जा तू कानी हौज पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर्र टर्र कर रही है घंटे भर से। जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान ले लेगी। और हाँ खबरदार जो एक बात भी मुंह से निकाली। क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गलती तो मानती नहीं, ऊपर से लड़ने चली आई है। मैं अभी पुलिस में इत्तला कर दूं तो बंधे बंधे फिरोगे।
0: बात कहने की इस शासन पूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो, ऊपर से रोब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया,
3: मेरा एहसान तो मानोगे ना कि शैतानों को कितनी आसानी से मैंने भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में ही नहीं आती है। उसे ये लोग कमजोरी समझते हैं और कमजोर को भला कौन नहीं दबाना चाहता।
0: खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया,
4: अरे साहब बकरी चराना मेरा काम नहीं है।
0: मैंने कहा तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है। जरा उसे देखते रहा करो कि किसी खेत में ना जाए, इतना भी तुमसे नहीं हो सकता।
4: देखिए मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए।
0: आखिर मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतने जरा से काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं

0: देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द चला आया और चटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची, मेरे दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था, आज ये कवायद करनी पड़ी, थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई, आज बकरी ने कुछ ज्यादा दूध दिया। ये ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाएं तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकले। लेकिन हरी पत्तियां आए कहां से? पेड़ों से तोड़ूं तो बाग का मालिक जरूर एतराज करेगा, कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा क्यों एक बार बांस के लग्गे से पत्तियां तोड़े, मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे, राजी हो गया तो खैर, नहीं तो देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ जाएगा? चुनाचे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लाया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी को साथ लेकर पत्तियां तोड़ने लगा। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला,
1: अरे ये क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में ये लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का? लाइए मैं काट देता हूं।
0: मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा। इसमें क्या बुराई है, अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जवाब कुछ हल्के बेहकीकत बनावटी मालूम हुए। सफेद पोशी के आत्मगौरव ने जबान बंद कर दी। काछी ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा,
1: ये पत्तियां कहां रख जाऊं?
0: मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठाकर ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पत्तियां बगल में उठा ली और बोला,
1: भला आप क्या पत्तियां रखने जाएंगे, चलिए मैं रख देता हूं।
0: मैंने बरामदे में पत्तियां रखवा ली, उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगुनी पत्तियां पड़ी हुई थी। काछी ने उनका एक गट्ठा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ ये देहाती कितने चालाक होते हैं, कोई बात मतलब से

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: काची जयंत पात्रिकर, काची की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कथा सुधा में सुनिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार।
3: तो मंदाकिनी जी, अभी हमारे सभी साथियों ने सुनी ये कहानी, उसी पर एक संदेश भी लिखकर भेजा है कि मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध व्यंग कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो में लेखक दूध की मिलावट से परेशान होकर घर में बकरी पालने की सलाह पर प्रतिक्रिया देते हैं। ये कहानी घरेलू सुख सुविधा, पशुपालन की जिम्मेदारी और पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों पर कटाक्ष करती है। कहानी का सार, दूध की समस्या से तंग आकर लेखक एक दोस्त के साथ मिलकर गाय खरीदते हैं, लेकिन गोबर और साफ सफाई की समस्याओं के कारण दोस्त के घर गाय रहती है और फिर दूध में मिलावट शुरू हो जाती है। बकरी का विचार, अंत में जब गाय का विकल्प काम नहीं करता तो लेखक बकरी खरीदने का फैसला करते हैं। ये सोच करके ये आसान होगा, परिणाम बकरी से सभी भी परेशानी कम नहीं होती क्योंकि वो खेत में घुसकर नुकसान करती है, जिससे पड़ोसियों से विवाद होता है। अच्छी सी समीक्षा लेकर भेजिए।

0: बिल्कुल सही कहा। और देखिए वही जो थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे
1: जी
0: कि लोग अपने पालतू पशुओं को खुला छोड़ देते
1: जी
0: हैं और वो खुला जो पशु हैं जाकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुकसान कर देते
1: नुकसान
0: हैं, तो
1: करते हैं
0: आपस में लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना बनी रहती है।
1: जी
0: इसलिए अपने पशुओं को हमें बांध कर रखना चाहिए। और
1: जी
0: अभी वक्त है मंजरी एक अंतराल का।

0: इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है।
1: और हमारे साथियों ने भी बहुत सारे संदेश दिवस के ऊपर लिखकर भेजे हैं। एक साथी लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण है, यहाँ से लिखा है इन्होंने कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस के प्रमुख कारण है कि पोखरण 2 परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न, ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति का सम्मान करता है। स्वदेशी तकनीकी, इस दिन भारत में पहले स्वदेशी विमान हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ था। पूर्व पीएम वाजपेयी का योगदान, इन्होंने लिखा है, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की तकनीकी क्रांति को रेखांकित करने के लिए इस दिन को घोषित किया था।
0: बिल्कुल सही लिखा और आपने बहुत ही डिटेल में अपनी बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, जो 11 मई 1998 को पोखरण में हुए सफल परमाणु परीक्षण ऑपरेशन शक्ति की हमें याद दिलाता है। ये दिन देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं कि पोखरण यानी परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को भारत ने राजस्थान के पोखरण में 3 सफल परमाणु बम परीक्षण किए, जिसके बाद देश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया। और इसके साथ ही ये दिन देश की आत्मनिर्भरता और विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रगति का भी दिन है। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि हंसा 3 का परीक्षण और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी इसी दिन हुआ था
1: जी। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2026 की थीम है यंत्र नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने का युगांतर है। ये दिन जो 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षणों की याद दिलाता है, यानी कि जो हमारी तकनीकी है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक, इंजीनियर जो भी योगदान देते हैं, तो उनको एक कहना चाहिए एक सम्मान देने के दिवस मनाया जाता है। और वैज्ञानिक नवाचार को बढ़ावा देने और भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को याद करने के लिए ये दिन समर्पित है। तो इस दिन की सभी को हार्दिक बधाई देते हैं।
0: बिल्कुल। और अब सुन लेते हैं गीत

0: तो देखिए, हम बात करने वाले हैं रिश्तों से ज़्यादा मित्र करीब, क्या वजह है। तो ये केवल आज के समय की बात नहीं मंदाकिनी जी, बल्कि इंसानी भावनाओं और व्यवहार से जुड़ा एक गहरा विषय है। परिवार और रिश्तेदार हमारे जीवन की नींव होते हैं, लेकिन कई बार मित्र हमारे मन के अधिक निकट आ जाते हैं। इसके पीछे कई भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक कारण तो होते ही हैं, क्योंकि हमारी जो सबसे पहली वजह होती है कि मन की आज़ादी। हम अपने दोस्तों के साथ खुलकर मन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो हमारी बात को इधर उधर नहीं पहुंचाएगा। और ये भी, मित्र बनाने से पहले हमें ये भी देखना पड़ता है कि हमारा मित्र वो सही है कि नहीं। हमने जो अपने दिल की बात कही है वो किसी और को तो नहीं बता रहा है। तो मित्र वही अच्छा होता है जो दूसरे मित्र की बात को अपने तक रखे। और रिश्तों में क्या होता है, रिश्तों में जैसे हमने कोई बात बताई तो वो बस एक दूसरे को बताने लग जाते हैं, तो बात एक घर से ना होकर कई घरों में पहुंच जाती, परिवार में। तो इसीलिए यही वजह होती है कि हम मित्र के बहुत करीब होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है, जो साइकोलॉजिकली हम जब जुड़ते हैं ना, तो हम दोस्ती में ज्यादा फ्रीडम महसूस करते
0: जी
1: हैं, है ना। रिश्तों में एक बंधन होता है, जब हम किसी रिश्ते में बंधे होते हैं या रिश्तेदारी में निभा रहे होते हैं, वहां एक बंधन है, सीमाएं हैं, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दोस्ती में कोई सीमा नहीं होती है। आप खुले खुले तरीके से अपनी बात कह सुन सकते हैं, अपने मन को हल्का कर लेते हैं, और दोस्ती होती भी ऐसी है। आपने
0: बिल्कुल
1: देखा है, अपने कॉलेज के स्टूडेंट, हमारे स्कूल की जो
0: जी,
1: सहेलियां थी, हम उनसे क्या क्या बातें कर जाते थे, उनकी क्या क्या बातें सुन लेते थे।
0: उनकी
1: और
0: डांट भी हम सुन लेते थे, उनकी राय भी हम सुन लेते थे,
1: हाँ,
0: और रूठना मनाना तो चलता था।
1: चलता ही
0: लेकिन
1: था।
0: रिश्तों में क्या होता है, जब कहते हैं ना मन में खटास आ जाती है, दोस्ती में
1: हाँ,
0: भी खटास
1: तो
0: आती है,
1: आती है,
0: लेकिन
1: लेकिन वो दोस्ती नहीं होती। मैं समझती
0: हाँ
1: हूँ, अगर दोस्ती में खटास आती है तो
0: जी
1: कहीं स्वार्थ आ जाता है, तब
0: बिल्कुल,
1: दोस्ती में खटास आती है। वरना तो दोस्त हमेशा से दोस्त ही रहते हैं।
0: दोस्ती रहती है,
1: जहां दोस्ती टूटी नहीं, दोस्त दूर हो गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ
0: स्वार्थ
1: या
0: उनके
1: मन में
0: अंदर।
1: कुछ था।
0: बिल्कुल सही
1: वरना
0: बात
1: आज भी हमारी कुछ सहेलियां या हमारी मित्र आज भी बरसों से हैं, उनसे अगर हम इतने दूर रहकर भी हम बात करते हैं, कभी तुम्हें अपने बचपन के लोग मिलते होंगे तो तुम
0: जी
1: बात करती हो ना,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि उनसे कोई स्वार्थ नहीं है।
0: बिल्कुल। सौ की सीधी एक बात कि आपके अंदर अगर स्वार्थ है, ईर्ष्या, जलन है, तो
1: तो आप नहीं
0: अहंकार है,
1: निभा
0: तो आप
1: पाओगे,
0: दोस्ती नहीं निभा
1: नहीं निभा
0: पाएंगे, है ना।
1: पाओगे
0: तो हमारे
1: दोस्ती शब्द।

0: बहुत बड़ा है
1: बहुत
0: मंजरी,
1: बड़ा है
0: मुझे लगता है कि हम आपसी बातचीत को भी नहीं लंबा कर सकते,
1: जी
0: जारी नहीं रख सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार या कुछ बातें हमारे बीच में आ गई हैं।
1: आ गई जी,
0: लेकिन अगर वो नहीं आई हैं तो वो दोस्ती का अगर हमने तमगा नहीं भी दिया तब भी वो बातचीत लंबी चल सकती है।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि सभी रिश्ते हमें जन्म के साथ मिलते हैं, दोस्त हम खुद चुनते हैं। सही बात है, स्कूल कॉलेज नौकरी आस पड़ोस में चारों तरफ हम मित्रों के साथ और वे हमारे साथ हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास इस तकनीकी के युग में भी सच्चे मित्र हैं। बहुत तो मिलना नहीं होता बाहर रहने वाले मित्रों से, पर आज भी खतों मोबाइल के द्वारा जुड़े हैं। मित्रों से जुड़े रहने में परिवार का सहयोग भी सहयोग है। और बहुत अच्छी
0: बिल्कुल।
1: बात है, जो आजकल हमें सोशल मीडिया की सुविधाएं मिली हुई है, व्हाट्सएप है या मोबाइल है, तो इनके द्वारा हम अपने मित्रों को खोज भी लेते हैं, पुराने पुराने कहाँ गए कहाँ
0: हाँ, सही बात है,
1: गए,
0: कुछ
1: है ना।
0: मित्रों ने हमें खोज लिया, अरे आप
1: हाँ
0: कहाँ रहती हैं, आप वही मंदाकिनी है
1: हमने
0: जो
1: खुद
0: कभी साथ
1: ही
0: पढ़ा करती थी,
1: जी।
0: तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात है ये कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी,
1: जी
0: है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही
0: वो
1: बात
0: एक
1: है,
0: बहुत बड़ा उदाहरण है दोस्ती का, जहाँ
1: बिल्कुल
0: उसके आगे और पीछे कुछ भी नहीं है।
1: कुछ भी नहीं, अगर
0: तो
1: वो उनकी दोस्ती को समझ लिया तो समझ
0: हाँ,
1: लीजिए आपने सब कुछ समझ
0: समझ लिया,
1: लिया।
0: तो हम अगर उसकी 10% दोस्ती भी निभा पाए तो समझ
1: बहुत
0: लीजिए कि हम सच्चे दोस्त हैं, है
1: जी
0: ना।
1: जी
0: एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते खून से तैयार होते हैं, दोस्त प्यार से मिलते हैं, रिश्तों में नसीब का साथ है, दोस्तों में सुखद सहवास है, रिश्ते बंधनकारक है, मित्र स्वयं स्फूर्त हैं। आज के जमाने में रिश्तेदार पहले तन और फिर धीरे धीरे मन से दूर हो जाते हैं, और समान विचारों वाले दोस्त नजदीक आते रहते हैं। कभी कभी रिश्ते दिल को जला देते हैं तो दोस्त सच्चे स्नेह के फूल खिला देते हैं, इसलिए रिश्तों से भी मित्र ज्यादा करीब होते हैं।
1: और हमारे एक साथी लिखते हैं, अक्सर मित्र दोस्तों का रिश्ता खून या भावनात्मक रिश्तों से ज्यादा करीबी और भावनात्मक रूप से सुरक्षित तो होते हैं, क्योंकि दोस्ती में अपेक्षाएं कम और समझ ज्यादा होती। कई बार दोस्त सुख दुख में परिवार से बेहतर साथ निभाते हैं और बिना किसी निर्णय के हमें अपनाते हैं। दोस्ती की मिसाल लोग महाभारत के पात्र कर्ण और दुर्योधन का भी देते हैं। बहुत सही बात लिखी इन्होंने।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के दौर में रिश्तों रक्त संबंध से ज्यादा दोस्तों का करीब होना एक आम हकीकत बन गया है। इसके पीछे भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक कई कारण हैं। यहाँ कुछ मुख्य वजह हैं, क्योंकि दोस्त अक्सर परिवार से ज्यादा करीब होते हैं। बिना शर्त स्वीकृति के दोस्त हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे हम हैं, और रिश्तेदारी में अक्सर अपेक्षाएं, सामाजिक दबाव होता है, जबकि दोस्ती में हम अनौपचारिक रहते हैं, स्वैच्छिक संबंध होते हैं, परिवार हमें मिलता है लेकिन दोस्त हम खुद बनाते हैं। ये चुनाव हमारी रुचियों, विचारों और मूल्यों की समानता पर आधारित होता है, जिससे जुड़ाव गहरा होता है और भावनात्मक सुरक्षा भी रहती है।
1: और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि रिश्तों से ज्यादा करीबी की बात हो तो सबसे पहले मित्र ही आएगा, क्योंकि कई बार दोस्ती खून के रिश्तों से ज्यादा करीब और गहरी होती है, जो जीवन के हर सुख दुख की घड़ी में परिवार की तरह खड़े साथ खड़े होते हैं। दोस्त वो भाई बहन होते हैं जिसे हम खुद को चुनने का मौका मिलता है, जो रिश्तेदार से ज्यादा असरदार होता है। इसमें शुक्रिया या सॉरी की औपचारिकता नहीं होती, जबकि बेहद अनौपचारिक और सुकून देने वाली होती है। ये भी कहा जाता है कि रिश्ते बहुत मिलते हैं पर सच्चे दोस्त बहुत कम मिलते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कम मिलते हैं और बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जिन्हें सच्चे दोस्त मिलते हैं, है ना। और कहें तो एक गाना सुनवाएं पहले।

0: तो
1: हाँ तो
0: देखिए,
1: मंजरी बताइए, दोस्ती
0: हमारे
1: में और क्या क्या होता है?
0: दोस्ती में बहुत सारी बातें होती हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, और कभी कभी एक साथ घूमने भी जाते हैं तो दोस्तों के साथ बड़ा मजा आता है, क्योंकि आपस में खर्चे भी शेयर कर लेते हैं, है ना।
1: मतलब दोस्ती में भी हम खर्चा देखते
0: भाई
1: हैं? मुझे
0: देखते हैं,
1: तो लगता
0: लेकिन
1: है
0: चलो
1: दोस्ती में हम खर्चा देखते ही नहीं
0: नहीं,
1: है।
0: आजकल दोस्तों में क्या होता है कि चल थोड़ा तू लगा थोड़ा मैं लगा, ऐसा करते हैं और खूब इंजॉय कर लेते
1: अरे मैं तुम्हारे
0: हैं।
1: साथ जाऊंगी तो मैं तो बिल्कुल शेयर नहीं करने वाली हूँ, तुम्हें सारा खर्चा करना पड़ेगा।
0: देखती हूँ। चलिए ठीक है, कर लेंगे।
1: हाँ
0: और हमारे साथी लिखते हैं, रिश्तों से ज्यादा मित्र करीब, क्या वजह। मुझे लगता है कि दोस्ती और रिश्तेदारी दोनों ही, दोनों की अपनी अपनी जगह है और दोनों को बनाए रखना जरूरी है। दोस्ती में विश्वास और समझ होती है, जबकि रिश्तेदारी में प्यार और बंधन होता है।
1: ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं, रिश्तेदारी में भी कई लोग हमें बहुत अच्छे मिलते हैं
0: जी
1: जिनसे बहुत लंबे समय तक हमारा नाता जुड़ा होता है। एक हमारे दोस्त लिख रहे हैं कि रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं, वे हमें आधार देते हैं, लेकिन मित्रता उस ठंडी छांव की तरह है जो सफर की थकान मिटा देती है। मित्र करीब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके साथ हम होते हैं। रिश्तों में हम बंधे होते हैं पर मित्रता में हम मुक्त होते हैं, और मनुष्य का स्वभाव है कि वो वहीं सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करता है जहाँ वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। शायद इसलिए कहा गया है कि एक सच्चा मित्र ईश्वर का वो तरीका है जिसमें वो बताता है कि वो हमारी कितनी परवाह करता है।
0: बहुत सुंदर सी बात लिखी है। और ऐसे हमारे एक साथी और लिखते हैं कि आज का विषय बहुत ही सुंदर है, मुझे लगता है कि मित्र हमारे जीवन के वो चुने हुए रिश्ते हैं जो जहां दिखावे की जरूरत नहीं होती। रिश्तों में हम अक्सर अपनी जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं, लेकिन मित्रों के साथ हम अपनी रूह से जुड़े होते हैं। एक सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को भी शब्दों से ज्यादा बेहतर समझ ले, शायद इसीलिए वो रिश्तों से भी ज्यादा करीब महसूस होते हैं। बहुत सुंदर
1: बिल्कुल
0: बात
1: सही।
0: है।
1: और एक आखिरी हम और ले लेते हैं, उसके बाद एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए। लिखते हैं कि पारिवारिक रिश्तों में अक्सर एक मर्यादा और अपेक्षाओं का बोझ होता है, वहां गलतियों पर टोकने या उपदेश देने का डर रहता है, लेकिन एक सच्चे मित्र के सामने हम अपनी कमियों और गलतियों को बिना किसी डर के रख सकते हैं। मित्रता में जज किए जाने का डर कम और स्वीकार किए जाने का एहसास ज्यादा होता
0: जी
1: है ना?
0: बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हम लोग
1: तो
0: सुनते हैं गीत।
1: हमारे दोस्त भी चाहेंगे कि हम उन्हें गीत सुनवा लें।

0: तो
1: नहीं
0: मंजरी
1: नहीं
0: भाई, ये तो बातें हो गई हैं दोस्ती की बातें की। दोस्त तो सबसे प्यारा होता ही है,
1: जी
0: और बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको ताउम्र के लिए दोस्त मिलता है।
1: मिलते हैं बिल्कुल,
0: तो दोस्त के साथ साथ अगर जब हम कुछ मिल बैठकर खाते हैं तो कितना
1: बनाते हैं
0: मजा
1: तो
0: आता
1: बहुत
0: है
1: अच्छा
0: ना।
1: लगता है जी बिल्कुल। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के जो व्यंजन है हमारे, दाल पीठा और सत्तू का शरबत। तो हमारे साथियों ने लिखकर भेजा है, हम उन्हीं के कमेंट्स को लेते हैं। एक लिखते हैं कि दाल पीठा जिसे फरा यूपी में से पनगोजा बोलते हैं, गेहूं के आटे में भी बनती है लेकिन इसका असली स्वाद चावल के आटे में मिलता है, जिसमें चना उड़द की दाल को भिगो कर लहसुन मिर्च के साथ पीस कर नमक मिलाकर गर्म पानी से गूथा हुआ चावल के आटे में भरा जाता है, फिर इसे उबलते पानी में पकाते हैं, इसे धनिया टमाटर मूली की चटनी के साथ खाते हैं, या फिर इसके टुकड़े करके कढ़ाई में तेल या घी में हरी मिर्च राई का तड़का देकर इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, खाते हैं। अपने स्वाद के अनुसार लोग इसमें भुने आलू का भरावन, चटपटी मसालेदार भुनी अलसी, तिल का स्टफिंग भी करके पीठा बनाते हैं, जो भरकर स्टफ करके बना हुआ पीठा और जो दाल में पका वो दाल पीठी कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग फरा तो बनाते ही हैं चने की दाल से, तो इसी तरह का है, बहुत अच्छा व्यंजन है। और हमारे साथी लिखते हैं कि आप कुछ पढ़ने वाली थी ना,
0: नहीं आप पढ़िए ना, क्या कह
1: लिखते
0: रही
1: हैं कि
0: हैं।
1: सत्तू और सतुई दोनों अलग अलग होते हैं। सत्तू दो तीन तरह के अनाज उसमें मिले रहते हैं, जिसमें चना मसूर मक्का जौ होता है, जिसे लोग खाते हैं। सतुई यह सिर्फ भुने चने का बनता है जो शरबत में प्रयोग होता है, यानी सत्तू और सतुई। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है जो हमें पता चल गया कि हम किस
0: दोनों में
1: चीज
0: क्या फर्क

0: होता
1: क्या फर्क
0: है।
1: होता है?
0: हाँ, जो मैं पढ़ने वाली थी वो ये कि एक मेरे साथी ने लिखा है, बिल्कुल मेरे मन की बात लिख दी है,
1: जी
0: कि बिहार की व्यंजन दाल पीठा सत्तू का शरबत, अब तो भूख लग गई।
1: क्या बात है। यानी आप इतने से ही निकल ली पढ़
0: तो
1: जी
0: अगली बार आप, मेरी अच्छी दोस्त है ना,
1: जी
0: तो अगली बार आप ये सत्तू और सत्तू ही बनाकर लेकर आने वाली हैं।
1: पक्का?
0: ठीक है, तो अब सुन लेते हैं गीत।

0: जाना।
1: तो मंजरी, कार्यक्रम सखी सहेली का वक्त अब पूरा हो रहा है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और
2: मंजरी वर्मा लेते हैं विदा। तो सभी को मेरा
1: प्यार भरा नमस्कार।
2: सखी सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमने आमंत्रित किया है मुंबई के सुप्रसिद्ध हेमेटोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर आशय प्रमोद करपे को। डॉक्टर साहब, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार राजेंद्र जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए शुक्रिया।
0: हम अपने सुनने वालों को शुरुआत में बताना जरूरी समझते हैं कि आज की हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा वो है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। तो शुरुआत हम ऐसे ही करते हैं, कई बार हम अस्पतालों में देखते हैं किसी दंपत्ति के साथ कोई बच्चा होता है और बहुत बीमार सा और चेहरे पे बिल्कुल नूर नहीं, जैसे खून की कमी हो, इस तरह के कोई बच्चे दिखाई देते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो गया है। तो बोले ये थैलेसीमिया का मरीज है। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वालों को बहुत ही संक्षेप में और सरल जानकारी के रूप में आप बताइए कि थैलेसीमिया बीमारी का इतिहास क्या है और इसके बारे में गहराई से लोग क्या समझते हैं और दरअसल ये क्या है।
1: थैलेसीमिया एक रक्त की बीमारी है जो आनुवंशिक रीतिया संक्रमित होती है। आगे चल के तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी चलते ही रहती है। अगर हम देखेंगे तो इतिहास जो होता है, देखिए कि बहुत सारी बीमारियां पहले से हैं, पर हमें वो कभी ज्ञात हुई यह ज्यादा जरूरी होता है। अब ये वर्ड थैलेसीमिया कहाँ से आया? द वर्ड थैलेसीमिया में दो अलग अलग वर्ड है। थैलेस ये ग्रीक वर्ड है और एमिया एक इंग्लिश वर्ड है। तो थैलेस का मतलब होता है समंदर के आजू बाजू।
0: जी
1: तो ये बीमारी जब देखी गई, ये भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरेनियन सी कहते हैं उसी के आजू बाजू में पाई गई। और एमिया मतलब खून की बीमारियां। तो मेडिटेरेनियन कंट्रीज जो भूमध्य सागर के आजू बाजू में कंट्रीज थी इसमें ये पाई गई। लेकिन इसके सिवा भी ये बीमारियां पाई गई थी। 1938 में डॉक्टर मुखर्जी करके एक भारतीय शास्त्रज्ञ थे, उन्होंने इस बीमारी का विवरण किया था कलकत्ता में छठे दशक में 1954 में, जब ये बीमारी पूरी तरह से जानी गई। ये बीमारी दो तरीके की होती है। एक तो होती है अल्फा थैलेसीमिया जिसमें अपने हीमोग्लोबिन का अल्फा चरण खराब होता है, या तो बीटा थैलेसीमिया जिसमें तो बीटा चरण खराब होता है। तो धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में जैसे अपना ज्ञान बढ़ते गया और उसी हिसाब से फिर उसमें संशोधन भी चलते चला गया है। तो इस बीमारी का इतिहास ऐसा है कि जो नाम जब भी पड़ा था तो वो भूमध्य समुद्र की वजह से पड़ा था, लेकिन ये बीमारी पूरे दुनिया में पाई जाती है। अगर भारत के इतिहास के बारे में हम लोग बात करें तो भारत में कुछ कुछ जगह पर यह बीमारी बहुत कॉमनली पाई जाती है। सिंध प्रांत है और जो पंजाब प्रांत है वहां की जो जनता भारत में स्थलांतरित माइग्रेट हुई थी पार्टीशन के बाद में, तो सिंधीज और पंजाबीज में यह बीमारी कॉमनली पाई जाती है। नॉर्थ रीजन में गुजरात में यही बीमारी पाई जाती है। महाराष्ट्र में, नॉर्थ कर्नाटका में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी कुछ कुछ जगह पे ये बीमारी पाई जाती है। इंडिया के सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट में ये बीमारी इतनी ज्ञात नहीं थी। लेकिन
0: अच्छा, लेकिन मध्य भारत जो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है?
1: देखिए कैसे होता है कि ये जो बीमारी है अपने हीमोग्लोबिन यानी शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं हैं उससे निगड़ित होती है। तो मध्य भारत में इसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया है। मध्य भारत में सिकल सेल नाम की एक बीमारी होती है। ये बीमारी और थैलेसीमिया जब एक साथ आते हैं तो एक सिकल थैलेसीमिया नाम की नई बीमारी जन्म लेती है। आज के दौर में जहां पे माइग्रेशन इज वेरी कॉमन, हर जगह पे सब लोग अपने काम की वजह से या किसी और वजह से माइग्रेशन करते हैं और अलग अलग चले जाते हैं, इसलिए अभी उतना डिस्टिंक्शन नहीं रहा है इस बीमारी के बारे में।
0: डॉक्टर साहब, पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी को अगर हम तौलें और एक अनुपात लगाएं तो क्या पाते हैं आप, कितना प्रभावित क्षेत्र पाया जाता है?
1: देखिए पूरी भारत दुनिया का हम लोग अगर ध्यान रखते हैं तो पूरी दुनिया में करीबन हर साल 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो है जो थैलेसीमिया मेजर बच्चे होते हैं, और इसमें भारत का है ऑलमोस्ट 10,000 बच्चे हर साल।

0: 10,000 बच्चे जो होते हैं हर साल थैलेसीमिया मेजर यानी पूरा थैलेसीमिया से पीड़ित होते हैं। लेकिन हम लोग जो कहते हैं ना, एक टिप ऑफ आइसबर्ग फिनोमिना होता है कि जो ऊपर दिखता है उससे तो काफी गुना तो नीचे होता है पानी के। क्या होता है कि जो लोग होते हैं जिनमें थैलेसीमिया आधा ही होता है, जिसे हम लोग थैलेसीमिया माइनर कहते हैं, इनका जो होते हैं, इनको थैलेसीमिया कैरियर भी कहते हैं, इनकी अगर संख्या देखी जाए तो पूरे भारतवर्ष में हर 25 के पीछे एक थैलेसीमिया कैरियर होगा।
1: अच्छा
0: तो इस तरह से ये बीमारी बढ़ती जाती है। अगर हर साल 10,000 से 12,000 बच्चे पैदा होते हैं थैलेसीमिया मेजर से, और हर साल ऐसे ऐड हो जाते हैं, नॉर्मल तरीका जो थैलेसीमिया का पूरी तरह से उपचार नहीं होने के कारण ये बच्चे उम्र के 15 से 20 साल में गुजर जाते हैं, तो भी हर वर्ष करीबन 1 से 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन लेते हैं इंडिया में।
1: देखा जाए तो ऊपरी तौर पर एक अनुपात बताया आपने। हम आगे बढ़ेंगे और थैलेसीमिया बीमारी का जो स्वरूप क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम चाहते हैं कि कोई संगीत की बात हो जाए, तो आप क्या सुनवाना पसंद करेंगे?
0: देखिए, हिंदी संगीत तो जैसे श्रवणीय रहा है, और आप जानते हैं पुराने दशक में जितने पुराने अच्छे गाने रहे, देवानंद जी उनमें से मेरे एक फेवरेट रहे हैं, तो उनका ही प्रेम पुजारी पिक्चर का फूलों के रंग से ये गाना मैं सुनना चाहूँगा।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: बहुत ही अच्छा गाना सुनवाया आपने। वैसे ये बताइए, थैलेसीमिया जो ये बीमारी है, इसका मुख्य स्वरूप क्या होता है और इसके लक्षण क्या-क्या हैं?
1: देखिए, थैलेसीमिया जो बीमारी होती है, इसके जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया कि हर 25 इंसानों में एक इंसान कैरियर होता है। यह आज भारत की स्थिति है। जो कैरियर होता है उसे नॉर्मल तौर पे तो कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं, पर अगर सही ढंग से देखा जाए तो इनका जो हीमोग्लोबिन होता है 7 से 13 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। इनमें थोड़ा सा सफ़ेदपन आ जाना मुंह के ऊपर, थोड़ी सी ग्रोथ में कमी होना, या तो कभी हल्का सा पीलिया दिखना या हल्की सी कमजोरी मालूम पड़ना, ऐसे ही लक्षण पाए।

0: पाए जाते हैं। अन्यथा इनमें कोई लक्षण की इतना अभाव ही रहता है। दूसरा जो होता है थैलेसीमिया इंटरमीडिया, अभी ये जो होता है इसमें पूरी तरह से थैलेसीमिया तो नहीं आ जाता है। ये जो बच्चे होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होती है। मुख्यतः जो मुंह के बोन्स होते हैं, हड्डियां होती है, वो काफी बढ़ जाती है, जिससे
1: अच्छा।
0: इनका जो शरीर में, अब सर देखेंगे तो बाकी धड़ से वो अलग लगता है कि काफी बड़ा दिखता है। दांत अलग अलग हो सकते हैं, मतलब दांतों में कुछ कमियां आ सकती है इन बच्चों में, और इनमें पीलिया भी दिखाई दे सकता है। इन बच्चों को हमेशा तो नहीं पर बीच बीच में रक्त संक्रमण यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है।
1: अच्छा
0: सबसे डरावना इसमें जो है वो है तो थैलेसीमिया मेजर, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसमें पूर्णतः थैलेसीमिया बीमारी आती है। यह बच्चे उनके उम्र के 3 से 6 महीने से बाहर के रक्त के संक्रमण के ऊपर निर्भर करते हैं। अगर इनको ये रक्त नहीं दिया गया तो ये जानलेवा हो सकता है कि इनके इसमें रक्त बनने की पूरी प्रणाली खराब हो गई होती है,
1: जो मेजर होता है।
0: जो थैलेसीमिया मेजर कहते हैं हम इसे। तो ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे उम्र के 3 से 6 महीने में ही सफेद दिखने लगते हैं। माएँ देखती है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, कंटिन्यूअसली रोते रहता है, तो उसी की वजह से दिखाए जाते हैं। जब बच्चे का रक्त परीक्षण करते हैं तो हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है, और जब आगे जाके हम लोग फर्दर टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है। ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं, अगर आप उनको ढंग से रक्त संक्रमण ना दे तो अपने शरीर में जो रक्त बनाने वाली हड्डियां होती है, बचपन में मेनली होती है अपनी सर की हड्डियां, ये बढ़ने लगती है साइज में, और वो अपने बाकी धड़ से अलग दिखने लगती है। इनका सर बड़ा होने लगता है, आंखें छोटी होती है, नाक अंदर चला जाता है, दांत खराब होने लगते हैं। तो इस तरह से अपने सर की हड्डियों पे इनका एक असर होने लगता है।
1: अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे आप बता रहे हैं कि मेजर थैलेसीमिया, और बात आपने शुरू में की थी कि माइनर भी होता है, तो क्या दो ही प्रकार के थैलेसीमिया पाए जाते हैं?
0: देखिए, अल्फा थैलेसीमिया जो होता है ये भारत में इतना पाया नहीं जाता है, ये जो दिखता है मेनली अरब रीजन में देखा जाता है। अल्फा थैलेसीमिया इंडिया के पॉपुलेशन में तभी प्रॉब्लमेटिक होता है जब सिकल सेल या किसी अन्य बीमारी के साथ में वो जुड़ जाता है। अल्फा थैलेसीमिया जो होता है भारत में इतना मुख्य कारण नहीं है जितना है कि बीटा थैलेसीमिया।
1: बीटा।
0: हम लोग जो आज बात कर रहे हैं मेनली वो बीटा थैलेसीमिया के बारे में है, तो वही मैं बताना चाहता हूँ कि बीटा थैलेसीमिया माइनर जो होता है, या हम लोग जिसे ट्रेट कहते हैं या कैरियर स्टेज कहते हैं, इसमें उस व्यक्ति को विशेष तकलीफ तो नहीं होती है, पर किसी ठराविक अवस्था में, जैसे कि शरीर में लोहों की कमी हो गई या किसी और चीज की कमी हो गई, तो उसका हीमोग्लोबिन धड़ाधड़ नीचे आने लगने लगता है। दूसरी जो व्यवस्था होती है, जो हमने बताया कि थैलेसीमिया इंटरमीडिया होता है, जिसमें थैलेसीमिया के साथ और कोई बीमारी जुड़ने के वजह से या किसी वजह से व्यक्ति को बीच बीच में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा तो नहीं पड़ती है। और तीसरा जो बताया मैंने, जो थैलेसीमिया मेजर जो होता है, उसमें हर महीने या कभी कभी 3 से 4 हफ्ते में ब्लड संक्रमण या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है।
1: ये भी होता है कि साथ में एनीमिक होने के साथ में वो थका हुआ सा दिखता है बच्चा।
0: हाँ, मतलब वही होता है कि जो बच्चा थका हुआ सा है, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, उसकी जो बढ़त होती है वो नॉर्मल बच्चों से कंपेयर करें तो बहुत कम होती है, तो ये अलग अलग लक्षण दिखते हैं। बच्चों में पीलिया दिखता है। जो बच्चे थैलेसीमिया मेजर और थैलेसीमिया इंटरमीडिया से प्रभावित होते हैं, उनमें लीवर और प्लिया यानी स्प्लीन की साइज भी बढ़ जाती है, कभी कभी उसकी वजह से पेट दर्द या पेट में गांठ लगना, ऐसे भी लक्षण पाए जाते हैं।
1: जैसे आपने ये भी बताया, तो यहाँ जिक्र करना होगा दोस्तों आपके लिए कि डॉक्टर साहब ने बताया था कि सर कुछ ज्यादा बड़ा दिखाई देता है क्योंकि अनुपात में शरीर सिकड़ा हुआ होता है और पेट निकला हुआ सा दिखाई देता है।
0: आप देखेंगे ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको ढंग से रक्त संक्रमण नहीं मिला होता है और ढंग से उनका उपचार नहीं चल रहा होता है, या तो इस बीमारी को ना जानने के कारण, या तो किसी अलग विषय जैसे कि फैमिली गरीब हो और वो ढंग से इसका इलाज नहीं कर पा रही हो।
1: अच्छा, इसके कारण पे यदि हम जाएं मूल रूप से इसका रीजन जो है कि भाई क्यों होता है, तो अक्सर पारंपरिक रूप से लोग ये कह देते हैं भाई इनके माँ बाप को भी बीमारी थी, तो ये सत्य है कि अनुवांशिकता है, जैसे कि आपने कहा हेरिडेटरी कैरेक्टर होता है उसमें, तो माँ को होता है या पिता को होता है या दोनों को होता है।
0: इसमें अभी देखिए ये जरूरी है कि जैसे हम लोग जेनेटिक्स या आनुवंशिकता जो कहते हैं, ये माँ और पिताजी दोनों से ही आती है। ये जो बीमारी है मूल रूप से आधी बीमारी पिताजी से और आधी बीमारी माँ से आती है। कैसे होता है कि बहुत बार मुझे पेरेंट्स कहते हैं, मतलब माँ पिता कहते हैं, हमारे तो पूरे खानदान में ये बीमारी किसी को नहीं थी और हमारे बच्चे को ऐसे आ गई। अभी ऐसे है कि जो थैलेसीमिया माइनर यानी कैरियर स्टेट होता है वो बहुत बार पता ही नहीं चलता है, तो उनमें तो ये आधी बीमारी होती है। अगर आप देखेंगे तो हम

0: हम लोग बनाएंगे कि माँ के जीन्स के दो सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, पापा के दो जीन्स के सेट है जिसमें एक बीमारी ग्रस्त है, तो 50-50% बीमारी पापा और मम्मी दोनों में है। अब बच्चे जो पैदा होंगे उसमें, तो उसमें 25% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया मेजर से ग्रस्त होते हैं, 50% चांस होता है कि वो थैलेसीमिया माइनर अपने माँ पिताजी से होंगे, पर अगर नॉर्मल हिस्सा दोनों साइड से आ गया तो वो नॉर्मल बच्चा भी हो सकता है।
1: अच्छा,
0: तो माँ पिताजी अगर दोनों में ये बीमारी आधी आधी है तो 25% चांस है कि बच्चे को आगे चल के थैलेसीमिया मेजर बीमारी होती है। ये बीमारी इसीलिए माँ से और पिता से दोनों साइड से ही आती है। बहुत कम बार, मतलब लाखों में एक हाथ कैसे ऐसे होगा जिसमें सिर्फ माँ को या पिताजी को ही बीमारी है, और जो माँ से या पिताजी से जो नॉर्मल जीन आ गया उसमें वो शांति रह गया, और जो दो क्षतिग्रस्त जीन है वही चल गया तो बीमारी आती है। पर मुख्य रूप से माँ और पिताजी दोनों से ही आधी आधी बीमारी आके एक पूरी बीमारी तैयार होती है बच्चे में।
1: डॉक्टर साहब, एक प्रश्न यहाँ पर उभरता है कि जैसे आपने बताया कि माता पिता दोनों को होती है और जीन्स में जेनेटिकली ये समावेश होता है गर्भ के दौरान। जैसे कई माँ बाप आते हैं मरीज को लेकर बच्चे के रूप में आपके सामने कि भाई हमारे बच्चे को ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हीमोग्लोबिन की क्या कंडीशन आप पाते हैं, कितना होना चाहिए, कैसे आपको पता चलता है कि वाकई थैलेसीमिया है?
0: क्या होता है कि जो शुरुआती जो हीमोग्लोबिन रहता है, इसे हम लोग कहते हैं हमारी भाषा में HbF, यानी जो माँ के पेट में रहते वक्त जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी मात्रा पैदा होते वक्त काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए तकलीफ नहीं होती है। 3 से 6 महीने में जो अपने युवा अवस्था का हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे तैयार होने की प्रक्रिया शुरू होने लगती है। ये प्रक्रिया जब शुरू होती है तभी हीमोग्लोबिन नीचे चले जाने लगता है, तो बच्चा सफ़ेद दिखने लगता है। जब भी हम लोग देखते हैं तो हर वक्त ये हीमोग्लोबिन जो होता है 10 से नीचे तक आ गया होता है। जब और कोई वजह नहीं दिखती है, जैसे कि ये उम्र में हीमोग्लोबिन होने के ज़्यादा कारण नहीं होते हैं अलग, अनलेस किसी को ब्लीडिंग या और किसी चीज़ की तकलीफ होती हो या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया हो। अगर हम लोग मैं अगर ऐसे 10 बच्चे ले लूँ तो 8 बच्चों में थैलेसीमिया यही कारण होगा हीमोग्लोबिन कम होने का, और मेनली ये 10 से नीचे ही पाए जाते हैं।
1: अच्छा भाई, देखिए बहुत ही गहन जानकारी आपने दी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऐसा घटक है जो कि पता चलता है कि कमजोरी कितनी है और किस ढंग से इसका उपचार होगा। हम आगे बढ़ेंगे और वही हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना सुनवा दीजिए ताकि चर्चा फिर से जारी रहे।
0: देखिए धर्मेंद्र जी जो है वो हीमैन के रूप में जाने जाते हैं, पर उनका कोई रोमांटिक भी हिस्सा मुझे पसंद है, वो है ब्लैकमेल पिक्चर का, और गाना है पल पल दिल के पास।

डॉक्टर साहब, वाकई आपने गीत बहुत अच्छा सुनवाया। और बीमारी की बात चल रही दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय है थैलेसीमिया, उपचार और इससे बचाव। डॉक्टर साहब, यहाँ प्रश्न ये होगा

0: दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, एक तरफ दुनिया जीतने निकला एक महान विजेता और दूसरी तरफ अपनी धरती की रक्षा करने के लिए डटा एक वीर राजा। जी हाँ, तो अब हम बात करेंगे इतिहास की एक बेहद रोमांचक लड़ाई, हाइडेस्पिस जंग की।
1: दोस्तों ये कहानी है 326 ईसा पूर्व की, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट अपनी विशाल सेना के साथ भारत की धरती पर पहुंचा। उसका सामना हुआ एक बहादुर भारतीय राजा पोरस से, जो झेलम नदी के किनारे डटकर खड़े थे।
0: झेलम नदी, जिसे उस समय हाइडेस्पिस कहा जाता था, दोनों सेनाओं के बीच एक बड़ी चुनौती थी कि बारिश का मौसम, उफनती नदी, लेकिन सिकंदर ने चालाकी से रात के अंधेरे में नदी पार की और अचानक हमला कर दिया।
1: और अब सोचिए, एक तरफ यूनानी सेना की रणनीति और दूसरी तरफ राजा पोरस के हाथी और उनकी बहादुरी। युद्ध बेहद भयंकर था, लेकिन पोरस ने अंत तक हार नहीं मानी और अपनी पूरी ताकत से लड़े।
0: लेकिन सबसे दिलचस्प पल तब आया जब युद्ध के बाद सिकंदर ने पोरस से पूछा, बताओ तुम्हारे पास साथ कैसा व्यवहार किया जाए, और पोरस का जवाब था, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इस जवाब ने सिकंदर को इतना प्रभावित किया कि उसने पोरस को उनका राज्य वापस दे दिया।
1: तो दोस्तों ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था सम्मान, बहादुरी और आत्मसम्मान की मिसाल। बैटल ऑफ हाइडेस्पिस आज भी हमें सिखाती है कि सच्ची जीत सिर्फ तलवार से नहीं, बल्कि हिम्मत और सम्मान से मिलती है।

0: दोस्तों अब बात करते हैं सरदारी लाल नंदा की। ये भारतीय नौसेना के एक एडमिरल थे। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1915 को मनोरा कराची ब्रिटिश भारत में हुआ था।
1: बिल्कुल, इनके माता पिता पंजाब प्रांत के गुजरावाला के पास के गांव से थे। उनका जन्म एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण कराची बंदरगाह के प्रवेश द्वार पर स्थित मनोरा द्वीप पर हुआ।
0: नंदा ने अपने करियर की शुरुआत दीपावली पर 6 महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से की। इसके बाद उन्हें कलकत्ता भेजा गया और उन्हें वहां एक नदी स्टीमर की कमान संभालने और सुंदरबन में गश्त करने का आदेश दिया गया।
1: बिल्कुल दोस्तों, इन्हें भारत की स्वतंत्रता के बाद कावेरी का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया और 1948 में उन्हें प्रमुख युद्धपोत HMIS दिल्ली C-74 का प्रथम लेफ्टिनेंट नियुक्त किया गया था।
0: और 1971 में इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना का नेतृत्व किया और पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों की नौसैनिक नाकाबंदी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिससे भारत को युद्ध में एक बड़ी जीत हासिल करने में मदद मिली।
1: और दोस्तों, युद्ध में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साथ ही साथ इन्हें दिए गए अन्य पुरस्कारों की भी बात करें तो एक परम विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से भी इन्हें नवाजा गया है।
0: नंदा को भारतीय नौसेना के इतिहास में सबसे उल्लेखनीय कमांडरों में से एक माना जाता है और 11 मई यानी आज के दिन 2009 में न्यू दिल्ली के में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
1: बिल्कुल, और आइए अब एक और हस्ती की बात करते हैं और इस हस्ती के लिए हम आपको लेकर चलेंगे जासूसी की उस दुनिया में जहां सच और झूठ के बीच की रेखा बहुत ही धुंधली हो जाती है।
0: और उस दुनिया का एक ऐसा नाम जिसने पूरी

0: दुनिया को चौंका दिया। किम फिल्बी एक ऐसा शख्स जो बाहर से ब्रिटिश अधिकारी था, लेकिन असल में कुछ और ही कहानी थी।
1: मतलब फिल्बी डबल लाइफ जी रहे थे?
0: बिल्कुल, किम फिल्बी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी M16 के एक बड़े अधिकारी थे, लेकिन असल में वो सोवियत यूनियन के लिए जासूसी कर रहे थे।
1: ये तो सच में एक फिल्मी कहानी जैसा लग रहा है। और सच में उन्होंने सालों तक ऐसी जानकारी सोवियत यूनियन को दी जिससे कई बड़े ऑपरेशंस फेल हो गए। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। पर एक बात मन में आती है नेहल, कि उनका ये जो राज था वो खुला कैसे?
0: प्रेरणा, जब धीरे धीरे शक बढ़ने लगा तो 1963 में वो अचानक गायब हो गए और बाद में पता चला कि वो सोवियत यूनियन भाग गए।
1: यानी उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक रहस्य बनाकर रखी, और यही वजह है कि उन्हें आज भी दुनिया के सबसे बड़े डबल एजेंट्स में गिना जाता है।
0: और आखिरकार किम फिल्बी 11 मई 1988 को इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनकी कहानी आज भी जासूसी की दुनिया में एक मिसाल बनी हुई है।
1: जी बिल्कुल। और अब हम एक ऐसी भारतीय शख्सियत की बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है दोस्तों, और उनके लिए हम ये कहेंगे कि उन्होंने सिर्फ नृत्य को जिया नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति को भी अपनी सांसों में बसा लिया था।
0: जी हाँ, जब भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की बात होगी, एक नाम हमेशा सम्मान से लिया जाएगा, मृणालिनी साराभाई, एक ऐसी कलाकार जिसकी कला में परंपरा भी थी और समाज के लिए संदेश भी।
1: दोस्तों 11 मई 1918 केरल में जन्मी मृणालिनी साराभाई का बचपन काफ़ी अलग माहौल में बीता। उनकी माता अम्मू स्वामीनाथन स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेवी थी, लेकिन समाज और देश के लिए कुछ करने की सोच उन्हें बचपन से ही मिली,
0: और शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी कला को सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस बनाकर नहीं छोड़ा बल्कि उसे समाज की आवाज़ बना दिया।
1: उन्होंने स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की, फिर शांति निकेतन पहुंची जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों ने उनकी सोच को और गहराई दी।
0: उसके बाद शुरू हुआ उनका असली सफ़र, भरतनाट्यम की ट्रेनिंग महान गुरु मीनाक्षी सुंदर राम पिलाई से और कथकली की शिक्षा गुरु कुंजू कुरुपू जैसे दिग्गजों से ली।
1: बिल्कुल दोस्तों, सोचिए उस समय जब महिलाओं के लिए कला के क्षेत्र में पहचान बनाना इतना आसान नहीं था, तब मृणालिनी जी ने पूरी दुनिया में भारतीय नृत्य की अलग पहचान बनाई।
0: उन्होंने यूरोप, अमेरिका और कई देशों में परफॉर्मेंस दी और दुनिया को बताया कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य सिर्फ कला नहीं, एक भावना है, एक कहानी है।
1: दोस्तों 1949 में उन्होंने अहमदाबाद में दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना की। आज भी ये संस्था कला, थिएटर, लोक संस्कृति और सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही है।
0: और सबसे खास बात, उन्होंने अपने डांस ड्रामास में महिलाओं के अधिकार, दहेज प्रथा, पर्यावरण और मानव अधिकार जैसे मुद्दों को उठाया।
1: यानी मंच पर सिर्फ संगीत और नृत्य नहीं था, समाज को बदलने की कोशिश भी थी।
0: उनकी मेहनत और योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1992 में पद्मश्री और बाद में साल 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
1: लेकिन दोस्तों सच कहें तो उनका सबसे बड़ा अवार्ड वो सम्मान था जो हर कलाकार और हर भारतीय उनके नाम से महसूस करता है।
0: और एक दिलचस्प बात, वो महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की पत्नी थी, यानी एक ऐसा परिवार जहां एक तरफ अंतरिक्ष विज्ञान था और दूसरी तरफ भारतीय कला की आत्मा।
1: और दोस्तों उनकी बेटी मल्लिका साराभाई ने भी इसी विरासत को आगे बढ़ाया है और वे आज भी कला और सामाजिक मुद्दों के लिए सक्रिय हैं।
0: कुछ कलाकार सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बन जाते हैं।
1: और मृणालिनी जी उन्हीं नामों में से एक थी जिनकी पायल की आवाज़ आज भी भारतीय संस्कृति में गूंजती है।

0: AIR at 90.
1: यह आकाशवाणी है दोस्तों, इन शब्दों में सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं बल्कि 90 सालों का इतिहास, भावनाएं और लाखों कहानियां छिपी हुई है।
2: और सच कहें तो हर पीढ़ी का रेडियो से अपना अलग रिश्ता है। किसी के लिए रेडियो बचपन की याद है, किसी के लिए संगीत का साथी और किसी के लिए सपनों का आवाज देने वाला मंच।
1: रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, तब किसी घर के कोने में रखा एक छोटा सा रेडियो जाग रहा होता था। कहीं कोई छात्र पढ़ाई करते हुए गाने सुन रहा होता, कहीं दादी समाचार सुन रही होती, तो कहीं कोई युवा अपने सपनों के साथ पहली बार किसी आरजी की आवाज़ से इंस्पायर हो रहा होता।
2: और सोचिए, एक ऐसा माध्यम जो ना दिखाई देता है, न टच किया जा सकता है, फिर भी दिलों से गहरा कनेक्शन बना लेता है, वो है रेडियो।
1: दोस्तों, इस साल आकाशवाणी अपने 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रही है। 90 साल यानी लाखों आवाजें, करोड़ों श्रोता, अनगिनत कहानियां और देश के हर कोने

0: तक पहुंचने वाला भरोसा।
1: जी हाँ, आकाशवाणी सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस नहीं रही, ये भारत की धड़कन रही है। आज़ादी के समय लोगों तक खबरें पहुंचानी हो, देशभक्ति जगानी हो, कला और संस्कृति को बचाना हो या युवाओं को मंच देना हो, आकाशवाणी हर दौर में देश के साथ खड़ी रही।
0: नेहल, एक बात बताऊं, आज भी जब कोई कहता है यह आकाशवाणी है तो एक अलग ही बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग आती है।
1: बिल्कुल, जैसे अचानक बचपन की यादें लौट आती है। सुबह सुबह समाचार, फरमाइश, गीत, क्रिकेट कमेंट्री और वो सिग्नेचर ट्यून।
0: दोस्तों, आज की जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ी से बदलते देखा है, वॉकमैन से स्मार्टफोन तक, कैसेट से स्ट्रीमिंग ऐप्स तक। लेकिन एक चीज़ जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है वो है रेडियो।
1: क्योंकि रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देता, वो कंपेनशिप देता है। जब कोई अकेला होता है तो रेडियो उसका दोस्त बन जाता है। जब कोई परेशान होता है तो किसी आरजे की हंसी मूड बदल देती है। और जब कोई अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा होता है तो कोई मोटिवेशनल उसे फिर से खड़ा कर देता है।
0: आज का युवा सिर्फ कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहता, वो अपनी आवाज़ भी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, और यही काम रेडियो सालों से करता आ रहा है।
1: जी हाँ, युवाओं को एक्सप्रेशन देना, उनकी क्रिएटिविटी को मंच देना, उनके आइडियाज़ को पहचान देना, यही रेडियोज़ की असली ताकत है।
0: और अगर यूथ और रेडियो की बात हो तो युवाणी का नाम ज़रूर आता है। कितने ही स्टूडेंट्स ने पहली बार यहाँ माइक पकड़ा, पहली बार अपनी कविता पढ़ी, पहली बार अपनी आवाज़ हेडफोन्स में सुनी और उसी दिन उन्हें लगा, हाँ, मेरी आवाज़ भी मायने रखती है।
1: कुछ लोग यहीं से आरजी बने, कुछ लोग एंकर्स बने, कुछ राइटर्स बने और कुछ तो बस इतना कॉन्फिडेंस मिला कि वो ज़िंदगी खुलकर बोल सकें।
0: दोस्तों, रेडियो आपको सिर्फ बोलना नहीं सिखाता, ये आपको सुनना भी सिखाता है, रिस्पेक्ट करना सिखाता है, थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करना सिखाता है।
1: और सबसे ज़रूरी, ये आपको रियल रहना सिखाता है। यहाँ फिल्टर्स नहीं चलते, यहाँ सिर्फ आपकी आवाज़ और आपकी सच्चाई काम आती है।
0: आज कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस भी यूथ एम्पावरमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। छोटे गांवों, कस्बों और दूर दराज के इलाकों तक जहां शायद इंटरनेट की स्पीड धीमी हो, लेकिन रेडियो की आवाज़ अब भी तेज़ी से पहुँचती है।
1: कई युवाओं को करियर गाइडेंस दी जा रही है, कई वुमेन एम्पावरमेंट पर प्रोग्राम्स बना रहे हैं, कई हेल्थ अवेयरनेस पर, तो कहीं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पर डिस्कशन।
0: और सबसे इंस्पायरिंग बात पता है क्या है, कई कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस में लोकल यूथ खुद कंटेंट बनाते हैं, मतलब अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने मुद्दे और अपनी कहानियाँ खुद दुनिया तक पहुँचाते हैं।
1: यानी रेडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा बल्कि लीडरशिप पैदा कर रहा है।
0: आज रेडियो ने खुद को नए समय के साथ बदल भी लिया है। अब पॉडकास्ट्स हैं, ऑनलाइन रेडियो है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैजिक आज भी वही है, आवाज़ का जादू।
1: और आज का यूथ इस स्पेस में कमाल कर रहा है। कोई हिस्ट्री स्टोरीज सुना रहा है, कोई मेंटल हेल्थ पर बात कर रहा है, कोई स्टार्टअप जर्नीज शेयर कर रहा है, तो कोई अपनी रीजनल लैंग्वेज को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचा रहा है।
0: दोस्तों, कई बार मोटिवेशन किसी बड़े सेमिनार से नहीं मिलता, बस किसी अनजान आवाज़ की एक लाइन ज़िंदगी बदल देती है।
1: जैसे हार मत मानो, तुम कर सकते हो, तुम्हारी आवाज़ ज़रूरी है, और रेडियो सालों से यही कॉन्फिडेंस लोगों तक पहुंचा रहा है।
0: जब दुनिया पैंडेमिक से गुजर रही थी तब भी रेडियो लोगों तक इन्फॉर्मेशन, अवेयरनेस और होप पहुंचा रहा था। जब लोग अकेले थे रेडियो उनके साथ था, जब स्कूल्स बंद थे रेडियो पढ़ाई पहुंचा रहा था, और जब लोग युद्ध के समय में डर रहे थे तब रेडियो उन्हें भरोसा दे रहा था।
1: दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर लाखों वीडियोस हैं, लेकिन रेडियो का कनेक्शन अलग है, क्योंकि यहाँ का कंपटीशन कम है, कनेक्शन ज़्यादा होता है।
0: यहाँ वायरल होने की नहीं, दिल तक पहुँचने की बात होती है।
1: अगर आप युवा हैं तो आपको लगता है कि आपकी आवाज़ छोटी है तो रेडियो से सीखिए, एक आवाज़ पूरा समाज बदल सकती है।
0: अगर आपके पास टैलेंट है, थॉट्स हैं, क्रिएटिविटी है, तो उसे दबाइए मत, क्योंकि शायद आपकी आवाज़ किसी दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। 90 साल पहले शुरू हुई ये आवाज़ आज भी उतनी ही ताज़ा है, क्योंकि रेडियो टेक्नोलॉजी से नहीं, इंसानी एहसासों से चलता है।
1: और जब तक सपने देखने वाले युवा रहेंगे तब तक रेडियो भी रहेगा उनके साथ, उनकी आवाज़ बनकर।
0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्षों को युवाणी का नमन, आवाज़ जो दिलों को जोड़ती रही और जोड़ती रहेगी।

0: दोस्तों, कुछ तारीखें इतिहास की किताबों में सिर्फ लिखी नहीं जाती बल्कि पूरी दुनिया की सोच बदल देती है, और 11 मई एक ऐसी ही तारीख है।
1: कई इस दिन विज्ञान ने नई उड़ान भरी, कई संगीत ने दुनिया को धुन दी, और कई एक देश ने पूरी दुनिया के सामने अपना आत्मविश्वास साबित किया। तो चलिए दोस्तों, आज के इतिहास के सफर पर चलते हैं।
0: दोस्तों, 11 मई दुनिया की म्यूजिक हिस्ट्री के लिए बेहद खास माना जाता है। आज ही के दिन 1888 में जन्म हुआ था महान कंपोजर और सॉन्ग राइटर इरविन बर्लिन का।
1: एक ऐसा नाम जिसने दुनिया को कई टाइमलेस सॉन्ग्स दिए, उनकी कंपोजिशंस आज भी ग्लोबल

0: म्यूज़िक कल्चर का हिस्सा मानी जाती हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने अपने जीवन में 1500 से भी ज़्यादा सॉन्ग लिखे, मतलब आज के प्लेलिस्ट कल्चर से बहुत पहले ही वो दुनिया की को एंडलेस प्लेलिस्ट दे चुके थे।
1: दोस्तों, अब बात करते हैं उस घटना की जिसने 11 मई को भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। साल था 1998, स्थान राजस्थान का पोखरण, ऊपर शांत रेगिस्तान, लेकिन नीचे भारत इतिहास लिखने की तैयारी कर चुका था।
0: और 11 मई 1998 को भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किए, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति, और उसी पल भारत दुनिया की परमाणु शक्तियों में शामिल हो गया।
1: बिल्कुल दोस्तों, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, और इस मिशन में महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।
0: दोस्तों सोचिए, सीमित रिसोर्सेस, दुनिया का प्रेशर, और फिर भी भारतीय वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, और शायद इसी कॉन्फिडेंस ने भारत को नई पहचान दी।
1: बिल्कुल दोस्तों, और कॉन्फिडेंस की बात हो और मैदान की बात ना हो, तो चलिए अब बात करते हैं कि मैदान चाहे क्रिकेट का हो, शूटिंग रेंज की हो या बॉक्सिंग रिंग का, इस वक्त हर तरफ सिर्फ एक ही चीज़ गूंज रही है, वो है इंडिया ऑन द मूव।
0: तो चलिए बिना टाइम आउट लिए शुरू करते हैं आज का स्पोर्ट्स अपडेट। सबसे पहले बात करते हैं कल के पहले मैच की। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। 2003 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने 19.2 ओवर में चेस कर लिया। उर्विल पटेल ने सिर्फ 23 गेंदों में 65 रन की एक्सप्लोसिव पारी खेली।
1: वहीं दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आखिरी गेंद पर मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। पंड्या ने 73 रन बनाए, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 4 विकेट लेकर मैच पलट दिया।
0: और आज का मुकाबला पंजाब किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स शाम 7:30 बजे धर्मशाला में होगा।
1: अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग की। भारत 44 साल बाद गुजरात में एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप होस्ट कर रहा है। 28 देशों के करीब 180 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और भारत को बिंदिया रानी देवी जैसे खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीदें हैं।
0: शूटिंग में भी भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। नीरू धंधा और विवान कपूर ने ISSF वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता।
1: और बॉक्सिंग में भारत के 6 युवा बॉक्सर एशियन अंडर 15 चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए हैं। और स्क्वेश की बात की जाए तो उसमें भारत का अभियान खत्म हो गया है। वीर चोटरानी दूसरे दौर में वर्ल्ड के नंबर 1 मुस्तफ़ा असल से हार गए हैं। फुटबॉल में आज वुमेंस की जो टीम थी उसका बड़ा मुकाबला चाइना से है। अगर भारत इसमें जीत जाता है तो पहली बार मेरिट के आधार पर फीफा वर्ल्ड कप के लिए वो क्वालिफाई करेगा।
0: तो दोस्तों, भारतीय खिलाड़ी हर मैदान में अपना दम दिखा रहे हैं, और याद रखिए, जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी मिनट तक कोशिश करना नहीं छोड़ते। इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज का शेयर बाजार कैसा रहा।
1: बिल्कुल, आज के शेयर बाजार, सबसे पहले बात करते हैं BSE की, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 76,015.28 अंकों पर बंद हुआ। और यह जो बाजार था वो नीचे लुढ़का था 1,312.91 अंकों पर। साथ ही साथ NSE यानी कि निफ्टी 50 की भी बात की जाए तो 360.30 अंक नीचे गिरकर यह बाजार आज बंद हुआ 23,815.85 अंकों पर। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो यहाँ एक डॉलर रहा 95.24 भारतीय रुपया।

0: शब्दों के इत्तेफाक में यूं बदलाव करके देख, तू देख कर ना मुस्कुरा, बस मुस्कुरा कर देख। बिल्कुल इसी के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, औरों को भी खुश रखें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। यही वादा है आपसे, मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए मैं प्रेरणा,
1: मैं निहल,
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवावाणी कार्यक्रम 101.9 FM रेडियो लेक सिटी। हम आकाशवाणी के FM रेडियो लेक सिटी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों की प्रतीक्षा कीजिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं, बल्कि यह आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

0: मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य 1 वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

101.9 FM रेडियो लेक सिटी में हूँ आरजे नील। दोस्तों, आकाशवाणी के 90 सालों का सफर पूरा होने जा रहा है और इन 90 सालों को लेकर सफर ये किस तरह से रेडियो ने पूरा किया है, ये सब कुछ आज इसी प्रोग्राम में, फिल्म म्यूजिक के इस प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलेगा। दोस्तों, लाखों आवाजें, करोड़ों श्रोता और दिलों की धड़कन आकाशवाणी सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये आपका असली कंपेनियनशिप देता है, आपका असली कंपेनियन है, आपका दोस्त है।

दोस्तों, भारत में रेडियो का चलन बरसों पुराना है और पुराने समय से रेडियो एक ऐसा यंत्र रहा है, एक ऐसी मशीन थी जिसे लोग बहुत ही चाव से सुना करते थे और आज भी सुना करते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से लोगों तक देश और दुनिया की खबरें पहुंचाई जाती थी। साथ ही उस समय के लोगों के लिए मनोरंजन का साधन एकमात्र रेडियो ही था और आज के समय में भी रेडियो लोगों के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चला है। आपको याद होगा 2014 जब मन की बात का प्रसारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित रेडियो शो के जरिए हुई थी, जिसमें लोग बड़े चाव से सुना करते थे। और अब रेडियो में कई परिवर्तन हो चुके हैं, यानी समय के साथ रेडियो द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में भी कई परिवर्तन हो गए हैं। जैसे अब रेडियो ब्रॉडबैंड मोबाइल और टैबलेट के जरिए भी आसानी से उपलब्ध है। रेडियो इन सारी विशेषताओं के चलते ही आपको याद होगा 13

फरवरी का दिन भी रीड दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। वैसे बात करें इसके इतिहास के बारे में तो भारत में रेडियो का सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब यानी मद्रास प्रेसिडेंसी क्लब 1924 में इसे लेकर आया था और क्लब ने 3 सालों तक रेडियो का प्रसारण भी किया था, लेकिन आर्थिक मुश्किलों के चलते 1927 में क्लब ने इसे बंद कर दिया था। और इसी साल 1927 में कुछ बॉम्बे के व्यापारियों ने बिजनेसमैन ने भारतीय प्रसारण कंपनी को बॉम्बे और कलकत्ता में शुरू किया था। ये कंपनी भी 1930 में फेल हो गई थी और फिर 1932 में भारत सरकार ने इसकी बागडोर अपने हाथों में ले ली और एक अलग से भारतीय प्रसारण सेवा नाम का विभाग आरंभ कर दिया। और भी बातें रेडियो पर आते हैं आपके एंटरटेनमेंट पर।

दोस्तों 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो यानी AIR रख दिया गया, जिसे संचार विभाग देखा करता था। भारत में रेडियो प्रसारण एक राष्ट्रीय सेवा थी जिसे भारत सरकार द्वारा बनाया गया था और इसे संचालित किया जाता रहा। AIR ने इस सेवा को आगे बढ़ाया और पूरे देश में रेडियो प्रसारण के लिए स्टेशन बनवाए। एक बड़े देश के लिए इतनी बड़ी राष्ट्रीय सेवा को देश की हर कोने तक पहुंचाना बेहद मुश्किल था, तो इस मुश्किल को दूर करने के लिए स्वतंत्रता के बाद AIR ने अपने अलग दो विभाग बना लिए। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी रख दिया गया।

आजादी के समय देश में सिर्फ 6 रेडियो स्टेशन हुआ करते थे, लेकिन 90 के दशक तक रेडियो का नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका था और 146 AM स्टेशन बन गए थे। रेडियो के कार्यक्रम अंग्रेजी, हिंदी, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में आया करते थे। 1967 में देश में व्यावसायिक रेडियो सेवा आरंभ हुई और इसकी शुरुआत विविध भारती या यूं कहें कि व्यावसायिक सेवा ने मुंबई मुख्यालय से की। 1990 के मध्य तक देश में प्रसारण के 31 AM और FM स्टेशन बन चुके थे। 1994 में देश को जोड़ने के लिए 85 FM और 73 वेव स्टेशन बनाए गए थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि रेडियो संचार का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना माध्यम होने के बावजूद भी रेडियो दिवस की अगर बात करें तो वह विश्व स्तर पर मनाए जाने का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। इसे लगभग एक दशक पूर्व ही मनाए जाने की घोषणा हुई थी। दरअसल सर्वप्रथम 20 सितंबर साल 2010 में स्पेनिश रेडियो अकादमी के अनुरोध के बाद स्पेन ने यूनेस्को की एक बैठक में रेडियो दिवस मनाए जाने का एजेंडा रखा और इसके बाद 29 सितंबर 2011 को इस एजेंडे को प्रोविजनली एजेंडे के रूप में बैठक में शामिल कर लिया गया और इसके बाद स्टेक होल्डर की सहमति के बाद यूनेस्को ने अपने 36वें सत्र में इस दिन को मनाने की घोषणा की। साल 1946 में संयुक्त राष्ट्र ने 13 फरवरी के दिन संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की और इसीलिए हर साल 13 फरवरी के दिन भी इसे हम मनाते रहे हैं। विश्व रेडियो दिवस की बातें बाद में, लेकिन रेडियो के इस सफर में हम जारी रखते हैं आपके लिए ये फिल्म म्यूजिक का प्रोग्राम।

इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं आकाशवाणी के 90 सालों का सफर इस पर। और दोस्तों, जब बात भारत में रेडियो की घरेलू सेवाओं की हो तो ऑल इंडिया रेडियो ने कई भाषाओं में सेवाएं दी हैं। प्रत्येक देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में ये सेवारत भी हैं। विविध भारती की अगर बात करें तो विविध भारती ऑल इंडिया रेडियो की सबसे अच्छी सेवाओं में से एक है। इसका नाम अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हम बोलते हैं विविध भारती, और इसे व्यावसायिक प्रसारण सेवा भी कहा जाता है। ये ऑल इंडिया नेटवर्क में व्यावसायिक रूप से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय भी है और सबसे ज़्यादा पहुँच भी इसकी है। भारत में कई बड़े शहरों में लोकप्रिय यह रही है विविध भारती। समाचार, फिल्म, संगीत और कॉमेडी और न जाने कितने ढेरों कार्यक्रम पेश करता रहा है। जहां तक बात करते हैं अन्य सेवाओं की, तो अन्य सेवाएं और भी हैं। पहली प्राइमरी चैनल और राष्ट्रीय चैनल, और क्षेत्रीय सेवाओं में ऑल इंडिया रेडियो ने 5 क्षेत्रीय मुख्यालय बनाए हैं। उत्तर जोन का दिल्ली में, पूर्व जोन को कलकत्ता में, उत्तर पूर्व जोन में गुवाहाटी में, पश्चिमी जोन मुंबई में और दक्षिणी जोन को चेन्नई में रखा गया है। इसके अलावा और भी कई स्थानों पर इसके मुख्यालय हैं और प्रत्येक मुख्यालय में अलग अलग आवृत्ति वाले यानी कि फ्रिक्वेंसी वालों का प्रसारण होता है, जो कि उत्तर क्षेत्रीय सेवाएं शामिल हैं। उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय सेवाएं जिसमें शामिल है अगरतला, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल। पूर्वी क्षेत्रीय सेवाएं की बात करें तो भागलपुर, कटक, जमशेदपुर, कोलकाता, मुजफ्फरनगर। पश्चिमी सेवाएं की बात करें तो अहमदाबाद, भोपाल, ग्वालियर, जलगांव, पुणे। दक्षिणी क्षेत्रीय सेवाएं जिनमें बहुत सारे शहर शामिल हैं, बेंगलुरु, गुलबर्गा, मदुरई, बहुत सारे नाम हैं। भारत में रेडियो की अगर बाहरी सेवा की बात भी करें, जो कि हम इस गाने की बात करेंगे, यानी कि इंडियन रेडियो सिस्टम यानी कि एक्सटर्नल सर्विसेज डिविजन,

दोस्तों चलिए अब बात करते हैं भारत के रेडियो को विदेश में भी लोग सुनना पसंद करते हैं, यानी कि इंडिया रेडियो एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन के तहत, जिसके चलते ऑल इंडिया रेडियो के बाहरी सेवा प्रभाग द्वारा वहां भी प्रसारण शुरू किया गया। सन 1994 में लगभग 70 घंटे के खबरें और मनोरंजन के कार्यक्रम 32 सॉफ्टवेयर ट्रांसमीटर की मदद से प्रसारित किए जाते थे। अखिल भारतीय रेडियो को बाहरी सेवाएं यानी कि 27 भाषाओं में भारत के बाहर प्रसारित किया गया, मुख्य रूप से हाई पावर शॉर्टवेव बैंड प्रसारण के माध्यम से। हालांकि मध्यम तरंग भी पड़ोसी देशों के लिए

उपयोग की जाती थी। भाषा के अनुसार विशिष्ट देशों में प्रसारण के अतिरिक्त सामान्य अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए हर रोज 8.5 घंटे अंग्रेजी में एक सामान्य प्रवासी सेवा प्रसारण हुआ करता था। 1 अक्टूबर 1949 को ब्रिटिश सरकार ने अफगान लोगों पर निर्देशित नाजियों के प्रचार का मुकाबला करने के लिए बाहरी प्रसारण शुरू किया था। बाहरी सेवाओं को 16 विदेशी और 11 भारतीय भाषाओं में प्रसारित किया गया, जिसके माध्यम से शॉर्टवेव फ्रिक्वेंसी पर रोजाना करीब 70 घंटे का कार्यक्रम हुआ करता था।

दोस्तों, रेडियो जो है वो इस टेक्नोलॉजी के बदलते दौर में आज भी उतना ही स्थापित रूप से खड़ा हुआ है, नीडर बिल्कुल। क्योंकि आप जानते हैं कि जब रेडियो चलता है तो दूर सुदूर से जो आवाज़ आती है वो कृष्ण की बांसुरी से भी ज़्यादा मधुर हो सकती है। हाँ, ये ज़रूर है कि रेडियो अगर शांत रहे तो हमारे और आपके कान वास्तविकता से वंचित रह जाएंगे।

दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यूएन के अनुसार दुनिया भर में लगभग 44,000 रेडियो स्टेशन संचालित हैं और अब तक जो प्राप्त डेटाज हैं उनके अनुसार विकसित देशों में लगभग 75% घरों में आज भी रेडियो मौजूद है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि रेडियो को सुनने वाले लोग कितनी बड़ी तादाद में हैं। हाँ, इतना जरूर है कि रेडियो माइक्रोफोन के कारण पावरफुल नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के कारण है जो माइक्रोफोन के पीछे बैठा अपनी आवाज देता है।

आप भी जरूर मुस्कुराइए क्योंकि आप रेडियो सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, लाखों आवाजें, करोड़ों श्रोता और दिलों की धड़कन, इसीलिए रेडियो है। रेडियो सिर्फ बोलना नहीं सिखाता दोस्तों, ये सुनना भी सिखाता है, आपको लिखना भी सिखाता है, बल्कि वो सब कुछ जो एक अनजान सी आवाज आपका दिल बदल देती है, सोचने का नजरिया बदल देती है, दिशा और दशा बदल देती है, और इसीलिए रेडियो इतना खूबसूरत है।

तो ये था आकाशवाणी की गौरवशाली 90 सालों का सफर, और इस सफर के साथ फिल्म म्यूजिक के इस प्रोग्राम में मैं था अर्जुन, आपका हम सफर।

101.9 FM रेडियो लेक सिटी आप सुन रहे हैं। दोस्तों शाम के 7 बजने ही वाले हैं। कुछ पलों में आप सुनेंगे मुंबई से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम में आप सभी फौजी साथियों का स्वागत है।

0: अभी आपने शंकर महादेवन, सोनू निगम और हरिहरन को फिल्म लक्ष्मी सुना। संगीत शंकर ईशान लॉय का था, बोल जावेद अख्तर के। लीजिए सुनिए भारतीय सेना पर आधारित गीत, गीतकार संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे समर।

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अभी आपने भारतीय सेना पर आधारित गीत सुना। गीतकार, संगीतकार और मुख्य स्वर कैलाश खेर के थे। लीजिए अब सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू को फिल्म रंग में, गीतकार समीर और सुरेंद्र साथी, संगीतकार नदीम श्रवण।

अभी आपने कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म रंग में सुना, अब अलका याग्निक को सुनिए हरिहरन के साथ खामोशी द म्यूजिकल फिल्म में। बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत जतन ललित का।

0: विद भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: इस समय फौजी भाई सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। लीजिए सुनिए कुमार सानू को फिल्म परदेश में। तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने, बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम के आगे जो गीत होंगे वो इस अंतराल के बाद।

सुन रहे कुमार सानू को आपके साथ साथ देंगी साधना सरगम। फिल्म है दीवाना। नदीम श्रवण के संगीतबद्ध के इस गीत की धुन, किस गीत को लिखा है समीर ने।

0: ये थे कुमार सानू और साधना सरगम फिल्म दीवाना में।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी पर

अब सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति को फिल्म माशूक में। रचना गौहर कानपुरी की, संगीत श्याम सुरेंद्र का।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: स्मृतियों के स्वर। स्मृतियों के स्वर इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज लीजिए सुनिए सेवानिवृत्त सहायक निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: दिलीप साहब, आज क्या ऐसे इंजीनियर्स हैं पूरी जीजी विषा के साथ एक नई जो आकाशवाणी की टेक्नोलॉजी आई है उसमें काम कर रहे हैं?
2: जी जी टेक्नोलॉजी में तो सब माहिर हो गए, अभी टेक्नोलॉजी तो उन्होंने अपडेट कर दिया है, अभी नए बच्चे भी आ गए हैं, वो भी अभी नए टेक्नोलॉजी के साथ मिल गए हैं। उनको मैंने उसकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो 90 ईयर्स का जो प्रवास है अपना,
1: अच्छा, आकाशवाणी का जी,
2: उसकी वीडियो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई थी। हाँ। उसमें सारी बातें मैंने रखी थी उसमें। और वो डॉक्यूमेंट्री रंगभवन में आकाशवाणी दिल्ली के वहाँ दिखाई गई थी, ऑनरेबल मिनिस्टर भी वहाँ थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट भी किया था वो डॉक्यूमेंट्री के लिए। और टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया, जब टेप से चालू हो गया, वॉल मशीन चालू हो गया, आज डिजिटल तक आ गए ये सारे। इसमें इंटरेस्ट जो लेता है ना वो आगे बढ़ता है। जैसे अभी आज का माहौल है, डिजिटल युग का ऐसा माहौल है कि आप इंजीनियर तो इंजीनियर का काम करो, प्रोग्रामर तो प्रोग्राम का काम करो, ऐसी अभी बातें रही नहीं। हर एक को हर एक काम करना है तो ही आगे बढ़ता है, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। कोविड टाइम में सारे आकाशवाणी स्टेशन विविध भारती ले रहे थे, स्टाफ का प्रॉब्लम था वहाँ पे। यहाँ 24/7 यहाँ काम किया है मैंने, खाना खाने के भी घर नहीं जाता था। ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि जिसने पहला वैक्सीन ढूंढ के निकाला था कोविड का, वो एक साइंटिस्ट थी, मुंबई के लग के जो वसई गांव है वहाँ की थी। उनके गांव में उसका नाम लिखा था, एक बैनर लगाया था, एक साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन ढूंढ निकाला। एक जो हमारा कलीग था उसके स्टेटस में उसने लगाया था वो बैनर, तो मैंने उसको फ़ोन किया, ये साइंटिस्ट है उसका नंबर मिलेगा क्या? वो US में थी, अमेरिका में थी, तो उसने मुझे नंबर ढूंढ के दिया। फिर मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया और फिर उसका एक रिकॉर्डिंग किया यहाँ, जिसने पहले वैक्सीन निकाला जो टीम में थी, साइंटिस्ट के टीम में थी, उसका एक रिकॉर्डिंग यहाँ विद भारती में हुआ था कोविड के टाइम में। वो सारे व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग की

0: थी वो सारी।
1: अच्छा हाँ
0: फिर कुछ स्टूडेंट थे, कोई यूएस में था, कोई जर्मनी में था, कोई जापान में था, वो फंस गए थे, उनकी रिकॉर्डिंग की थी। एक रिकॉर्डिंग मेरी फैमिली की याद है, वो उनके जो पिता थे वो लड़की के, वो श्रीलंका में फंस गए थे, उसकी माँ गोवा के पास एक गांव है वहाँ फंस गई थी, और ये लड़की यहाँ मुंबई में थी। तो तीनों को एक दूसरे से कांटेक्ट सिर्फ फ़ोन से होता था,
1: बहुत बड़ी बात।
0: और 2 महीना पूरा लॉकडाउन था। ग्रुप रिकॉर्डिंग की थी
1: जी
0: फिर
1: जी जी ये
0: तो,
1: बहुत
0: और
1: ही अभूतपूर्व प्रयास
0: जी
1: रहे होंगे
0: जी
1: उस समय कोविड काल में,
0: कोविड
1: जब
0: काल
1: हम
0: में
1: बुला भी नहीं सकते थे और जा भी नहीं सकते थे। उस स्थिति में आपने उन लोगों को रेडियो के माध्यम से रूबरू करवाया, आपस में मिलवाया, बहुत
0: जी
1: बड़ी बात होती है, और वो भी तकनीकी विभाग के एक इंजीनियर के रूप में।
0: जी हाँ, तकनीकी और प्रोग्राम ऐसा कुछ हो ही नहीं होता
1: हाँ,
0: ही नहीं
1: ये
0: है।
1: सबसे बड़ी
0: हाँ ये
1: भावना
0: सब
1: है कि हम जो है एक परिवार के सदस्य
0: परिवार
1: हैं, और चाहे हम कार्यक्रम में का विभाग में हैं और चाहे तकनीकी विभाग में, काम हमें ही सब करने हैं।
0: जी। हमने गोल्डन जुबली किया था, 60 साल पूरे हुए थे विविध भारती के, तभी एक थीम थी विविध भारती की, जल स्थल और वायु। तो उसमें हमने नेवी, BSF और एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। हम विक्रांत पे गए थे, जो
1: अच्छा
0: पुरानी विक्रांत
1: जी
0: थी
1: जी
0: वहाँ जाके रिकॉर्डिंग की थी नेवी की। फिर जोधपुर गए थे, जैसलमेर गए थे,
1: जी
0: वहाँ BSF की रिकॉर्डिंग की थी। बनारस और प्रयागराज, वहाँ हमने एयरफोर्स की रिकॉर्डिंग की थी। वो जा वहाँ भी ऐसी रिकॉर्डिंग में बहुत दिक्कतें आती थी, कभी कभी मशीन वहाँ की नहीं चलती थी,
1: हाँ
0: तो हमने वहाँ भी कुछ जुगाड़ करके, देसी जुगाड़ करके हमने
1: जी,
0: रिकॉर्डिंग की थी वो टाइम की। वो टाइम के तो किस्से अलग ही
1: मतलब
0: है।
1: शो मस्ट गो ऑन,
0: हाँ या
1: है ना, वो चलते
0: वो तो
1: रहना
0: चलता ही
1: चाहिए
0: रहना
1: किसी भी तरह से हो।
0: है। एक मैंने प्रोग्राम किया था आज़ादी का अमृत महोत्सव, हम फिल्म डिवीजन गए थे और वहाँ से वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज लेके आए थे। हमारे साथ हेड ऑफ़ द प्रोग्राम रेणु जी भी थी, और उस वीडियो प्रोग्राम से हमने ऑडियो प्रोग्राम बनाए थे, रेडियो ड्रामा बनाया था, और वो बहुत लोकप्रिय भी हुआ था।
1: दिलीप साहब जी, आप अपनी बातों से हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से आकाशवाणी की दुनिया को कायम किया गया और आज कहाँ पहुंच गई है
0: जी
1: आकाशवाणी।
0: जी
1: तो आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस गौरवशाली सफर को आप किस तरह से कहना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी का जो मोटो है, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और यूनिटी, इसके आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है।
1: जी
0: जैसे 99% लोगों को तक रीच है आकाशवाणी की, और आज विश्व में तो ऐप के द्वारा सब जगह जुड़ी गई है। और 90 साल में जो देखा जाए ना, एक इंस्टीट्यूट मैच्योर्ड होती है, और पीछे से जो चलते आ रहा है वो आगे चलाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अभी के जो लोग हैं उनके हाथों में है, वो जो गौरव है, वो जो रिस्पेक्ट है अभी तक बरकरार रखना,
1: बिल्कुल
0: ये लोगों के हाथ में है।
1: बिल्कुल
0: और मुझे लगता है ये लोग बहुत तरह से, अच्छी तरह से निभा रहे हैं ये। और आकाशवाणी का तो दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट की बॉडी नहीं है, ये लोगों की भी है।
1: जी बिल्कुल
0: लोगों के मन में अभी तक आकाशवाणी है, और विविध भारती तो है, पॉपुलर तो है ही सारे
1: विविध
0: विश्व
1: भारती तो
0: में
1: जीवन संगीत के रूप
0: जहाँ
1: में जुड़ा हुआ
0: से
1: है, और लेकिन हर आकाशवाणी से जो है आम जनता जुड़ी हुई है और उनके जीवन का एक आधार बन गया है
0: जी,
1: आकाशवाणी।
0: विविध भारती की एक विशेषता एक है, वो डिफरेंस बहुत लोगों को मालूम नहीं है, बाकी जो चैनल्स है, प्राइमरी चैनल्स है या लोकल चैनल्स है, उनमें क्या प्रोग्राम की वैरायटीज होती है।
1: जी
0: युवाओं के लिए प्रोग्राम है, बालकों के लिए है, महिलाओं के लिए है,
1: कृषकों
0: या
1: के लिए
0: कोई है
1: है।
0: साहित्यिकों के लिए है, या कृषि प्रोग्राम्स है, या लोकल कुछ प्रोग्राम्स है,
1: बिल्कुल
0: वो रहते हैं, बहुत वैरायटीज है उनके पास। विविध भारती में ऐसे नहीं है। अब ठीक तरह से देखा जाए, ये मोनोटोनस प्रोग्राम है, इंटरव्यू है, थोड़ी बातें हो गई, गाना बज गया। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हुए भी, एक मोनोटोनस प्रोग्राम होते हुए, विविध भारती की पॉपुलैरिटी इसलिए है, यहाँ क्रिएटिविटी है,
1: जी
0: प्रोग्राम एक ही टाइप का है लेकिन
1: हाँ,
0: वो क्रिएटिव
1: लेकिन
0: बनाना
1: उसको
0: है
1: प्रस्तुत करने के तरीके
0: जी,
1: अलग
0: अलग
1: अलग
0: है,
1: हैं।
0: अलग है
1: जो प्रसारण करता है, जो अधिकारी गण है, उसको अलग अलग तरीके से प्रसारित करते
0: जी
1: हैं,
0: जी
1: तो वो एक वैरायटी के रूप
0: वैरायटी
1: में
0: रहती है
1: आ जाता है।
0: जी।
1: तो आप तकनीकी विभाग में तो थे ही, जैसा कि हम बात कर रहे थे, एक सहायक निदेशक के रूप में भी आपने काम किया है। क्या भूमिका रही सहायक निदेशक के रूप में आपने आकाशवाणी को किस तरह से जिया?
0: प्रमोशन में मुझे ट्रांसफर हो गई वो पश्चिम क्षेत्र में, पूरा पश्चिम क्षेत्र 5 राज्यों का है, उसमें मुझे प्रशासन का काम दिया गया था, और वहाँ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन था स्टेशन और डायरेक्टरेट उनके बीच का, जो हो जो मिडल मैन रहता है वो जोनल ऑफिस रहता है, और जो यहाँ की बातें दिल्ली तक पहुँचाना, दिल्ली की बातें वहाँ तक पहुँचना,

0: वो जो पूरा चेन है, चेन बरकरार रखना और सारी बातें स्टेशन ठीक तरह से करता है कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करना, उनको गाइड करना ऐसे।
1: लेकिन जैसा कि आपका मन एक कलाकारी मन है, हमने आपसे बातचीत में पाया कि आप कला में ज्यादा रुचि लेते रहे, तो कला से होते हुए प्रशासन तक जो ये सफर रहा, कैसे मन को समझाया होगा? क्योंकि जब आप यहाँ थे तो आपने तकनीकी विभाग भी संभाला और साथ में प्रोग्राम साइड में भी आपका हस्तक्षेप रहा, लेकिन चूंकि सहायक निदेशक के रूप में एक प्रशासनिक काम ज्यादा हो गया, उसमें एक अलग रूखापन आ जाता है काम में और जिम्मेदारी अलग किस्म की आ जाती है, तो किस तरह से आपने अपने आप को एडजस्ट किया होगा?
0: बुरा तो लगा यहाँ से जाते समय
1: जी
0: कि विद भारती में 33 साल थे और यहाँ का एक केबल न केबल एक इक्विपमेंट सारा मैंने इंस्टॉल किया था, तो थोड़ा लगाव था इससे। तो जाते समय बुरा तो लगा, लेकिन एक था ना, एक लोकल स्टेशन छोड़ के मैं जा रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो एक थोड़ी खुशी भी थी वहाँ काम कर रहा हूँ। प्रशासन का तो मुझे पहला एक्सपीरियंस था कि मैं कठुआ में था, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में था,
1: अच्छा
0: तो वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, तभी 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया था, तो वहाँ प्रशासन का काम था मुझे, क्योंकि मैं ही इंजीनियरिंग हेड था वहाँ पे, तो वो थोड़ा अनुभव था मुझे, वो थोड़ा अनुभव वहाँ काम आया। लेकिन वो स्टेशन का काम था और ये पूरा जोन का काम था, पूरा क्षेत्र का काम था।
1: लेकिन आपने इसे भी बहुत ही बखूबी निभाया।
0: ऐसे मेरे वरिष्ठ तो बोलते
1: नहीं, हमने भी आपके बारे में
0: हैं
1: जाना और सुना तो
0: जी
1: पता चला कि दिलीप कुलकर्णी साहब वहां पर भी काम जो है बहुत ही खूबसूरत
0: जी
1: तरीके से
0: जी
1: कर रहे
0: धन्यवाद।
1: हैं। तो सर, एक बात और हम जानना चाहेंगे कि डिजिटल युग और निजी एफएम चैनल्स के दौर में आकाशवाणी आज भी प्रासंगिक है, जबकि इसकी प्रासंगिकता को लेकर हजार बातें कही गई, हजार तरीके से कहा गया, लेकिन आकाशवाणी कहीं डगमगाया नहीं। तो आज डिजिटल रेडियो, न्यूज ऑन AIR एप्स आ गए हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब की उपस्थिति, एफएम के अलावा पॉडकास्ट सेवाएं भी आ गई हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: एक किस्सा बताता हूँ मैं, अपना ऋषि कपूर जी के हम घर गए थे रिकॉर्डिंग के लिए, तो ऋषि कपूर जी ने उनका अनुभव बताया था।
1: जी
0: जब भी शूटिंग में जाता हूँ, कार से जाता हूँ, मैं प्राइवेट चैनल FM चैनल में ट्यून करता हूँ, और उनकी बकबक सुन के मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ,
1: जी
0: परेशान हो जाता हूँ, मैं फिर से विविध भारती पर आ जाता हूँ, और वहाँ जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता है।
1: जी
0: जो आकाशवाणी के मैं कार्यक्रम सुनता हूँ, मुझे मालूम रहता है, ये ऋषि कपूर जी ने बताया था कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आने वाला है, और उनके उद्घोषों का नाम उनको पता था।
1: अच्छा
0: तो ये जो बड़े स्टार जो बता रहे हैं, वो भी विविध भारती सुन रहे, आकाशवाणी सुन रहे, तो आकाशवाणी तो रहेगी, आकाशवाणी तो डिजिटल आने जो पॉडकास्टिंग आने दो, हमें यहाँ रहना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना ही पड़ेगा,
1: जी
0: और एक अच्छा बदलाव है ये,
1: यानी कोई भी चीजें आती हैं जैसे जैसे, हमें उसको अपनाना भी
0: अपनाना
1: होगा
0: पड़ेगा।
1: और अपने साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। तो आज आकाशवाणी की जो ये ऐतिहासिक यात्रा है जिसके लिए हम बैठे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, और जो सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी का प्रभाव है, आप उसे कैसे देखते हैं?
0: कुछ लोग बोलते हैं अभी नया जनरेशन है, जेन जी है, वो आकाशवाणी की तरफ नहीं आ रहा है,
1: जी
0: अभी उनको अपनी तरफ खींचना अभी अपना ही काम है, वो क्या लाइक करते क्या डिसलाइक करते वो देखना पड़ेगा हमें, और उसी तरफ से हमें प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, और जो हम प्रोग्राम बनाएंगे अभी फॉर एवर रहेंगे, पहले जैसे नहीं रहेगा कि हमने मैग्नेटिक टेप पे प्रोग्राम बनाए फिर डिलीट हो गए, वो टेप दूसरी प्रोग्राम के लिए यूज़ किए, ऐसा नहीं होगा। हमारे अभी प्रोग्राम सोशल मीडिया में जा रहे हैं, तो हमें उस हिसाब से प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे, और ये बदलाव थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर वापस लोग पीछे मुड़ के जाते हैं। आज भी गुरुदत्त जी को ये लोग याद कर रहे
1: जी
0: हैं, राज
1: जी
0: कपूर जी को कर रहे हैं,
1: जी
0: उनके गाने
1: जी
0: सुन रहे हैं, उनके रिमिक्स बन रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: नए गानों के तो रिमिक्स नहीं बन रहे हैं,
1: हाँ। और आज
0: तो
1: भी हम जितने समारोह देखते हैं वहां पर पुराने गाने ही गाए जाते हैं,
0: गाने जाते
1: ज्यादातर
0: हैं
1: पुराना फैशन लौट कर आ रहा है, यानी सब कुछ लौट रहा है
0: वो
1: ना
0: जो प्योरिटी हो तो रहेगी
1: जी,
0: ही।
1: जैसे कि वेदों की ओर लौटो ये
0: जी जी
1: कहा
0: जी
1: गया,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये इसीलिए कहा गया, और ये जो वापस लौटना है ये यही इंगित कर
0: यही
1: रहा
0: है
1: है
0: ना
1: कि सब कुछ लौटेगा।
0: जी जी
1: तो दिलीप साहब, आपसे इतनी सारी बातें हमने की हैं, चलते चलाते आपकी पसंद का एक गीत हम सुनना चाहेंगे।
0: एक गीत हमने यहाँ रिकॉर्ड किया था, वो टाइम मल्टी ट्रैक फैसिलिटी नहीं थी,
1: जी
0: और 40 ट्रैक में वो रिकॉर्डिंग किए थे हमने यहाँ पे, इसी स्टूडियो में की थी,
1: अच्छा सर
0: तो फीमेल कोरस, मेल कोरस, पर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, पाटेकर म्यूजिक डायरेक्टर थे आप, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। हमने 40 ट्रैक में रिकॉर्डिंग की और उसका पोस्ट प्रोडक्शन 3 दिन तक चला, वो
1: अच्छा
0: 40 ट्रैक सब स्टूडियो में कन्वर्ट करने थे,
1: बहुत खूब
0: तो मिलिन इंग्ले जी मेल वॉइस थी और बेला शिंदे जी फीमेल वॉइस थी,
1: जी

0: तो वहाँ हम रात यहाँ 2-2 बजे तक यहाँ स्टूडियो में रुकते थे,
1: जी
0: बीच में बाहर जाके कभी 12-1 बजे बाहर जाते थे
1: हाँ
0: चाय पीने के
1: हाँ
0: लिए।
1: हाँ
0: तो वो टाइम साइकिल पे चाय आती थी केटल में, आज
1: अच्छा
0: भी घूमते हो रात
1: जी
0: को 12 बजे के बाद।
1: जी
0: तो वो हम चाय पी के वापस स्टूडियो में आते थे। वो गाना है मैं हूँ विविध भारती
1: मैं हूँ विविध
0: भारती,
1: भारती। अरे वाह जी।
0: और वो गोल्डन जुबली के लिए बनाया था, लेकिन वो फॉर एवर गाना है, और विविध भारती के लिए डेडिकेट करता हूँ मैं गाना
1: जी।
0: मैं हूँ विविध
1: अरे
0: भारती।
1: वाह। चलिए तो हम सुनते हैं ये गीत जिसे आपने 40 ट्रैक में रिकॉर्ड किया, और वो
0: जी
1: एक अभूतपूर्व कार्य था उस समय का। तो और हम भी इस गाने को सुनना पसंद करेंगे।

0: दिलीप साहब, आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत हमने की आकाशवाणी के इस 90 वर्ष के गौरवशाली इतिहास के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती को दिया।
1: धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे सेवानिवृत्त सहायक के निदेशक श्री दिलीप कुलकर्णी से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।
3: स्मृतियों के स्वर।

दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं नाटिका आंगन में स्वर्ग। लेखन और निर्देशन किया है दुर्गा मेहरोत्रा ने।

0: और सुनो आया, शीशी वाली दवाई चार चार घंटे पर देना, एक खुराक अभी दे देना, और पाउडर के लिए समझ गई ना?
1: जी हाँ,
0: वक्त से दे देना, अभी टेम्परेचर है उसे।
1: बहुत अच्छा बहू जी।
0: और बीच में एक बार बुखार भी देख लेना। ओफो, मर गए, आज भी देर हो गई। अभी तो शंटू मंटू को तैयार करना है, नहीं तो आया उसके साथ ही कहीं रह जाएगी। आया आया, जरा मेरी कलम में स्याही भर देना। ओफो, कहाँ रख दिया?
1: कौन सी बहू जी?
0: अरे भाई, धूप का चश्मा।
1: हाँ,
0: जरा दराज में देखो। और सब ठीक से मेज पर लगा देना, दवा ठीक से दे देना।
1: जी जरूर। राजा भैया, देखो हम क्या लाए हैं, मीठा मीठा शरबत। मुंह खोलो तो।
2: सच्ची? देखे, झूठी नहीं तो, हम समझ गए दवाई है।
1: अच्छा लो, झट से मुंह खोलो। खोलो खोलो। फिर बंद कर लिया। खोलो भैया।
2: हम दवाई नहीं पियेंगे।
1: पी लो भैया, नहीं तो देर हो जाएगी।
2: हो जाने दो, हम तो नहीं पियेंगे।
1: अरे रे, मुंह पर से चादर तो हटाओ।
2: तुम पहले दवा हटाओ।
1: अच्छा लो, ये दवा का गिलास यहाँ रख दिया।
2: अब ठीक।
1: लेकिन ये बताओ कि दवा नहीं पियोगे तो बुखार कैसे उतरेगा, और बुखार नहीं उतरेगा तो फिर कंधे पर बैठकर गुड़िया वाली नुमाइश कैसे चलोगे?
2: गुड़िया वाली नुमाइश? चलो आया, चलो ना।
1: हाँ, उठना नहीं, बुखार बढ़ जाएगा। ए लो, बस एक घूंट में गट से सारी दवा पी जाओ, फिर ले चलेंगे।
2: बड़ी

0: हम नहीं पिएंगे।
1: फिर हम जबरदस्ती पिला देंगे? हाँ
0: हम तो नहीं पिएंगे।
1: तब फिर ऐसे नहीं।
0: नहीं नहीं आया, हम तुमसे नहीं पिएंगे, मम्मी से पिएंगे।
1: मम्मी तो दफ्तर गई हैं। पी लो भैया, नहीं तुम्हें बहुत बिगड़ेंगी।
0: तुम्हें डांट पड़ेगी जब तो खूब मजा आएगा। कल तो मम्मी ने दवा पिलाई थी, परसों भी। तुम कौन होती हो? आया भरती भरती, भाग जाओ यहाँ से।
1: सच्ची आफत कर मारी है, इतनी देर में कितना काम हो जाता। शंटू मंटू की दूध की बोतल धोनी है, कपड़ों पर इस्त्री करनी है।
0: ये सब काम तो दीदी करेंगी।
1: दीदी के इम्तिहान है, उन्हें पढ़ना है ढेर सा।
0: अच्छा आया, हमें गिलास पकड़ा दो। तुम आंखें बंद करो, हम अपने आप पियेंगे। दे दो ना गिलास।
1: अच्छा,
0: आया।
1: अच्छा लो पकड़ो। ए संभाल के पकड़ लिया। अच्छा लो अब जल्दी से पी जाओ। एक दो।
0: नहीं नहीं तुम पहले आंख तो बंद करो।
1: अच्छा लो बंद कर लिया। एक दो तीन। ए फेंक दी सारी दवा। ओहो सारी दवा बेकार गई। जो मन में आए करो, हमें क्या।
0: मम्मी आज हम स्कूल नहीं जाएंगे।
2: क्यों, आज क्या है?
0: आज तुम घर पर रहोगी ना,
2: तो इससे क्या, छुट्टी तो हमारी है ना।
0: बस मम्मी हमारी भी छुट्टी है।
2: नहीं नहीं छुट्टी उट्टी नहीं, जल्दी से जाओ। आया से कहो स्कूल के लिए तैयार कर दे।
0: मम्मी बस
2: जाओ जाओ जाओ बस जाओ। नहीं गलत बात है, एक दिन में कितनी पढ़ाई हो जाएगी, फिर पिछड़ नहीं जाओगे।
0: नहीं मम्मी आज ना भेजो।
2: जाओ जाओ राजा बेटे की तरह जल्दी से तैयार हो जाओ। आज शंटू मंटू के लिए झबले सिलने हैं, उनकी बिब बनानी है, बहुत काम है, तुम जल्दी से।
0: मम्मी बड़ा मजा आएगा, घर में दिन भर हम तुम खेलेंगे। आज तुम्हें हरा ना दिया तो?
2: भैया फिर वही जिद, फौरन जाओ। आया ले जाओ इसे। ऑफिस से छुट्टी तो दिन भर उनके साथ सर खपाओ, जैसे और कोई काम ही नहीं।
0: आया चलो हम भी भाग चलें।
1: क्यों भैया क्या हुआ?
0: मन नहीं लगता।
1: अच्छा चलो शंटू मंटू को खिलाएं थोड़ी देर।
0: नहीं आया, वो दोनों गंदे हैं, पेपे रोते रहते हैं, उनके मारे तो मम्मी हमें भी नहीं खिलती हैं।
1: तो फिर चलो उठो लॉन पर गेंद खेलें हैं, अब तो कुछ हंसो तो।
3: ए आई हंसी ये आई।
0: नहीं लॉन पर हमें नहीं अच्छा लगता।
1: तब कहाँ खेलोगे?
0: अनिल के घर चलो ना।
1: रोज रोज अनिल के घर?
0: तो क्या हुआ, उसकी माँ तो कभी नहीं डांटती, मम्मी तो बस जरा ऐसी बातें में चिल्लाने लगती हैं।
1: अच्छा ले चलेंगे, लेकिन एक शर्त पर, वहाँ ज्यादा उधम नहीं मचाओगे।
0: चलो ना।
1: रुको तो, ओफो धोती छोड़ो भैया फट जाएगी।
0: तो खड़ी हो फौरन। वन टू।
1: अरे चप्पल तो पहन लेने दो राजा।
0: अच्छा,
1: भैया
0: जा रहे हैं, तुम चप्पल पहन कर आना, लेकिन जल्दी आना।
1: अजीब लड़का है, बस बात मुंह से निकले और पूरी कर दो। बहू जी आ लेंगी तभी तो जा सकती हूँ। जरा ठहर जाओ राजा भैया, थोड़ी देर में चलेंगे। जब देखो अनिल के यहाँ, बस हो गई घंटों की छुट्टी, एक अकेले भैया ही नहीं संभल पाते। ऊपर से बहू जी नाराज होती हैं कि तुम शंटू मंटू का काम ठीक से नहीं करती हो। हाँ नहीं तो न स्वेटर पहना न मोजे, मेरी ही डांट करवाएंगे। राजा भैया अंधेरा होने लगा, आओ अब घर चलें।
0: चलेंगे आया, थोड़ा सा और खेलने,
1: फिर कल खेलना।
0: देखो अनिल आया तो समझती नहीं, इतना घर बन गया, जरा सा बचा है पीछे लगी है।
1: शाम हो गई है, गीली मिट्टी से बहुत खेल करोगे तो सर्दी लग जाएगी।
0: तो पीछे का दरवाजा बनाओ अनिल, ये तो मानती ही नहीं, ऐसे ही बाबा करेगी।
1: राजा भैया
0: ओफो आया, मानती क्यों नहीं। अच्छा इधर आओ, आओ ना आओ।
1: यहाँ तो गीला है,
0: सिर्फ जरा सा तो पानी है, डरती हो। आओ ना इधर आओ, बैठो यहाँ। अच्छा बताओ तो हमने कौन सी चीज बनाई है?
1: मिट्टी का ढेर है ये तो।
0: हाँ आया तुम इतना भी नहीं समझती हो।
1: तो और क्या है?
0: आया ये मकान है, घर है, समझी?
1: काम फट जाएगा ऐसे चिल्लाओगे तो, जाओ हम बोलेंगे ही नहीं।
0: मत बोलो, बड़ी आई आया कहीं की, जो हम भी नहीं बोलते तुमसे।
1: बस गुस्सा हो गए। अच्छा बताओ
0: ये है आया, इधर देखो ना, ये है इसकी खिड़की और ये है इसका दरवाजा।
1: और हाय खिड़की दरवाजे में ताला कैसे बंद करोगे, सब तो खुला है।
0: इसमें आया तो ताला छोड़े ही पड़ेगा।
1: तो क्या सब खुला रखोगे?
0: हाँ तभी तो मजा आएगा, खूब अच्छा लगेगा फिर तो, कोई हमें

0: नहीं रोकेगा।
1: इतने से मकान में रहेगा कौन कौन?
0: इसमें आया बस तीन जने रहेंगे, मम्मी पापा हम
1: और शंटू मंटू दीदी।
0: नहीं, कोई भी नहीं, फिर तो भीड़ हो जाएगी।
1: अच्छा तो हमें भी नहीं रखोगे?
0: तुम्हें तो आया फौरन निकाल देंगे, तुम थोड़े ही रहोगी। और फिर तुम तो इतनी मोटी हो, आओगी कैसे इसमें?
1: झुक कर घुस जाएंगे।
0: झुक घुस जाओगी? लेकिन फिर निकलोगी कैसे? फंस जाओगी ना भैया ना, तुम तो सारा मकान ही तोड़ दोगी।
1: हमें निकाल दोगे तो हम खाएंगे क्या?
0: हम नहीं जानते आया, तुम्हारे मारे तो मम्मी हमें अपने साथ कभी खिलाती भी नहीं। तुम नहीं रहोगी तो कितना अच्छा रहेगा, हम मम्मी की गोदी में बैठ कर ठाक से खाएंगे।
1: तो फिर हम रोएंगे।
0: अच्छा रुको रुको, हम मम्मी से कह देंगे तुम घर पर रहना, शंटू मंटू खिलाना, बस अब चुप हो जाओ। अरे भाई कह तो रहे हैं कि तुम्हें रख लेंगे शंटू मंटू के लिए।
1: हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे।
0: नहीं भाई मान जाओ ना, तुम तो सब गड़बड़ कर दोगी।
1: नहीं भैया, हम तुम्हारे आंगन में स्वर्ग बनाएंगे।
0: क्या स्वर्ग? आया स्वर्ग तो अनिल की माँ कहती है मरने के बाद जाते हैं, तुम हमें मार डालोगी?
1: नहीं राजा भैया, हम जो स्वर्ग बनाएंगे ना उसमें जानते हो क्या होगा?
0: हम कुछ भी नहीं जानते, तुम ये तो बताओ कि वहाँ खिलौने होंगे कि नहीं?
1: हाँ हाँ होंगे।
0: अरे आया मम्मी से तो पूछ ले। आया स्वर्ग में मम्मी भी रहेंगी ना?
1: हाँ हाँ।
0: आया स्वर्ग में तो मम्मी हमें प्यार करेंगी ना?
1: राजा भैया को तो मम्मी अभी भी कितना प्यार करती है।
0: करती थी आया, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। आया मम्मी पहले बिल्कुल नहीं डांटती थी, जब से शंटू मंटू आ गए ना हमारी सुनती ही नहीं, इनके मारे तो।
1: देखो भैया, स्वर्ग तो खुशी के लिए होगा, उसमें जो लड़ाई करेगा उसे निकाल दिया जाएगा।
0: तब तो हम भी नहीं लड़ेंगे आया।
1: कोई भी राजा बेटा लड़ाई थोड़ी करता है।
0: मगर आया एक बात तो बताओ, हम ढेर सी मिट्टी जमा कर ले और जो आंगन है ना
1: घर में।
0: अरे हाँ अपना आंगन
1: है तो
0: बस वहीं स्वर्ग बनाएंगे।
1: आंगन में स्वर्ग?
0: हाँ हाँ बड़ा मजा आएगा आया, चलो हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, लेकिन जब मम्मी हमें गोदी में लेंगी तो तुम अभी से मत आना।
2: अरे तुम अभी सोए नहीं भैया? अरे हमसे बोलोगे नहीं, क्या हुआ? अरे अरे, अरे इतना गुस्सा, अरे मुंह भी छुपा लिया। आया कहाँ है?
0: आया को हमने भगा दिया, वो गंदी है, हम उससे नहीं बोलेंगे।
2: नहीं नहीं रोते नहीं बेटे, क्या बात है, क्या बात है बेटे, आज तुम इतनी देर तक सोए क्यों नहीं?
0: मम्मी बताए।
2: हाँ हाँ
0: यहाँ बैठो मम्मी, और पास।
2: हाँ,
0: मेरे पास आओ ना।
2: हाँ, ले लो तुम्हारे पास।
0: अब बताए।
2: हाँ,
0: मम्मी हमें नींद नहीं आती है, तुम कहानी सुनाओ ना।
2: अब तो बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ, कल बढ़िया सी कहानी सुनाऊं।
0: नहीं आज ही, अभी सुना, कल तो आया गंदी गंदी सुना कर जबरदस्ती सुला देगी, बड़ी खराब है। मम्मी वो वाली सुना दो ना।
2: कौन सी बेटा?
0: वही परी वाली जो तुमने एक बार सुनाई थी, जब हम गिर गए थे, जब मम्मी तुम हमें गोद में लेकर खाना खिलाती थी, जब मम्मी आया नहीं थी, वही वाली।
2: वो तो बहुत लंबी है, इस वक्त तो याद भी नहीं।
0: याद है याद है, सुनाओगे नहीं तो फिर हम भी नहीं सोएंगे, सुना दो मम्मी।
2: अच्छा जल्दी से लेटो, तो आंखें मूंदो,
0: ये लो।
2: एक थी सोन परी, एक दिन वो बहुत सी परियों के साथ पहुंची राजा के महल में। महल के आंगन में
0: स्वर्ग था।
2: अरे तुम्हें तो इतना याद है।
0: मम्मी आज हमने आया के साथ पक्का कर लिया है कि हम भी आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। अरे मम्मी तुम तो रो रही हो। अच्छा अच्छा नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे मम्मी, रोने हम नहीं बनाएंगे स्वर्ग, बस अब तो चुप हो जाओ मम्मी।
2: नहीं नहीं बेटे, मैं रो थोड़े रही थी, वो तो आंख पे कुछ कुछ चला गया था। हम जरूर आंगन में स्वर्ग बनाएंगे। हाँ तो सोन परी जब महल में पहुंची तो वहां पर सबसे आगे एक बढ़िया सा भैया भैया बस हो गया, इतनी सी कहानी सुनानी थी इसके लिए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वीरे दी वेडिंग फिल्म के गीत से, जिसे गाया है विशाल मिश्रा, अदिति सिंह शर्मा, ध्वनि भानुशाली और निकिता आहूजा ने। संगीत विशाल मिश्रा का, बोल अन्विता दत्ता के।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए शिद्दत फिल्म में अंकित तिवारी को, बोल कुंवर जुनेजा के संगीत गौरव देशगुप्ता का।

चित्रलोक कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल को फिल्म खाकी में, बोल समीर के संगीत राम संपत का।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएल लाइफ, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।
1: खेले जाएंगे तो श्रोताओं, इसी

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन

0: का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सतर्कता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देशभर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ

0: रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
1: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे, आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
1: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रूपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का

0: आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decade's biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Hemanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decade's biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: Prime Minister Modi said the government is making continuous efforts to ensure that this situation has the minimal possible impact on the people of the country. The Prime Minister reiterated his 7-point appeal to tackle the adverse impact of West Asia crisis. These include reducing fuel consumption, prioritizing work from home wherever possible, avoiding foreign travel for a year, and adopting Swadeshi products. He has also urged the citizens to move towards natural farming and avoiding unnecessary gold purchases.
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
1: Sardar Dham Hostel in Vadodara includes hostel facilities for 1,000 boys and 1,000 girls, along with amenities like a central dining hall, library and auditorium. Mr. Modi also visited various facilities at the Sardar Dham complex, including the reception area, civil amenities, dining area and e-library. Earlier in the day, Prime Minister Modi took part in the Somnath Amrit Mahotsav, marking 75 years since the inauguration of the restored temple in Gujarat dedicated to Lord Shiv. Mr. Modi performed Mahapuja followed by the Kumbhabhishek and flag hoisting ceremony at the temple as part of the celebrations. In a social media post after the visit to the temple, the Prime Minister said, Somnath Temple stands tall and eternal and showcases the country's civilizational courage and unbroken devotion. He said a thousand years ago, the first of many attacks on Somnath took place. Mr. Modi added, the doors of the newly rebuilt Somnath Temple opened in 1960.

0: कार्यक्रम आपके लिए।
1: देश परदेश, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं इस फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, संगीत राजेश रोशन का, बोल अमित खन्ना के।
2: नजराना

आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चल रहा है आपके लिए। लीजिए सुनिए खयाम के संगीत निर्देशन में साहिल लुधियानवी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म का नाम त्रिशूल।

0: छाया गीत
1: लग जा गले।
0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
2: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ जाएं।
2: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: और यह है कार्यक्रम की अंतिम पेशकश किशोर कुमार की आवाज में महान फिल्म से अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।
1: छाया गीत।

0: छह गीत आप सुनेंगी। इस प्रोग्राम की प्रायोजक है वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: वीको टर्मरिक

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। दोस्तों, आज का ये कार्यक्रम सादर समर्पित है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर को। सदाशिव अमरापुरकर मुंबई सिने जगत का एक बहुचर्चित अदाकार,

0: सदाशिव अमरापुरकर का जन्म महाराष्ट्र के अहमदनगर में 11 मई सन 1950 में हुआ था। उनका असली नाम था गणेश कुमार नरवाड़े। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर में एक अच्छे खासे व्यापारी परिवार से थे अमरापुरकर। बचपन ही से होशियार और सबके दुलारे थे वे। उन्हें घर में और दोस्तों में तात्या नाम से जाना जाता था। उनकी शुरुआती पढ़ाई अहमदनगर में ही हुई। स्कूली जीवन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था। कई नाटकों में वो अदाकारी के जलवे दिखाया करते थे। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उन्हें पुणे विश्वविद्यालय में दाखिल होना पड़ा। यहीं पर वो इतिहास विषय में मास्टर्स डिग्री की पढ़ाई करते हुए एक्टिंग की ओर भी मुड़े। सदाशिव अमरापुरकर जब विविध भारती के स्टूडियो आए थे, उन्होंने अपने इस एक्टिंग के सिलसिले का जिक्र करते हुए बताया था। सुनते हैं उन्हीं से।
1: और जैसे मैं कॉलेज में आया तो हमारे कॉलेज की एक परंपरा रही है, हमारे कॉलेज के गैदरिंग में वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन होती है, आज भी चल रही है वो, और बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकार इस देश को दिए हैं, महाराष्ट्र को दिए हैं। तो उसमें एक बात थी कि बच्चे ही, मतलब विद्यार्थी ही एकांकी लिखते थे, विद्यार्थी डायरेक्शन करते थे और सब विद्यार्थी मिलकर वो वन एक्ट प्ले करते थे। और इसकी कंपटीशन थी और उस ज़माने में बहुत बड़ा प्राइज उसके लिए रखा गया था, मतलब रखा जाता था, आज भी रखा जाता है। और उसमें मुझे एक काम करने का मौका मिला और हम कहेंगे कि वो बिच्छू एक्टिंग का उसी वक्त हमें काटा। बीए होने के बाद मैंने यही सोचा कि मैं थिएटर करता रहूँगा, प्रोफेसर बनूँगा और प्रोफेसर बनने के बाद कॉलेज में थिएटर करूँगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में मधुकर तोरणमल थे जो प्रोफेसर थे, थिएटर भी करते थे, तो वही आदर्श मेरे सामने था। मैं पूना से परभनी गया, परभनी से फिर नगर आया, स्टेट कॉम्पिटिशन जो नाटक होते हैं उसमें हिस्सा लेने लगा और उसमें मैंने एक नाटक किया, काई स्वप्न विकाई चीत, उसमें मैंने जो एक्टिंग की थी वो बहुत पसंद आई लोगों को।

सन 1973 में उन्होंने अपनी स्कूली जीवन की सहेली सुनंदा करमरकर से विवाह किया और साथ ही साथ अदाकारी में भी हाथ आजमाते रहे। मुख्यतः वो मराठी नाटकों में काम करते थे। सन 1981-82 में यूं ही सदाशिव अमरापुरकर मराठी नाटक हैंड्सअप में काम कर रहे थे। उस जमाने के

0: दिल जीत लेता था। ये फिल्म उन्हें कैसे मिली, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तेंदुलकर जी के चार पांच नाटक किए हैं, हैंड्स अप नाटक किया, और उस वक्त मेरी तेंदुलकर जी से बहुत अच्छी पहचान हो गई थी। और वो एक स्क्रिप्ट लिख रहे थे, उसका नाम था अर्ध सत्य। और उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि इसमें एक छोटा सा रोल है और इसके लिए मैंने आपका नाम सजेस्ट किया है। हालांकि जब भी मैं नाम सजेस्ट करता हूं तो डायरेक्टर उसे नहीं लेता है, लेकिन इस बार देखिए आपका लक अगर चलता है तो। और इस तरह मेरी गोविंद निहलानी से पहचान हुई। वो मेरा हैंड्सअप नाटक देखने आए और उसमें मैं इंस्पेक्टर का रोल कर रहा था और ना फिल्म भी इंस्पेक्टर के ऊपर थी, तो मुझे लगा मुझे कोई बड़ा अच्छा इंस्पेक्टर का रोल मिलेगा। और मैंने बड़े जोश के साथ वो नाटक किया, उनको बहुत पसंद आया, अच्छा लगा। दूसरे दिन घर पे बुलाया और कहा, देखो आपका नाटक अच्छा था, इंस्पेक्टर का रोल आपने बहुत बढ़िया किया। इस फिल्म में एक रोल है छोटा सा, उस कैरेक्टर का नाम है रामा शेट्टी। तेंदुलकर जी को पूछा, मैंने कहा ये क्या रोल है, बोले छोटा है अच्छा है। मैंने कहा मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो। स्क्रिप्ट पढ़ा, दो ढाई सीन थे लेकिन उसका जिक्र बार बार आता था और उस वक्त मुझे फिल्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं था।

इस तरह से उन्हें हिंदी सिने जगत का एक विशाल स्क्रीन अदाकारी दिखाने के लिए मिला। वो यहीं तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने और भी भाषाओं की कई फिल्मों में काम किया। हिंदी मराठी के अलावा उन्होंने बांग्ला, ओडिया और हरियाणवी फिल्मों में भी काम किया है। दोस्तों, हम उन फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं जिनमें सदाशिव अमरापुरकर ने काम किया था।

0: सन 1993 में पहली बार फिल्म फेयर ने खलनायक को दिया जाने वाला अवार्ड शुरू किया, जिसे पाने का गौरव मिला सदाशिव अमरापुरकर को। अर्धसत्य की कामयाबी के बाद उन्हें कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला और उन्होंने इन फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए। ऐसी ही कुछ फिल्में हैं पुराना मंदिर, नासूर, मुद्दत, वीरू दादा, जवानी, फरिश्ते वगैरह वगैरह। दोस्तों, फिल्म हुकूमत में उन्होंने लोकप्रिय अभिनेता धर्मेंद्र के खिलाफ विलेन का किरदार किया और वो किरदार इतना सफल हुआ कि ये फिल्म बेहद कामयाब रही और इस तरह सदाशिव अमरापुरकर धर्मेंद्र के लिए सफलता का जैसे एक पैमाना बन गए। इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया। सन 1991 में एक फिल्म आई थी सड़क। इस फिल्म में उन्होंने एक हट के चैलेंजिंग रोल किया था जो आपको भी जरूर याद होगा। इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था।
1: कमाल है कुदरत का, क्या खूबसूरती, क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने। देख देख मेरे तो

0: बाल खड़े हो गए हाथ पे, जान निकल गई मेरी। ओह क्या रंग है, हाय रे ये बदन, हाय हाय, डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। देखना ना रूप ना रंग, देखिए किस्मत का खेल तो देख। अगर कुछ है ना मेरे पास तो वो है दिमाग। कमाल का दिमाग है मेरे पास, इसलिए मर्दों की सेवा करती हूँ और औरतों का धंधा। यहाँ का राजा, इस जिस्म के बाजार का महाराजा, और नाम महारानी।
1: ये सब क्या है चाचा, चलो यहाँ से।
0: मैं बताती हूँ, ये सब कुंडली का खेल है। किस्मत जिसे कहते हैं ना हम, वो है ये सब। तेरे बाप ने और तेरे चाचा ने मेरे पास से कुछ कर्जा लिया था, तेरे दादा की बीमारी के लिए, और तुझे गिरवी रखा था। गिरवी जानती है ना तू, गिरवी। फिर जोर से हाँ बोलना, शर्माती क्यों है? लेकिन इतने साल हो गए, इन्होंने मेरा कर्जा ही नहीं चुकाया, इसलिए मैं बंसी की बेटी को उठाकर यहाँ लाई इस कोठे पर। आज ये बेचारा अपनी बेटी को छुड़ाने आया है, क्या करेगा, पैसे तो है नहीं इसके पास चुकाने के लिए, इसलिए इसने तुझे लाया है। आज से तू यहाँ रहेगी इस कोठे पर, इसकी बेटी की जगह।
1: नहीं चाचा, आप ऐसा नहीं कर सकती हो, मैं आपकी भतीजी हूँ।
0: रिश्तेदारी का तो खेल है ये सब।
2: मुंबई में एक्टिंग के लिए वे किस तरह पहुँचे, इसके बारे में भी उन्होंने बताया था, आइए सुनते हैं।
3: नासिक में हमारा पहला एलिमिनेशन राउंड था, और वहाँ एक परीक्षक थे, उनका नाम था भिकुपई आंगले। उन्होंने मेरी एक्टिंग देखी और मुझे खत लिखा कि आप जाकर बम्बई में गोवा हिंदू एसोसिएशन है, वहाँ जाकर मिलो, वहाँ एक आपके लिए काम रखा हुआ है। तो और उन्होंने एड्रेस वगैरह दिया था, फ़ोन नंबर दिए थे, तो मैंने वहाँ फ़ोन किया, तो वहाँ पर रामकृष्ण नाइक करके थे, उन्होंने कहा कि आप आइए, और मैं वहाँ गया। उन्होंने कहा हमारा एक नाटक है नट सम्राट, जो डॉक्टर लागू ने किया था, दत्ता भट्ट ने किया था, अभी दत्ता भट्ट के बाद हम देख रहे हैं। सतीश दुबाशी ने हमको कहा है कि मैं ये करूँगा, लेकिन पता नहीं वो करेंगे या नहीं, लेकिन आपकी एक्टिंग की मैंने इतनी तारीफ सुनी है भिकुपई आंगले से, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी सी टेस्ट ले लें। तो उसमें काम करने वाली जो आर्टिस्ट थी शांताबाई गोखले, उनके पास मुझे लेकर गए। उनमें एक आर्टिस्ट थी शांता जोक, बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, बहुत बढ़िया एक्टिंग करती थी, आज हमारे में नहीं है। उन्होंने मेरी टेस्ट ली और उनको कहा कि ये कर सकते हैं। मुझे किताब दिया गया, बोले आप गांव जाइए, हम आपको बुला लेंगे। और बाद में मैंने पेपर में पढ़ा कि वो रोल सतीश दुभाषी कर रहे हैं, लेकिन दिल में एक तमन्ना थी कि कुछ कोई बात नहीं, और भी नाटक लिखे जाएंगे, हमें रोल आएंगे। और एक दिन अचानक एक फ़ोन मुझे आया, दुर्वांची जुड़ी एक संस्था है उनका, कि हम एक नाटक कर रहे हैं, उस रोल के लिए, जो प्रोफेसर का रोल है बहुत बड़ा, उसके लिए हम आपको मिलना चाहते हैं, तो आप बम्बई आई। मैं तीसरी बार बम्बई आया तो उन्होंने कहा कि देखो आपने वो नाटक किया था, फाइनल में आया था, वहाँ पुरुषोत्तम दारवेकर जी थे, और उन्होंने आपके नाम का सजेशन दिया है प्रोफेसर के रोल के लिए, इसलिए आपको बुलाया, और चलिए आप हमारे साथ चलिए। तब मैं पहली बार विविध भारती के ऑफिस में आया, और उसके बाद मैं नाटक में एक्टिंग और डायरेक्शन करता ही गया।
4: अरे ये क्या हो गया, क्या हो गया ये, साले उन बदमाशों को यही एक दुकान मिली लूटने के लिए।
5: सर आप इस दुकान में पार्टनर है क्या?
4: अरे पार्टनर नहीं, ये दुकान मेरे सबसे अच्छे सबसे प्यारे बचपन के दोस्त हसमुख की है।
5: अच्छा अच्छा,
4: आ गया हसमुख, आ गया, आ गया हसमुख। ए हसमुख, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले हसमुख। अरे होनी को कौन टाल सकता है, लेकिन तू इस नुकसान से घबराना नहीं है। मेरी पगार बहुत कम है, लेकिन मैं तुझे भूखे नहीं मरने दूंगा, उसमें से आधी तुझे दूंगा, वादा रहा दोस्त, घबराना नहीं।
6: तू अपनी आधी पगार मुझे देगा?
4: पागल हो गया, पागल हो गया, हे भगवान, मेरा दोस्त पागल हो गया।
6: अरे पागल नहीं हुआ बाबा, भगवान ने पागल होने से बचा लिया।
4: कैसे?
6: मैंने है ना दो दिन पहले दुकान बेच दिया था।
4: क्या?
6: हाँ।
4: किसको?
6: ये सेठ सुखीराम को। मैं नहीं बेच रहा था।
4: हाँ।
6: उदित करके सारे जरूरत के साथ पेमेंट भी कर गया मुझको।
4: कांग्रेचुलेशन। ए आंडो पांडो।
5: यस सर।
4: ये ले, ये 10 रुपए ले।

0: मिठाई ला, सबका मुंह मीठा कर देते हैं आज।
1: अबे वो इंस्पेक्टर के बच्चे, मैं तबाह हो बर्बाद हो गया और तू मिठाई क्या मंगवा रहा है? अरे इस वर्दी का ख्याल कर, कुछ मुझे मुझे झूठी तसल्ली दे भाई।
0: माफ कीजिएगा लाला जी, मैं मिठाई इसलिए मंगवा रहा हूँ कि मेरा दोस्त बच गया। और जहाँ तक आपकी बर्बादी का ताल्लुक है, आपके साथ पुलिस है और पुलिस के साथ इंस्पेक्टर प्यारे मोहन है, जो विलन को चैन से जीने नहीं देगा। जीना तो छोड़ो, पीने नहीं देगा।
2: सदाशिव अमरापुरकर ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनके द्वारा अभिनीत कुछ ये फिल्में भी हैं, जैसे आंखें।

0: वेदी को वज्रदंती, भारत का
1: कुली नंबर वन, गुप्त, जंग, तड़ीपार, हम साथ साथ हैं वगैरह वगैरह। सदाशिव अमरापुरकर की आखिरी रिलीज फिल्म थी सन 2013 में आई फिल्म बॉम्बे टॉकीज। आज के इस कार्यक्रम में प्रयोग की गई रिकॉर्डिंग हमें विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त हुई है।

0: आज के फनकार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर पर। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

नजरों ने नजरों से जो कह दिया है सब कुछ, तो अब पर्दा किस बात का है। अनजान थे कल, आज दिल के इतने करीब हो, तो फिर पर्दा किस बात का है। कोई

दिल की बातें हैं, ये कोई पानी पे लिखी इबारत नहीं है। संभाले हैं दर्द एक दूजे के, ये कोई तिजारत नहीं है।

कुछ इस तरह से जुड़े हैं दिल से दिल के तार, बस मुस्कुरा भर देते हो और ढह जाता है शिकवों का अंबार।

खिल उठी हैं रात रानी की खुशबू तेरी सांसों में, इस मदहोशी का क्या करें। एक होने को बेताब है तन और ये मन, दिलों की गर्मजोशी का क्या करें।

0: छाया गीत का आज का सफर आपने तय किया जयंत के साथ, अब इजाजत दीजिए।
1: देखो टर मरे।

0: आप सुन रहे थे मुंबई से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। ये है एफएम रेडियो लिक्सिटी। रात्रि के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रूपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी

हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।